0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि तदनुसार 16 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बता दें। 6 बजे से आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे का समय रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली का। 9 बजे से सुनेंगे आप हमारा कार्यक्रम दिल के दराने गाने नए पुराने। 10 बजे का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूज़िक का और 11 बजे का समय रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का। 1 बजे का समय रहेगा रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम का। 2 बजे आप सुन पाएंगे हमारा कार्यक्रम आशियाना। 3 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। हौसी हमले की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए हासिल की जा सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। व्यक्तियों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है, जो जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी अभियान को संगीतमय स्वर प्रदान करता है। ये गाना प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के ओली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह ओली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। और दिल्ली में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट सिंदूस आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर। और कहते हैं कि वक्त नहीं है कहने को, दिल में बातें हजार हैं, मिलना तो चाहते हैं तुमसे मगर जिंदगी का अपना ही बाजार है। कल क्या होगा क्या भरोसा, आज भी गुजर जाएगा। वक्त नहीं है कहते हैं कहते हैं, कहीं वक्त ही ना निकल जाए। तो आपको किसका

इंतजार है। जी हां, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में और जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। 102.6 FM, दिल से दिल तक, सुप्रभात।

थकान से लेके कहीं ना कहीं उड़ान तक कितना बदल गए हैं हम। लाइफ में कितने सारे बदलाव आ गए हैं ना, और जिक्र से लेकर फिक्र तक ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें सताए जा रही हैं। तो इस पर कहना चाहूंगा कि हौसला रख बुलंद इतने कि आसमां में तेरी उड़ान हो, दुनिया बने गुलाम जिसकी तेरी सोच ऐसी चट्टान हो। कुछ ऐसा कर तू राहे जिंदगी के इस सफर में कि तेरी दास्ताए कामयाबी सबकी जुबान हो। क्या बात है, क्या बात है। थपेड़े जिंदगी के खाकर भी मुस्कुराए हर कदम, ना माथे पर शिकन हो और ना ही कोई थकान हो। थकान हो जाती है ना कई बार, ऐसा लगता है आपको कि आप हिमालय की तरफ देख रहे हैं और एक एक कदम जो है ऊपर की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मुझे पता है कि दिल्ली वालों के लिए पहाड़ इतने दूर है नहीं, चाहे शिमला की बात कर लो या मनाली की बात कर लो, लेकिन आप इस दिल के हाल को तो समझ ही रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बस यही कहूंगा कि कदम कदम आगे बढ़ाई जाइए और चलते चलिए, क्योंकि दिल का जो भी हाल हो ये बंदा एकदम कमाल है। दिल से दिल तक सुप्रभात, आज गौतम के साथ हो आप। हाल बयां करना सीखो थोड़ा सा, एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है।

कहते हैं कि एक छोटी सी खुशी के चक्कर में ना जाने कितनी आफतें पाल ली, और हम कह रहे हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली, तो ऐसा होता नहीं है। बिकॉज चाहतों का ये मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, और जरूरत वाली गली से होकर थोड़ा सा यू टर्न जरूर लेना पड़ता है। कई बार दिल में काफी हलचल होती है, और दिल में जब शोर होना, बहुत सारी हलचल चल रही हो, तो कहीं ना कहीं सन्नाटे को चुनना चाहिए, शांति को चुनना चाहिए। बिकॉज जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर आपको परेशानियों में डालते हैं, है ना। डाउट बहुत ज्यादा होता है लाइफ में कि ये चुनूं वो चुनूं, ये करूं या वो करूं। बस यही कहना चाहूंगा कि दिलों के संसार में हम सच्चे ही अच्छे, हमें बच्चा ही रहने दो जिंदगी, हम बच्चे ही अच्छे, बचपन रहना चाहिए, और जो आपका दिल कहे ना वो मान लीजिए।

0: मैं कह भी ना पाऊं और बिना कहे रह भी ना पाऊं। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या?
1: क्या टारगेट अचीव करने के चक्कर में क्या टारगेट अचीव बनाने वाले सपने से कहीं दूर भाग जाऊं या लीड बनाने के लिए फिर से जाग जाऊं? है ना, आपकी लाइफ में भी काफी प्रेशर होगा ना, बहुत सारी उलझने होंगी। तो एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने कहा कि गुरुदेव, साक्षात शत-शत प्रणाम है आपको, शत-शत प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही आपसे एक अपील भी करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, जितने भी सवाल है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हर रोज जागता तो हूं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप से ही दूर भागता हूं। क्या मेरे इन सभी सवालों का कोई जवाब होगा आपके पास? संत बड़े मुस्कुराए, दुनियादारी से काफी दूर हो गए थे। उन्होंने कहा कि हां, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा, लेकिन तुम्हें कोशिश ये करनी है कि 3 महीने तक इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तुम्हारे जो भी सवाल हैं, 3 महीने के बाद मैं आऊंगा और उन सवालों का जवाब दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो ठीक है, इतना करके देख लेते हैं। कहते हैं ना कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल ना जाए, नीम सदा जल में रहे धोए वास ना जाए। आगे क्या हुआ बताऊंगा आपको। लेकिन अरिजीत सिंह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये तो सुन लो। 102.6 FM, दिल से दिल तक।

0: वैसे आपका मैनेजर आपको भी मीटिंग में यही बताएगा। क्या बताएगा? चाहने लगे
1: हम। नहीं, ये तो बताएगा ही, साथ में ये भी बताएगा कि जहां चाह है वहां राह है, है ना? और आपकी सीट पर आएगा तो आप कहेंगे कार्य प्रगति पर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कभी कभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, यानी कि रुकावट के लिए कोई खेद है, और क्या टाइटैनिक में कोई छेद है? जी हाँ, कहीं ना कहीं आप भी वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, तुम वही देखना चाहते हो जो तुम्हारे मन में है, और मन वही देखता है जो तुम्हारे अंदर है। वो चाह जरूर है जो हमें परेशान करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने संत से पूछा कि मैं बहुत परेशान हूं बाबा जी, क्या करूं? मतलब ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में टेंशन है, मैनेजर काफी ज्यादा परेशान करता है, वाइफ काफी परेशान करती है, तो मैं क्या करूं? कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तक मेडिटेशन करना है, योगा से ही होगा। और जब 3 महीने तक उस व्यक्ति ने मेडिटेशन किया एक पेड़ के नीचे बैठकर, तो फिर वो साधु उनके पास गए और कहा कि बताओ क्या सवाल थे तुम्हारे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मेरे कोई सवाल ही नहीं, मैं जिन सवाल

को बाहर संसार में ढूंढ रहा था ना, जिनके जवाब वो सब तो मेरे भीतर ही थे। होप ये लाइफ में होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिल लगी ऐसी जगह करनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि आपका दिल जो है वो मुस्कुराएगा, खिलखिला उठेगा। जिस तरीके से ये शो सुनने के बाद आपकी सुबह जो है ना और भी खुशनुमा हो जाती है। सुप्रभात।

अक्सर ना क्या करते हैं हम लोग, खुशियों को मतलब तलाशने के लिए भी और तराशने के लिए भी काफी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे स्कीमें लगाते हैं कि शायद इससे खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ठहराव आना लाइफ में मैच्योरिटी को लेकर आता है। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना हर लोग जो है अपने आप को मारने में लगे हुए हैं। लोग कोशिशों में लगे हुए हैं कि यार ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने आपसे एक बात कही थी कि बचपन

बचपन के दिन आपको याद होंगे कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन क्या आज भी आप वो सुकून महसूस करते हैं जो बचपन में आप किया करते थे? वो जब पैसे जोड़कर आपने अपने जन्मदिन पर वो साइकिल खरीदी थी ना, उसका मजा आज भी बरकरार है? नहीं, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप बेकरार हैं चीजों के लिए। मन में उफान है, लेकिन यहां पर कोई तूफान नहीं है, तूफान है दिल में, दिल से दिल तक। सुप्रभात 102.6 एफएम। तुम मिले, देखिए मिलने वाले कहीं भी मिल जाते हैं और फूल तो पतझड़ में खिल जाते हैं। चाहे आप दिल्ली में हो या फिर कहीं दूर,

ऐसी वाणी बोलिए, तब के झगड़ा होए पर ऐसे से ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए, है ना। वेल जोक्स अपार्ट, लेकिन मीठी वाणी और शुद्ध विचार।

और जब आप किसी का गलत नहीं कर रहे ना, तो फिर गलतफहमी का शिकार मत होइए। मंजिल की चमक से ज्यादा सुकून उस सफर में है जहां हर कदम अपनी मेहनत से तय किया हो, राइट? आप झूठ नहीं बोल रहे, किसी से छल नहीं कर रहे, लोगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे और किसी की भावनाओं से नहीं खेल रहे और ना ही अपना जमीर बेच रहे हो, तो वक्त लगेगा ना फिर कामयाब होने में, क्योंकि नाम एक दिन में नहीं बनता लेकिन एक दिन जरूर बनता है। और फिर याद करेगी ये दुनिया आपकी कहानी। बहरहाल आप सुन रहे हैं आरजे गौतम की जुबानी सुप्रभात।

गिरने लगे हौसले तो ये सोच लेना बिना कुछ किए बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं टूटा तो सही हो गया काबिल, चलो इस हार से कुछ तो हुआ हासिल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आप ईश्वर को ही देख लीजिए, टूटी ही चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। नेचर बादल के टूटने पर पानी के फुहार बना देता है, मिट्टी टूटने पर खेती का रूप ले लेती है, और बीज टूटने पर पौधों की संरचना होती है। इसलिए जब कभी आप खुद अपने आप को टूटा हुआ पाए तो समझ लेना कि ऊपर वाला आपको बहुत अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाला, बिकॉज वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे टफ रोल जो है अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। जैसे आप एक्टिंग कर लेते हैं ऑफिस में काम करने की, लेकिन अपने आप से एक्टिंग मत कीजिए ना। सुनो सुनो अपने दिल की और दिल से दिल तक 102.6 FM। मन तो लगेगा आपका जब सुनेंगे मुझे तो।

कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो, आसमान भी सबसे ऊंचा रहेगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, उनकी उड़ान भी काफी शाहीन रहती है, जस्ट लाइक बाज, जो अपने लेवल पे उड़ता है, ज्यादा फड़फड़ाता नहीं है, कोई आवाज नहीं करता। पर आपको पता है, जब रेवन नाम का एक पक्षी आता है और उसे काफी परेशान करता है ना, तो ऐसे में बाज जो है आमना सामना नहीं करता, बल्कि और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है कि देखना है उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। स्काई इज द लिमिट एंड फ्लाई हाई, पंछी बनो उड़ता फिरो, है ना। मौसम कई बार दिल्ली का ऐसा ही हो जाता है, कभी भी बदल सकता है आपके बॉस के मूड की तरह या आपके गर्लफ्रेंड के मूड की तरह। लेकिन मेरे यार, बदल ना जाना मौसम की तरह, हम नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ बहरहाल जाना तो पड़ेगा ही। और मुझे बताया, जब भी मैं जाता हूं ना, आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन जब मैं जाऊंगा तभी तो आएंगे। बेकरारी के सबब को और भी कुमार चढ़ाने के लिए निखिल कुमार, ये दिल से दिल तक फिर से मुलाकात होगी जीएमडी में, यानी कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त की। कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा सहयोग के साथ हासिल की जा सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा, सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी विद्यार्थियों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। केरलम में एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। करीब 5170 लोग अब तक बचाए जा चुके हैं। करीब 5170 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को बचाया जा चुका है। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे 2020 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। और आइए अब सुनते हैं आपका वही फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली। आपके दोस्त आज निकले।

और श्रोताओं, जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर की, तो सबसे पहले आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में झांक कर कि आज के दिन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी। तो आज है 16 सितंबर और आज के दिन वर्ष 1810 में निग्वेल हिदाल्गो ने स्पेन से मैक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया था। वर्ष 1821 में आज के दिन मैक्सिको को आज़ादी मिली थी और वर्ष 1908 में जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी। वर्ष 1947 में आज के दिन ही टोक्यो के सैतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से लगभग 2000 लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 1975 में आज का दिन था जबकि वर्डे मोजाम्बिक साउटोमे और प्रिंसेप संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। 1975 में आज के दिन ही पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की थी। वर्ष 2007 में वन टू गो एयरलाइंस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई थी। और वर्ष 2008 में आज के दिन ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में आज के दिन ही दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था। और वर्ष 2014 में आज के दिन ही इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और श्रोता आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है विश्व ओजोन दिवस। ये दिवस पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ओजोन को पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है और समताप मंडल में मौजूद इस परत को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण का कार्य करने के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें कि लगभग 40 वर्ष पहले ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत कई देश एक साथ आए थे। ये एक अभूतपूर्व समझौता था जिसने ओजोन की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता की शुरुआत की थी। और इस वर्ष ओजोन दिवस का विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है। तो इस ओजोन दिवस पर सभी को एक साथ आकर एक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा में लोग अधिकतम अपना योगदान दे सकें। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए एफएम रेनबो पर।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

अगर आप इस आवाज़ को पहचान गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं पहचान पाए तो मैं बताता हूँ, ये आवाज़ है MS सुबु लक्ष्मी की, जिनकी आज जयंती है। उनका पूरा नाम था मदुरै षणमुख वडिवु सुबु लक्ष्मी। वे भारत की सबसे प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी और उन्हें भारतीय संगीत तथा भक्ति संगीत को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बचपन से ही संगीत का वातावरण अपने घर में देखा और सबसे पहले वीणा वादन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और बहुत ही कम उम्र में सार्वजनिक रूप से गायन शुरू कर दिया था और आगे चलकर कर्नाटक संगीत की एक महान कलाकार बनी। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की शुद्धता के साथ साथ भक्ति और भावनात्मक अभिव्यक्ति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और कई अन्य भाषाओं सहित हिंदी में भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और भजन गाए। भज गोविंदम, विष्णु सहस्त्रनामम, वेंकटेश्वर सुप्रभातम और वैष्णव जंतो तेने कहिए जैसी उनकी प्रस्तुतियाँ बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और मीरा फिल्म में

वीरा की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के माध्यम से उनकी गायकी को काफ़ी पहचान मिली थी। उन्हें संगीत कला निधि, रमन मैग्सेसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे तमाम पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो ये थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आपके लिए बहुत सारी जानकारी। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत संगीत आपके लिए रेनबो पर।

और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है सर रोनाल्ड रॉस की, जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक, वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और उनका जन्म भारत में अल्मोड़ा में हुआ था। आपको बता दें कि रोनाल्ड रॉस ने चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में ही इंडियन मेडिकल सर्विस में काम किया, और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध मलेरिया पर किया था। उस समय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि मलेरिया रोग मनुष्य में किस प्रकार फैलता है, तो रॉस ने अपने शोध में यह सिद्ध किया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया की परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती हैं। तो इस प्रक्रिया में उनका जो वैज्ञानिक आधार था और मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण में उनका जो कार्य था उसको महत्वपूर्ण योगदान समझा गया, और इसके लिए उन्हें 1902 में शरीर क्रिया विज्ञान यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति भी थे। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं ए बी तारापोरे को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे भारतीय सेना के वीर अधिकारी थे और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण साहस और अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर वर्जूरजी तारापोरे। महाराष्ट्र में एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने भारतीय सेना की पूना हॉर्स रेजिमेंट में अधिकारी के तौर पर काम किया, और बख्तरबंद युद्ध में उनकी विशेष भूमिका रही थी। फिलहाल ये गीत आपके लिए, इसके बाद बातें होंगी और भी। और आपको हम ये भी बता दें कि ए बी तारापोरे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह की, जो कि भारत के महान सैन्य अधिकारियों और भारतीय वायुसेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश काल में भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा की। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण आगे बढ़ते गए। 1964 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने वायुसेना का नेतृत्व किया। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और भारतीय वायुसेना के वे पहले अधिकारी थे जिन्हें 5-स्टार रैंक प्रदान किया गया और उन्हें मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स भी बनाया गया था। और श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है कपिला वात्स्यायन की, जो कि भारत की प्रसिद्ध विदुषी, कला इतिहासकार, लेखिका और भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा कला विशेषज्ञ थी। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत, वास्तुकला और साहित्य के पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया और इन विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, शोध लिखे और लेख लिखे। वे विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय नृत्य और परंपरागत कलाओं के संरक्षण तथा अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें कि उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और आज ही हम याद कर रहे हैं केसरबाई केरकर को, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे भारत की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी और बचपन से ही संगीत में

रुचि लेने के कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संगीत की शिक्षा लिया और अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीत गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया और आगे चलकर जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिकाओं में अपना स्थान बनाया था। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रसिद्ध रिकॉर्डिंग सूर नंद भरण को संगीत प्रेमियों के बीच में विशेष सम्मान प्राप्त है। और आपको बता दें कि उनकी आवाज़ की दुर्लभ रिकॉर्डिंग को बाद में अंतरिक्ष की ओर भेजे गए वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। फिलहाल एक खूबसूरत संगीत आपके लिए रेनबो पर, इसे आप एंजॉय कीजिए।

और शायद आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं श्यामलाल गुप्त जी को भी, जिनकी आज जयंती है। और उन्होंने एक राष्ट्रभक्त, गीतकार, स्वतंत्रता सेनानी और कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और अपने लेखन और कविताओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम की भावना को जगाने का कार्य किया था। और आज ही हम याद कर रहे हैं एक जाने माने संगीतकार राम लक्ष्मण को, जो कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे संगीतकार के

रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों के साथ साथ बहुत सारी प्रसिद्ध मराठी फिल्मों में भी संगीत दिया था। उनकी संगीत शैली में भारतीय लोक धुनों, शास्त्रीय संगीत और सरल तथा मधुर लोकप्रिय धुनों का एक सुंदर सा मेल दिखाई देता है। उन्होंने कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ में काम किया, जिसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, SP बाल सुब्रमण्यम, कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे अनेक प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 102.6। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपके दोस्त आर्ष निखिल के साथ में। और आपको बता दें कि आज जन्मदिन है प्रसून जोशी का, जो कि भारत के जाने माने कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक और विज्ञापन जगत की प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। उन्होंने वैसे तो भौतिक विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की और बाद में प्रबंधन की पढ़ाई भी की, लेकिन अपने रचनात्मक लेखन और कविता के कारण उन्होंने साहित्य तथा विज्ञापन की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई थी। उन्होंने कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखे हैं। तारे जमी पर, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, फना दिल्ली 6 और नीरजा जैसी फिल्मों में उनका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। उनके गीतों में भावनात्मक गहराई, सरल भाषा और काव्यात्मक अभिव्यक्ति हमें साफ नजर आती है। और आपको बता दें कि रंग दे बसंती के गीतों ने जहां एक ओर युवाओं के बीच में देशभक्ति और सामाजिक चेतना की भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था, वहीं तारे जमीन पर के गीतों ने बच्चों की भावनात्मक दुनिया को संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया था। फिल्मी गीत और संवाद लेखन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किए गए हैं और 2015 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। और अब चलते चलते क्रिकेट की बात कर लें तो भारत ने अफगानिस्तान के साथ दूसरे 2020 मुकाबले में दिल्ली में 7 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान ने जहाँ पहले बल्लेबाजी की और आपको बता दें कि उन्होंने बनाए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन, जवाब में भारतीय टीम ने 15वें ओवर में 3 विकेट खो करके 163 रन बना करके जीत हासिल कर ली थी। तो फिलहाल आज गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में इतना ही, और फिलहाल मैं आपसे लूँगा अनुमति, गौतम आपके साथ में होंगे कुछ ही देर में। आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, सुनते रहें हमें और एक से एक बेहतरीन गीत एंजॉय कीजिए।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कहना है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव निजी

क्षेत्र की गतिशीलता के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए की हासिल की जा सकती है। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है। पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद ने बिहार के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले 5 डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में होगा। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को लागू करने के लिए कानून पारित कर दिया है। केरलम में पथनामथिट्टा और इडुकी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिशों की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को बचाया जा चुका है। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और थक गए हो तो थोड़ा रुक जाना, मगर खुद से हार कर बैठ मत जाना। वक्त बदलता है, लोग भी बदलते हैं, बस अपने ख्वाब से नजर मत हटाना। सावधानी हटी और
2: आजा प्यार की होड़ी।
3: दिल बोले तो
4: हाट हाट
5: हमा यार सौदा सौदा।
4: ओहो
2: दोनों डील कर
3: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

Well, अगल बगल तो नहीं लेकिन आमने सामने जरूर हैं, क्योंकि मेरे दिल से आपके दिल तक आवाज तो पहुंच रही होगी। कहते हैं कि नई सुबह है, नई उमंग है, दिल में भर लो नए तरंग। सूरज कहता है बढ़ते जाओ, अपने सपनों को सच बनाओ। राह कठिन हो मत घबराना, गिरकर फिर से उठते जाना। और मेहनत से हर राह सजेगी, हिम्मत से हर मंजिल मिलेगी। छोटे कदम ही जीत दिलाएं, हर दिन कुछ बेहतर कर जाएं। खुद पर रखो सच्चा विश्वास और सफलता आएगी अपने ही पास। मुस्कान रहे और मन में प्रकाश, हर पल जगाओ नई आस। और आज का दिन अपना बनाए, मिलकर नई उड़ान भर जाए। जी हाँ, उड़ने के लिए तो मैं एकदम तैयार रहता हूँ। पंछी बनूं उड़ता फिरूं, स्टूडियो में तो डांस करता ही हूँ, लेकिन आप भी कहीं ना कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में जरूर लेकर आए। ना मॉर्निंग अच्छी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ 102.6 FM। दिल से दिल तक लेते रहो नाम।

वेल लाइफ में ना जो कुछ भी हो उसे थोड़ा सा भुलाना पड़ता है और खुद को आगे अग्रसर करना पड़ता है। वैसे यार दिल्ली दिलवालों की मैं आपको बता दूं, अगर आने वाले दिनों में कुछ नया और मज़ेदार करने का आप प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए शहर में कई दिलचस्प इवेंट्स होने वाले हैं। 18 से लेकर 27 सितंबर तक इंडिया हैबिटेट सेंटर में थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है। क्या बात है, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं और दिल से लगा लो तो फिर मजा ही मजा और दिमाग को चढ़ा लो तो फिर सजा ही सजा। वहीं नेशनल साइंस सेंटर में 16 से लेकर 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा, अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक और वर्ल्ड स्पेस वीक जैसे कार्यक्रम होने वाले हैं। और कई बार वीकेंड पे ही प्लान बनता है और फिर आप ब्लेम करते हैं, पता है किसको ब्लेम करते हैं आप, कि पूरा दिन कहां चला गया, ब्लेम दैट नाइट दैट इवनिंग। लेकिन सुबह सुबह थोड़ी ना ऐसा करते, सुबह सुबह तो काम करते हैं ना। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सो डोंट ब्लेम योर बॉस एज वेल, ब्लेम योरसेल्फ, ब्लेम कर दो फिर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
12: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक, और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
13: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
14: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
15: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
14: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
15: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
16: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

ये मुनासिब नहीं, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। कहते ना कि आसमान में उड़ने वाले परिंदे कभी पेड़ों से दिल नहीं लगाते। हाँ, पेड़ जरूर लगाते हैं, बिकॉज वो घाव नहीं छाव जरूर देते हैं। गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर, सुन रहे हैं आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इनको

well, मैं कहीं गुम नहीं हुआ हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और आपको बता दूं कि कई बार ना कॉलेज की जब आप तलाश करते हैं और कॉलेज के जो दिन होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहती है हॉस्टल की भी। हाँ, दिल्ली सरकार ने देश भर से आने वाले 10,000 छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। और ये मेमोरीज जो हैं बहुत अच्छी भी होती हैं, बिकॉज कॉलेज लाइफ बेस्ट लाइफ है। कि किसी से बेहतर करना सिखाए ना सिखाए, लेकिन हाँ, खुद से बेहतर होते चलोगे, बस बढ़ते चलो आगे। और दिखाना है कितना है किसमें दम, तो फिर उसके लिए उठना पड़ेगा आपको। भुला दीजिए सारे गम, दम दम।

well, पता है कभी कभी ना दिल्ली का मौसम भी अपनी ही धुन पर चलता है। सुबह कुछ और मिजाज, दोपहर तक कुछ और, और आज भी आसमान में बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज आपको पता है ना कि आपके दिल का ट्रैफिक कहाँ रुकना चाहिए। जी हाँ, 102.6 FM, दिल से दिल तक। तो घर से निकलने से पहले मौसम का हाल जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कैसा होगा, क्या खाना चाहेंगे आप। ये भी कहीं ना कहीं मौसम पे ही डिपेंड करता है ना। ख्वाहिशें ढेर सारी होती हैं। मैं तो कहूँगा कि फिटनेस फ्रीक बन जाओ, मेरी तरह बन जाइए। और मेरी तरफ अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक बहुत ही फिट आदमी दिखाई देगा। वैसे सुनाई भी दे रहा होगा, सुनने पर ही थोड़ा सा गौर कीजिए। बहरहाल, बिकॉज कहते हैं कि चाहत चाहत चाहत, इसमें कहीं ना कहीं राहत थोड़ी कम होती है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे।

सकता है। दिन गर्म और उमस भरा रह सकता है, लेकिन बादलों की मौजूदगी और बारिश के आसार मौसम को बीच बीच में राहत

जीवन में ना कभी कम नहीं होनी चाहिए। बनी ने कहा था ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि शहरों की रफ्तार बढ़ती है तो उनके साथ सफर के साधनों का आधुनिक होना भी उतना ही जरूरी है, और इसी दिशा में पीएम ई बस सेवा योजना शहरों में स्वच्छ और आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल है। और इस योजना के तहत देश के 115 से अधिक शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करने का लक्ष्य है, और इन बसों में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेहतर टिकटिंग सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। दिल्ली वालों, आपके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा से कम नहीं।

मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर ये फासला क्या है, ये फासले कम होते चले जाएंगे बिकॉज 102.6 FM दिल से दिल तक। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, सुन रहे हैं आप।

0: सफर जरूर हो लेकिन बफर ना हो, है ना। वो बफरिंग कहीं ना कहीं रोक देती है। मुश्किलों से डरना नहीं है, हौसला रख, तू चलता जा, मुश्किलों से ना डरता जा, राहों में कांटे मिलेंगे अगर कदमों को फिर भी बढ़ता जा। गिरना कोई हार नहीं, रुक जाना स्वीकार नहीं, आज अगर तू थक भी गया कल फिर से उठना बाकी है।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूं, कभी मैं हूर

वेल अंधियारिया चाहे कितना हो, अंधियारा चाहे कितना हो, सूरज को आना बाकी है। तेरे सपनों की इस दुनिया में तेरी जीत की कहानी बाकी है। बस खुद पर विश्वास बनाए रख, मेहनत को अपना साथी रख, एक दिन मंजिल झुक जाएगी, तू कोशिश करना जारी रख। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपको पता ही होगा। मैं भी कोशिश करता रहूंगा एंटरटेन करने की, और निखिल भी आ रहे हैं। बहरहाल मेरे जाने का समय आ गया है, तो जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो और आरजे गौतम इज साइनिंग आउट। लेकिन एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? दिल से दिल तक 102

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण भी स्वीकृत हुए। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 1

दी सेवा, सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया। पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद ने बिहार के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले 5 डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। भारत ने कहा है कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी विद्यार्थियों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। केरल में एर्णाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारत ने दूसरे 2020 क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
9: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
3: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
4: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, ये आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने आपके दोस्त आर्जे निखिल के साथ में। और मैं ये बता दूं, मेरे जाने के बाद आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे, तो वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर लेकर के आएंगे शानी मित्तल 10 बजे से, और फिर शालिनी सिंह के साथ आप सुन पाएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स दिन में 11 बजे से। और श्रोताओं आपको हम बता दें कि 12 बजे से शानी मित्तल एक बार फिर आपके साथ होंगे लेकर के वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल, और रेनबो हेल्पलाइन आप सुन पाएंगे शालिनी सिंह के साथ दिन में 1 बजे से, जिसमें आज का टॉपिक है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, और इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तुहिना गोयल। और दिन में 2 बजे से आप सुन पाएंगे आशियाना, इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे ज्योतिका सिंह के साथ में। रेडियो डॉक्टर आप सुनेंगे आज, जिसमें आज बातचीत होगी स्पेशल और इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी, जिसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तरुण कुमार और डॉक्टर श्वेता शर्मा, तो इस प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। और फिर अल्फा जिन का समय होगा दिन में 4 बजे से। फिलहाल मुझे दीजिए चलने की आप इजाज़त, हम लोग बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे, आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर, हमें सुनते रहें और एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल ट्रैक्स और खूबसूरत सी बातों को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड वेलकम टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 एफएम रेनबो। आई एम अशानी एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू बी स्टंबलिंग इनटू द क्लासिक्स फॉर द नेक्स्ट आवर। सो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट देन विद स्टंबलिंग इन बाय क्रिस नॉर्मन।

0: was a song. Don't wander too far. We will be right back with more timeless favorites after this short break.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो?
2: हाँ।
1: इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ

0: और ये ऑनलेस ले लो।
1: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: FM Rainbow 102.6।
8: वेलकम बैक टू द मैशेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 FM रेनबो। यू आर विद मी अशानी। हियर्स अ क्विक ट्रैफिक एडवाइजरी फॉर कम्यूटर्स हेडिंग टुवर्ड्स आश्रम एंड सरायकाले खान। द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्ट्रेच फ्रॉम जेतपुर टुवर्ड्स आश्रम हैज बीन टेम्पररीली क्लोज्ड एट मदानपुर खदर। यूज द सर्विस रोड वाया कलिंदी कुंज एंड मथुरा रोड एंड फॉलो ट्रैफिक डायरेक्शंस एंड प्लीज प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। लेट्स गो बैक टू म्यूजिक नाउ।

0: time for a short break, but don't go anywhere. We will be right back only on 102.6 FM Rainbow.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली स्टार

0: It's time to take our last break. Stay tuned. And thank you so much for all the listeners who are tuned in and sending such sweet messages. Thank you so much.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी

काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री ल्योनुपो डी एन डुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय किया। अमरीका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाए गए सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केरलम में एनारकुलम, पथानाम थिट्टा और इडुक्की जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और भारत ने दूसरे T20 के क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली

में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा, सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। जलशक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एंथम जारी किया है। पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद ने बिहार के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले 5 डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। भारत ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

0: गणपति बप्पा मौर्या और गणपति के त्यौहार के यानी कि गणेश चतुर्थी के सभी तरफ धूम है और इसीलिए आप सभी को इस गणपति पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। और अब अगर आप एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड और फन के दीवाने हैं तो फिर जो है आप सबके घरों में ना एक चीज़ बहुत ही कॉमन होगी और वो ये कि आपके घर के टीवी का जो रिमोट है ना वो बैटरी से भले ही एक दो महीने चले लेकिन थप्पड़ से चार पांच महीने चली जाता होगा, है कि नहीं है? इस बात को सुन के जब आप मुस्कुरा रहे हैं ना, मैं जानती हूँ सारी बातों को आपके। और ना सिर्फ इसका असर आपके टीवी के रिमोट पर है बल्कि मुझे लगता है ना रेडियो पर भी इसका कुछ खास असर हुआ है, क्योंकि जब भी फ्रिक्वेंसी पकड़ती नहीं ना तो आप लगाना चालू करते हैं थप्पड़ ना, इसीलिए पुराने वाले जो रेडियो सेट हैं शायद वो बंद होने जा रहे हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब जो है वो ऐप का जमाना है, जैस अब आप बताइए आप उसमें क्या कर सकते हैं, अब आप थप्पड़ नहीं मार सकते हैं कि नहीं, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दिया। तो हमारी जो ऐप है ना न्यूज़ ऑन AIR ऐप जो है उससे आप जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम जो चैनल्स हैं आकाशवाणी के उन्हें आप सुन सकते हैं और इसके अलावा हमारे वेव्स OTT प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तमाम सारी जानकारी के बाद मैं गया जी सोने मगड़ो, बताइए क्या हाल चाल है। मैं हूँ शालिनी और आपका नाम तो आप जानते ही होंगे और फिलहाल जो आप नहीं जानते हैं वही हम आपको बताने आए हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें, ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और न्यू रिलीजेज और तमाम सारी बातें। लेकिन जो सबसे खास बात है वो आप जानते हैं कि आज हम बनाते हैं बॉलीवुड सरताज, हम खेलते हैं क्विज, उसमें पूछते हैं आपसे सवाल और आप देते हैं जवाब और बन जाती है बॉलीवुड सरताज। सांस ले लेने दीजिए, बहुत देर से बोल रही हूँ मैं फिलहाल। तो उठाइए फटाफट से हमारा जो फ़ोन नंबर है वो सेव करिए, 9868107070। इस पर आप हमें मैसेज करके बताएंगे जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं सारी बातों में छुपा होगा आज का सवाल जो मैं आपसे करूंगी, उसका जवाब आपको देना होगा। तो तैयार हो जाइए, सुनिए गाना।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

बिल्कुल, आपके शहर में हुए, दिल्ली शहर में। और यहाँ पर दिल्ली शहर में एक जगह है जिसका नाम है आकाशवाणी, और आकाशवाणी में है एक चैनल जिसका नाम है रेनबो 102.6। और यहाँ पर एक जो है आपके साथ बैठकर जो गुफ्तगू कर रही है उसका नाम है शालिनी। शालिनी कहते हैं मुझे। और बॉलीवुड ट्रेल्स शुरू हो चुका है शो, आप सुन रहे हैं इसे यहाँ 102.6 पर। और अब हम आपको जो है बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें बताने वाले हैं, लेकिन आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपना मोबाइल लेकर तैयार रहना है, क्योंकि जितनी भी सारी बातें यहाँ पर होंगी ना, उन सारी बातों में आज का सवाल छुपा होगा, और उसी सवाल के जवाब को देकर ना आप बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज। तो 9868107070 है नंबर, 9868107070, इस पर आपको मैसेज करके बताना होगा जवाब। और फिलहाल बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो यश के फैंस है ना, एक्टर यश के फैंस, उनके लिए खबर है कि जो यश की टॉक्सिक है ना मूवी, वो 26 अगस्त को जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अब वो लगभग एक महीने के अंदर ये फिल्म जो है वो OTT पर दस्तक देने वाली है। तो खबरों के मुताबिक यश की जो टॉक्सिक है अब फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये 25 सितंबर को 2026 को ही OTT पर जो है वो स्ट्रीम हो सकती है। हालांकि अभी तक जो है मेकर्स या OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कोई रिलीज डेट तो नहीं आई है, लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो फिर ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लगभग एक महीने के बाद ही ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ सकती है। तो लुत्फ उठाइएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है क्या एक गाना अगला जो मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ, तो जे करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों, राम सिया राम आ रहे हैं।

तो सियाराम के जय जय करने के बाद ना आपको जो है वो सीताराम जो है वो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तीन फिल्मों के रूप में आपको वो नजर आएंगे आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि साल 2026 में ना रामायण पर आधारित एक दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही हैं। एक फिल्म जो है वो सितंबर में दस्तक देगी और दो फिल्में आएंगी अक्टूबर में। दिलचस्प ये है कि रामायण पर जो फिल्में दो फिल्में हैं ना वो रणबीर कपूर वाली जो रामायण है ना पार्ट वन, उससे पहले रिलीज होंगी। तो सबसे पहले रिलीज होगी फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की, ये जो है वो 25 सितंबर को रिलीज होगी और ये जो है वो अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी है और नई पीढ़ी तक रामायण की जो कथा है उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म है वो वाल्मीकि रामायण है, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को और ये फिल्म जो है वो वाल्मीकि रामायण पर जो है वो आधारित होगी, महर्षि वाल्मीकि की ये रामायण पर आधारित होगी। इसके अलावा बात यह है कि फिल्म का जो निर्देशन है वो भावना तलवार ने किया है। और जो तीसरी मूवी है रामायण पार्ट वन, जो कि रणबीर कपूर वाली और जो फिल्म है जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो फिल्म जो है वो तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है नितेश तिवारी की रामायण पार्ट वन। ये फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसको दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक जो है उसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी आपको नजर आएंगे भगवान राम और सीता के किरदार में, तो इनका आप जो है वो इंतजार करिए, जल्दी ही आपको वो थिएटर्स में नजर आएंगी फिल्में। लेकिन फिलहाल आपको इंतजार जिस चीज का नहीं करना पड़ेगा वो है एक बहुत ही अच्छे से ट्रैक, वो मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ। Little Tuba.

0: नहीं मतलब दिल का साइज देखिए और आंखों का साइज, क्या ये मुमकिन है कि दिल जो है वो आंखों में डूब जाए? लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है ना तो आपको दिल को स्विमिंग सिखानी चाहिए थी, फिर ऐसा नहीं होता। मैं बता रही हूँ आपको ऐसी बातें मेरी वजह से मिलती है। मेरा नाम है शैलनी और बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। यहां पर कर रहे हैं ढेर सारी बातें बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड से जुड़ी हुई, इसकी फिल्मों से जुड़ी हुई। तो हमने आपको अभी बताया रामायण के बारे में, और अब आपको मैं एक और गुड न्यूज बता देती हूँ। वो ये है कि रोमांटिक फिल्में अगर आप पसंद करते हैं ना, तो उसके लिए एक फिल्म जो है वो हाल ही में OTT पर जुड़ने वाली है। तो उसमें जो है वो डांसिंग स्टार शांतनु महेश्वरी जो है वो लीड रोल में नजर आएंगे। और ये फिल्म भारत में 2025 में रिलीज हुई थी हालांकि, लेकिन अब जो है इसे आप जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये जो है लव इन वियतनाम फिल्म का नाम है और एक लव ट्राइंगल है ये। इसकी IMDb रेटिंग जो है वो 7 है। इस फिल्म को मैडोना इन अ फर कोट नाम की नॉवल पर इस पर आधारित है, इस पर बनाया गया है। इसको राहत शाह काजमी ने डायरेक्ट किया है। और अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो पूरे ये वाली जो फिल्म है ना आपको फील गुड करा देगी। तो फील गुड कराने से मुझे याद आया कि पति जो है, मतलब पति से पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को ना जन्नत बना दूंगी। तो पति कहता है कि जन्नत तो ठीक है, दाल रोटी तो बनाना आता नहीं, जन्नत तो बाद में बनाओगी है, ऐसा मत कहिएगा, आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा। फिलहाल ऐसी गलती बिल्कुल भी मुआफी नहीं मिलती उस चीज की। यहां पर मिलते हैं आपको क्या बढ़िया सी बेहतरीन से ट्रैक, लेकिन उससे पहले मैं एक कमर्शियल यहाँ पर प्ले करूंगी, एक दो कमर्शियल्स, उसके बाद आप सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा गाना, और उसके बाद नंबर आएगा किसका, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी सवाल आज का, बॉलीवुड सरताज से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगी। उसके लिए तैयार रहिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9868107070 नंबर, जिस पर आपको मैसेज करके आपका जवाब देना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, ठीक है जी।
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: आज फिर लेट हो गए?
5: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
4: क्यों बैठे थे बाहर?
5: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
4: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
5: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें।

एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

क्या बात है, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो यहीं पर हूँ, कहीं चली थोड़ी ना गई हूँ। मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। यहाँ पर चल रहा है शो क्या क्या क्या क्या क्या, आपको याद रखना चाहिए ना, कितनी बार बताऊँ मैं, आदि होती है। चलिए फिर से बता देती हूँ, बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है शो, और इस आपको बता देती हूँ कि हमारे इस 102.6 की फ्रीक्वेंसी के अलावा आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, और साथ ही साथ आप हमारे OTT प्लेटफॉर्म का भी लुत्फ उठा सकते हैं, वहाँ पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज आपको मिलेगा। और अब बारी आ चुकी है आज के सवाल की, तो फटाफट से तैयार हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, शीशे के सामने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा काम। आपको सिर्फ अपना फोन लेना है हाथ में, 9868107070 नंबर, 9868107070 नंबर। तो आज का सवाल क्या है, कान खोल कर सुनिएगा ध्यान से। एक्टर यश की कौन सी वो मूवी है, कौन सी वो फिल्म है जो कि 25 सितंबर 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? बताइए बताइए बताइए जल्दी से। आपने ध्यान से अगर सुना है ना, तो आपको ये सवाल का जवाब जरूर पता होगा, और आप आज बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं। तो मैं क्या जी, किस बात का इंतजार कर रही हूँ, तुझे फटाफट से जवाब भेज दो, मैं इंतजार कर रही हूँ, आपका मैसेज बॉक्स खोल।

वेलकम बैक है जी आपका साढ़े शो विद, जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, और आपके साथ मैं शालिनी। शो का नाम तो मैंने आपको बताई दिया, लेकिन चैनल का नाम भी तो आप सुन लीजिए। आकाशवाणी रेनबो कहते हैं 102.6 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। साथ ही आप जो है वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है वेव्स। फिलहाल यहाँ पर आज जो है वो बॉलीवुड सरताज क्विज चल रहा है इस समय, और हमने आपसे सवाल पूछा था कि एक्टर यश की जो फिल्म है जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, वो कौन सी फिल्म है जो अब 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो बहुत सारे जवाब जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, और मैं स्क्रॉल कर करके ना परेशान हो गई हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फिलहाल आप भी जो है फटाफट से जवाब दे दीजिए कि यश की, एक्टर यश की जो फिल्म है, फेमस फिल्म है, वो कौन सी फिल्म है, उसका नाम आप हमें बताइए, जो 25 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। फटाफट से बताइए, 9868107070 इज द नंबर।

9868107070 है नंबर। और हाँ, बॉलीवुड सरताज तो आप बनेंगे ही, कोई एक ही बनेगा, लेकिन जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया होगा ना, उनका नाम भी मैं यहाँ पर बताऊंगी जरूर। तो फटाफट से भेजिए मैसेजेस।

बिल्कुल भी हैरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें हम करते ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने सारे लिसनर से बहुत प्यार करते हैं। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, चैनल का नाम है रेनबो, ये तो आप जानते हैं, और साथ ही साथ शो का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में चल रहा है क्विज फिलहाल बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि एक्टर यश की कौन सी वो फिल्म है जो कि जल्द ही 25 सितंबर को, आने वाले 25 सितंबर को जो है वो OTT पर रिलीज होने वाली है। तो मेरा मैसेज बॉक्स जो है वो एकदम फुल हो चुका है, और आप भी अगर जवाब देना चाहते हैं तो फटाफट से दे दीजिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 9868107070 जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में आपको हम मिलाएंगे आपके बॉलीवुड सरताज से। तो जल्दी से जवाब दीजिए, और फिलहाल ये अगला ट्रैक सुनिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही जबरदस्त खबर, वो ये कि हमारे जो पुरानी फिल्मों के जो विलन होते थे ना, वो बहुत ही मज़ेदार होते थे, बहुत ही डरावने होते थे ना, उनको सुनकर डर लग जाता था, जैसे कि मोगैम्बो खुश हुआ। और इसके अलावा जब भी विलन जो है वो हीरोइन को जो है वो किडनैप करके ले जाता था, तो हीरोइन कहती थी मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो विलन कहता था कि इतनी मेहनत करके हीरो से पंगा लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ दूँ, भगवान के लिए छोड़ दूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। और आज के जो विलन है, समय बदलने के साथ साथ ना, वो न सिर्फ आपको डराते हैं बल्कि आपको हंसाते भी हैं। क्या कहते हैं, बाबू कैसन वा, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाने हैं आप, मैं बात कर रही हूँ रवि किशन की, जो कि मिर्जापुर द मूवी में उन्होंने खतरनाक विलन की भूमिका जो है वो निभाई है, और उनकी ये जो फिल्म है उसको बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं उनके फैंस ये देखकर। लेकिन ये साल जो है वो रवि किशन के लिए बहुत ही शानदार रहा है, उनकी 5 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं, आर्यभट्ट का 0, पैदी, धमाल 4, भाभी जो घर पे हैं, फन ऑन द रन, मिर्जापुर द मूवी, ये जो है वो लेटेस्ट रिलीज है उनकी, और इसने जो है एक धमाल मचा रखा है। बिल्कुल 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अब तक इसमें जो है वो रवि किशन ने बब्बन का किरदार निभाया है, मतलब आप अभी भी देख सकते हैं, और अब तक का जो टोटल करेक्शन है वो पहुंच चुका है 281 करोड़। मुझे ना पानी पीने की जरूरत है, मुझे बहुत ही फील गुड नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए उनके लिए तो अच्छी बात है ना, हमारे पास कुछ आए ना आए, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट तो होता ही है ना, एंटरटेनमेंट तो हमें मिल ही रहा है। फिलहाल आपको देना है जवाब कि यश की कौन सी फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो जवाब देने के लिए नंबर है 9868107070। फटाफट से सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद मिलते हैं जवाब के साथ।

0: वेलकम बैक डियर्स, यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विथ मी शालिनी। शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में मैं हूं आपके साथ। ये तो मैंने आपको बता दिया कौन हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आकाशवाणी रेनबो पर आप हमें सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी, आप हमें सुन सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म से भी, आप हमारे जुड़ सकते हैं वेव्स। लेकिन फिलहाल जो आपके लिए बेहतरीन सी खबर है वो ये है कि आज के बॉलीवुड सरताज जो है वो हमें मिल चुके हैं। सही जवाब उन्होंने हमें दे दिया है, और वो कौन है? प्रवीण जी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज के बॉलीवुड सरताज वो बन गए हैं। और ये है वो खरगोन मध्य प्रदेश से, इन्होंने हमें सही जवाब दिया है। अगली आवाज आप प्रवीण जी की सुनेंगे। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: मेरा बढ़िया है।
0: आपको कैसा लग रहा है? तो मैं जानती हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप ये बताइए कि पहली बार आप बॉलीवुड सरताज बने?
1: नहीं, कई बार बन चुका हूँ।
0: अरे वाह, तो मतलब आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। नहीं, वेरी नाइस। तो चलिए, अब हम जो है आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप बॉलीवुड सरताज बन गए हैं। और फटाफट से आप जो है वो सही जवाब हमारे लिसनर्स को बता दीजिए।
1: मैम, टॉक्सिक फिल्म है।
0: टॉक्सिक है मूवी का नाम, और हमने सवाल आपसे क्या किया था?
1: कि यश की जो मूवी आ रही है अभी OTT पे रिलीज होने वाली है, जो पहले पिछले महीने रिलीज हुई थी, उसका नाम पूछा था आपने।
0: जी बिल्कुल, तो सही जवाब है टॉक्सिक। चलिए, ये तो आपको ही बधाई की बात, लेकिन अब आप हमें बताइए कि आकाशवाणी से आप जब कितने सालों से जुड़े हैं, और क्या कौन से शोज आपको पसंद हैं यहाँ पर?
1: आकाशवाणी के तो सभी शो पसंद है, और आकाशवाणी से मैं सबसे पहले जुड़ा था 2002 से, पर बीच में मैंने छोड़ दिया था, फिर 2019 से शुरू किया था जब से ये
0: हेलो
1: कंटिन्यूअस सुनता आ रहा हूँ।
0: बहुत अच्छा करते हैं आप, और आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आप छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी आप छोड़कर चले गए थे? हा?
1: नहीं, मैं स्टूडेंट था ना उस समय, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में, तो मैं घर से चले गया था दूसरे शहर, तो वहाँ छोड़ गया था सुनना।
0: वैसे बाकी शहरों में भी हमारा जो है रेडियो तो आता ही है ना, तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं अलग फ्रिक्वेंसी में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आपने हमें जवाब दिया, और आज के हमारे बॉलीवुड सरताज के लिए तालियां। कुछ कहना चाहेंगे आप हमसे? हेलो,
1: रेडियो आकाशवाणी FM रेनबो के सारे चैनल सभी सुनना करे, सभी जितने भी लिसनर है, बस
0: बस यही कहना चाहिए। बड़े शर्मीले किस्म की आप, नहीं आप कुछ और कह ही नहीं रहे, मुझे बुलवाना पड़ रहा है आपसे जबरदस्ती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड सरताज बनने के लिए, आपको बधाई और आपका धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: थैंक्स टू यू टू। तो ये थे आज के हमारे बॉलीवुड सरताज, और उसके अलावा जो है वो हम आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं हमें, तो उनके नाम हम आपको अब से थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये वाला गाना चलाएंगे आपके लिए, सुन लीजिए इसे ध्यान से।

अलावा बहुत सारे और सरताज भी हैं जिनका नाम हम आपको बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉलीवुड सरताज तो एक ही बनता है, लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम भी आपको हमें बताना बनता है। तो हमें सही जवाब भेजा है, किसका है सही जवाब? विनोद सोनी का सही जवाब है, मेहना चौक से, बठिंडा से। और इसके अलावा गलत जवाब भी भेजे लोगों ने, लेकिन गलत जवाब का नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है ये हमारे पास, इन्होंने देखिए जवाब भेजा, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये इन्होंने भी जवाब दिया है टॉक्सिक। और ये किस बात का जवाब दिया इन्होंने? सनी देओल का नाम क्यों लिखा है आपने? मैंने तो पूछा था यश के बारे में, आप बिना सनी देओल के पहने तो कुछ भी करेंगे कि अब नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। उत्तम नगर से हमारे पास आधा जवाब आया है, क्योंकि इन्होंने फिल्म का आधा नाम लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए कहते हैं पूरी बात ध्यान से सुना करिए, पहले ही आप मैसेज करने लग जाते हैं इतनी जल्दी में होते हैं। अब हमारे पास अगला जो जवाब है वो है हरिनगर, आयुष का, हरिनगर नई दिल्ली से, टॉक्सिक जवाब इन्होंने भेजा है, सही जवाब है बिल्कुल। और इसके अलावा उत्तम नगर से हमारे पास आया है अधूरा जवाब, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपको भी जो है इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। देखिए आपका नाम बोलते बोलते रह गया। अर्चना राजपाल जो है इन मुखर्जी नगर दिल्ली से, इन्होंने जवाब भेजा है सही, टॉक्सिक फैन इंडिया फिल्म। देखिए आई डोंट नो इन, ये क्यों नहीं सुनते हैं पूरी बातें आप, एस रेडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए ना। बस देखिए अगला जवाब आया, सिर्फ टॉक्सिक लिख के भेज दिया, नहीं नाम लिखा है ना ही कुछ और लिखा है। तो ऐसे कैसे बताएंगे हम कि आपका नाम क्या है? गुमनाम है, कोई ऐसे करके नहीं चल सकता है ना यहाँ पर। मोहम्मद फुरकान जो है वो इन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने लिखा क्या मैं आपको बताऊँ? टोकसी लिखा है इन्होंने, ऐसे थोड़ी होता है, टॉक्सिक नाम है फिल्म का, गलत जवाब नहीं देना है। और इसके अलावा जो अगला जवाब है, अब देखिए अब ऐसे थोड़ी चलेगा, जवाब सुनने के बाद अब आप जवाब भेजेंगी तब थोड़ी मैं आपका नाम बताऊंगी, बहुत होशियार समझती है आप अपने आप को। मैं भी होशियार हूँ, मैंने टाइम देख लिया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब बता दिया, आपने फटाफट से उसे लिख दिया और भेज दिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूंगी क्योंकि जाने का समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आपने हमें भेजे ना कि सारे मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश की, जितने भी मैसेजेस मैं इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन बहुत से जवाब ने गलत भी है, ऐसी काम मत किया करिए। मुझे ना फिर नाम मैं बोल ही नहीं सकती, क्या कर सकते, मेहनत भी होती है और आपका नाम भी नहीं बोला कि देखिए। फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स में आपसे मैं लूंगी विदा, क्योंकि अगला शो आपके लिए आने वाला है। तो आप सुन रहे हैं क्या आकाशवाणी रेनबो 102.6, इसी तरह से सुनती रहिए। मैं गया जी सोने मकड़े थोड़ा ना, तुसी अपना ख्याल रखियो, ते नाले मैं थोनू ए कहना चाहनी हां कि ख्याल रखी ते गाना सुनी जाए, ठीक है जी। शालिनी सेस ta-da!

तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब भेजे हैं कि इस बात के जो हमने बॉलीवुड सरताज का जो सवाल किया था कि एक्टर यश की जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है, तो सही जवाब हमें जो दिया है अभी हमारे बॉलीवुड सरताज जो बने प्रवीण जी ने खरगोन मध्य प्रदेश से, वो आज के हमारे बॉलीवुड सरताज बन गए। लेकिन इसके

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम टू प्ले इट कूल विद दशानी ऑन 102.6 एफएम रेनबो। टुडे इज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड यस, वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट नॉट

0: Let's take a small break here. We'll be right back. Stay tuned to 102.6 FM Rainbow.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आज फिर लेट हो गए।
4: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
3: क्यों बैठे थे बाहर?
4: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
3: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
4: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल विद अशानी ऑन 102.6 FM रेनबो। टुडेस बर्थडे स्पॉटलाइट इज ऑन निक जोनस, हु टर्न्स 34 टुडे। ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग प्रोफेशनली एज अ चाइल्ड, बिकेम अ ग्लोबल नेम विद द जोनस ब्रदर्स एंड लेटर कार्व्ड आउट हिज ओन स्पेस एज अ सोलो आर्टिस्ट। And interestingly, he's also acted on both the big and small screen. Happy birthday, Nick Jonas. Here's his song, Sweet to Me, for all the Nick Jonas fans out there.

0: wishing you a great day ahead, wishing you a great day ahead as well. And again, as I said to Prajwal, it's amazing that people are taking steps to ensure that we are doing a little something just to protect our environment. So keep up the good work, Marbukkar. And let's take a small break here and think about the things that I have just said.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल विद अशानी ऑन 102.6 FM रेनबो। I have just seen your messages and I know that all of you are conscious towards the environment and you're taking care of it. But if you're wondering what else you can actually do, well, it's more manageable than it sounds. Choosing energy efficient air conditioners and refrigerators, disposing of old appliances properly instead of discarding them carelessly, and supporting cleaner cooling technology all genuinely make a difference over time. So this is also something that you can think about.

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों सहित 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान देशभर में कल से शुरू होगा। अभियान में स्वच्छता, युवाओं की भागीदारी और वेस्ट टू वेल्थ पहल पर जोर रहेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बिहार दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री और भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। नेपाल के मुगु जिले में 3 घंटे के भीतर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित M.S. सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है। इस अवसर पर देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते वड्डा वाला हेलो एगा जी, मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। और शो का नाम क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, रेनबो हेल्पलाइन शुरू हो चुका है शो। और आज हमारे साथ खास मेहमान कौन है उनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि माँ बनना या पेरेंट बनना या माता पिता बनना जो है वो हर कपल का ख्वाब होता है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में, इस खुशी तक पहुंचने में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो आते हैं और कई बार उनमें कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो उन्हीं परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उनसे निपटने के लिए आज के जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगी। आइए मिलते हैं आज के हमारी गेस्ट से जिनका नाम है डॉक्टर तोहिना गोयल। ये ऑब्स्टेट्रिशियन है और यानी कि स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत अनुभवी हैं, जो कि एमडी ग्रेजुएट हैं एम्स नई दिल्ली से और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं साथ में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तोहिना।
1: थैंक यू सो मच शालिनी फॉर इन्वाइटिंग मी, और जो भी हमारे सब लोग सुन रहे हैं आपको मेरा हार्दिक नमस्कार जी। तो मैं स्पेशलाइज करती हूँ इनफर्टिलिटी और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हार्मोनल इरेगुलरिटी, पीसीओ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है
0: जी। तो आप अपने लिसनर्स से हम कहना चाहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली डॉक्टर तोहिना से, तो इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़े हुए कोई भी सवाल, जो कि आज का हमारा जो विषय है वो हम आपको बता देते हैं। आज का हमारा विषय है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट यानी कि प्रजनन क्षमता का उपचार। यदि उससे जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं तो आप उसका उपचार जान सकते हैं। किसके माध्यम से? आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और अब हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070 9881070700, और इसके अलावा हमारे लैंडलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 2342108 0। इसके अलावा एक और नंबर है 2342108 4। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फर्टिलिटी क्या है, उसके बारे में बताएं हमें थोड़ा सा आप।
1: अच्छा शालिनी, देखिए क्या है कि फर्टिलिटी आजकल बहुत इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। क्या होता है कि जब कोई भी कपल दंपत्ति उनका विवाह होता है और उसके बाद वो

0: रेगुलरली ट्राई करते हैं, नियमित रूप से ट्राई करते हैं कि गर्भधारण हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता एक साल तक भी, तब उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं।
1: जी
0: ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है जो एक कपल फेस करता है।
1: और ये दोनों में से किसी को भी हो सकती
0: Absolutely.
1: है
0: ना? तो ये दोनों में से किसी को भी हो सकती है,
1: ठीक
0: जैसा
1: है।
0: कि हम कहते हैं ही इज इक्वल टू शी, मतलब कि आदमी और औरत दोनों बराबर हैं इस ट्रीटमेंट
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं कि कब इस ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, कौन से ऐसे लक्षण हैं जब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि नहीं, अब समय आ चुका है कि हमें ट्रीटमेंट की तरफ रुख करना चाहिए।
0: देखिए, ऐसा है कि जब आप रेगुलरली एक साल तक ट्राई करें और आपको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जिसको बोलते हैं, कि बिना किसी निरोध के आप रेगुलरली हर महीने ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक साल के भीतर आप प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आपको एक चिकित्सक, एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए इस विषय में।
1: ठीक है, चलिए। तो आप भी देखिए लिसनर्स, आपसे बीच बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो भी सवाल हैं आपके प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को लेकर, यदि आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342108080 एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 2342104। इन दोनों ही नंबर पर आप हमें ट्राई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर तोहिना कि किस तरह के जो है वो कॉमन कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी की, अगर हम बात करें, अगर इन परेशानियों की बात करें तो क्या क्या वो सिम्टम्स
0: बिल्कुल हैं? देखिए क्या है, एक तो सबसे ज्यादा एज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है ना, तो हम इसको डिवाइड करते हैं कि जैसे अगर कोई 35 इयर्स तक की एज का है, या 35 to 40 का है, या मोर देन 40 इयर्स का है। तो लेस देन 35 इयर्स में, मतलब आपको विद इन अ ईयर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 35 से ज्यादा आपकी एज है तो 6 मंथ्स के विद इन, एंड 40 से ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉजेज आपके मल्टीपल फैक्टर्स में हो सकते हैं, मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर दोनों हो सकते हैं। अगर हम फीमेल से स्टार्ट करें तो जैसे ट्यूब्स बंद होना या इन्फेक्शन होना ट्यूब्स में, ओवरी में कोई सिस्ट होना या पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड्स होना, पॉलिप होना, ये सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी। मेल
1: जी, माफ कीजिएगा मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, अभी आपने एक टर्म यूज किया पीसीओएस, आपने बात करी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड, बहुत ही ज्यादा सुना जा रहा है आजकल।
0: जी जी,
1: इसके बारे में
0: देखिए क्या है कि PCOS एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, मतलब हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिसमें अंडेदानी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, पीरियड इरेगुलरिटी होती है, और कई हार्मोन इम्बैलेंसेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या पीरियड की अनियमितता, ये सब चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर PCOS में इनफर्टिलिटी हो या उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो, बट ऐसा हो सकता है कि PCOS या PCOD के साथ आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
1: ठीक है, और ये समस्या जो है वो आजकल कम उम्र में भी देखी जा रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: देखिए क्या है कि कम उम्र में आजकल हमारा सब कुछ प्रदूषण है, हमारा एयर पोल्यूशन, हमारे खाने में मिलावट है, हमारा लाइफस्टाइल, धूम्रपान, अल्कोहल, ये चीज़ें आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं। दूसरा, ये जो सब सोशल मीडिया में ये सब प्रमोशंस होते हैं, इंटरनेट आपका जो ये डिजिटल आप सब स्क्रॉल करते हैं, तो फोन्स और ये सब भी कंट्रीब्यूटरी हैं हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो इन इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर स्लीप एंड ये जो सब अडल्ट्रेशन है, दिस कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटरी।
1: ठीक है,
0: यस।
1: तो अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट पर अगर हम जाते हैं तो किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और किस एज से किस एज तक वो लिए जा सकते हैं?
0: जी, तो ट्रीटमेंट देखिए कई तरह के अवेलेबल होते हैं। हम अगर सिंपल बेसिक से स्टार्ट करें तो उसको हम कहते हैं टाइम्ड, तो दैट इज उसमें एक नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना नेचुरल साइकिल में एग बनने की मेडिसिन लिए बिना देख सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। ओव्यूलेशन जब हो रहा है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं किस डे, कौन से डेज आपके मोस्ट फर्टाइल डेज हैं, और आप उन्हीं डेज में अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नंबर टू, अगर हम एक और स्टेप पर चलें तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन, जहां आपको अंडा बनने की दवाई देकर एग की क्वालिटी या एग का साइज इंप्रूव किया जाता है, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये तय किया जाता है कि फॉलिकल या एग कब रेडी होगा, और फिर आपके डॉक्टर बताते हैं कि कौन से वो डेज हैं जब आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं, उसमें भी सेम एग बनने की मेडिसिन

0: के अल्ट्रासाउंड करके जब एग रेडी हो जाता है तो आर्टिफिशियली आपके गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर सीमन स्पर्म को प्रिपेयर करके लैब में वो यूट्रस के अंदर पुश किया जाता है।
1: ठीक है
0: और फिर लास्ट ऑप्शन आता है IVF या जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में लेडी के सारे एग्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है, फिर स्पर्म से फ्यूज होकर बेबी बनाया जाता है, वो भी शरीर के बाहर, फिर उस बेबी को यूट्रस में गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है।
1: जी।
0: तो ये रेडीमेड बेबी जो लैब में बनता है वो ट्रांसफर
1: डिजाइनर बेबी जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। और डिजाइनर से मुझे याद है आजकल लोग इस बारे में भी बहुत ध्यान रखते हैं कि आंख का कलर कैसा होगा और ये नैन नक्श कैसे होंगे, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है?
0: जी देखिए क्या है कि अगर लोग चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करें और प्रोबेबली वो अगर किसी पार्टनर या कपल में से किसी भी दंपत्ति के किसी हिस्से में वो नहीं है और वो चाहते हैं, देन दे माइट हैव टू चूज अ डोनर एग और अ डोनर स्पर्म प्रोग्राम वेयर दे कैन चूज द कैरेक्टरिस्टिक। आप चाहते हैं कि हाइट लंबी हो, कलर फेयर हो, आंखें बड़ी बड़ी हो एंड एटसेट्रा मेनी थिंग्स, तो वो आप उससे चूज कर सकते हैं इफ यू विश टू गो फॉर अ डोनर प्रोग्राम।
1: पर मुझे लगता है कि कहाँ तक एडवाइजेबल है ये आर्टिफिशियल चीजें करना, क्या ये ठीक होगा?
0: हाँ नहीं देखिए ये एडवाइजेबल नहीं होता। अल्टीमेटली देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज कि अगर आपके ही अपने जेनेटिक मटीरियल से हो जाता है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो आपके जैसा लगने वाला बेबी आपके अपने गैमेट से हुआ हुआ, तो सब प्रेगनेंसी वुमेन को होती है, चाइल्ड बर्थ वुमेन का होता है, तो दैट इज क्लोजेस्ट टू नेचुरल।
1: जी मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी आपको। एक हमारे पास मैसेज आया है हमारे लिसनर का, ये है पैंथर तोमर किशनगंज दिल्ली से। ये कहते हैं कि इस ट्रीटमेंट से जुड़े जो जोखिम है या साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, और इसको शुरू करने से पहले कोई सर्जरी या कोई मेडिकल प्रोसीजर भी होता है, ऐसा कुछ है?
0: अच्छा देखिए क्या है कि साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का होता है, दवाई का भी होता है, सड़क पर चलने का भी होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: है ना? तो जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि ये बताया जाता है लोगों को एक दूसरे के द्वारा, उतने साइड इफेक्ट इससे नहीं होते। देखिए अगर हम IVF ट्रीटमेंट में जाते हैं तो डेली 10 से 12 दिन के इंजेक्शन वुमन को लगते हैं, तो उससे थोड़ा सा ब्लोटिंग, इंक्रीज डिस्चार्ज, हैवीनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स वो हो सकते हैं।
1: ठीक है।
0: और फिर लेटर ऑन जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसके बाद थोड़ा रेस्ट माइट बी रिक्वायर्ड, तो उसमें थोड़ा नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशंस, वेट गेन, ये सब चीज़ें फीमेल को हो सकता है एक्सपीरियंस करनी पड़े।
1: जी।
0: तो वही जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो साइड इफेक्ट से मुक्त हो, बट इतने साइड इफेक्ट जितना लोग इसके बारे में सोचते हैं या हाइप क्रिएट किया जाता है उतना नहीं है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि देखिए जो पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं वो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर, बहुत सालों के लिए लेते हैं और रोज लेते हैं।
1: जी।
0: इस ट्रीटमेंट में तो वैसे ही इंजेक्शन सिर्फ 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते लगते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक है।
0: तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। आजकल सब टेलर्ड इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट्स है जिससे कि आपको साइड इफेक्ट और पेन बहुत कम हो।
1: मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, और आप तो हैं ही गाइड करने के लिए। मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने लिसनर्स को बता देना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। कार्यक्रम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की यानी कि प्रजनन क्षमता उपचार की। हमारे साथ हैं डॉक्टर तुहिना गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रसूति रोग विशेषज्ञ और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये जो है वो MD ग्रेजुएट हैं एम्स नई दिल्ली से और साथ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो इनके साथ आज हम ये बात कर रहे हैं कि प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनसे लेकर उनके उपचार क्या है और उनको लेकर जितने भी मिथ्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं 9868107070 इज द नंबर जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कॉल भी करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। देश के किसी भी कोने में हो चाहे आप, कॉल करने के लिए नंबर है 2342-1080। इसके अलावा दूसरा नंबर है 2342-1084। कोड लगाना मत भूलिएगा 011, अगर आप कोड लगाना चाहें तो ये आपके लिए कोड है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात होती है तो एक एक टैबू की तरह लिया जाता है। महिलाओं की बात होती है तो उनको कई बार ताने सुनने पड़ते हैं, काफ़ी सारा जो है उनको प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ती है मानसिक तौर पर कहा जाए तो। लेकिन अगर मेल की बात आती है, पुरुषों की बात आती है, तो पहले तो वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि उनमें कोई कमी है जिसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, जो कि शर्मिंदगी महसूस होगी उनको या समाज उनकी हंसी उड़ाएगा, और या फिर उनमें ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो पुरुष हैं। क्या कहना है आपका?

0: आपने बिल्कुल सही कहा शालिनी, कि आज भी सिर्फ लेडीज को या जो हमारी महिला वर्ग हैं उनको एक देखा जाता है कि जैसे यही इनफर्टिलिटी के लिए या यही उस को नहीं अंजाम देने के लिए प्रेगनेंसी को रिस्पॉन्सिबल हैं। बट देखिए ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा दैट ही इज इक्वल टू शी, तो दोनों का 50% रोल होता है। अगर पुरुषों का स्पर्म नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी खराब है और महिला का सब कुछ सही है, तब भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए बिल्कुल इस चीज को लेकर टाबू या अपने दिमाग में ये ना सोचें कि हमारे बगल वाले पड़ोसी या ऊपर रहने वाले लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज देखिए ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है और बराबर में हो सकती है। हो सकता है दोनों को भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मेडिकल एडवाइस लें, क्योंकि वो बेबी होना इस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: बिल्कुल, तो आपको जिम्मेदारी अपनी उठानी पड़ेगी, दोनों को ही बराबर गाड़ी के दो पहियों की तरह चलना पड़ेगा। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास आया है निधि का प्रयागराज से। ये कहती हैं कि 30 साल की हैं और इनकी हाइट 4 फीट और 11 इंच है और इसके अलावा इनका वेट जो है वो 61 kg है और इनको 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं 2 महीने पहले। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या इनको कुछ वेट कम करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले नेक्स्ट टाइम?
0: जी, तो ऑप्टिमम बीएमआई जिसको बोलते हैं, तो आपको जो है अपना वेट कम करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा जो मेडिसिंस और इंजेक्शंस का जो असर आता है वो एक ऑप्टिमम वेट में ज्यादा अच्छा आता है, ना बहुत कम में ना बहुत ज्यादा में। जैसे शक्कर है, अगर आप चाय में ज्यादा डालें तो भी उसमें स्वाद नहीं रहता, कम डालें तो भी स्वाद नहीं रहता। तो एक ऑप्टिमम वेट उस हाइट के लिए जरूर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो वो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ले सकते हैं और अपना डाइट रेगुलेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। ऑल्सो आप अपने चिकित्सक से इस बारे में जरूर बात करें कि कैसे 2 अबॉर्शंस हैं, कहीं इसका कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से अबॉर्शंस हो रहे हैं, और उस कारण को आप अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ट्रीट करें, जिससे कि प्रेगनेंसी तो हो जाए लेकिन इस बार आपको अंजाम मिले उस प्रेगनेंसी का,
1: ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। अगला सवाल हमारे पास आया है, इन्होंने नाम लिखा है या नहीं, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन इनका सवाल ले लेते हैं। ये कह रही हैं कि मैं जो है वो 33 साल की हूँ और इसके प्रोफेसर हैं, ये अपने सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं, घर का खाना खाती हैं, फ़ोन भी कम यूज़ करती हैं। इनको लास्ट ईयर जो है वो मिसकैरेज हुआ था और सडनली जो है वो हार्ट बीट इनकी रुक गई थी, सडनली बेबी की हार्ट बीट रुक गई थी 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। तो उसके बाद 6 महीने तक जो है इरेगुलर पीरियड्स रहे और उसके बाद इनको काफ़ी सारी पीरियड्स में प्रॉब्लम भी हुई। तो क्या इस टाइम ये प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई करें तो इनको अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए क्या है, कई बार अबॉर्शंस के बाद जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे हार्मोन्स में इरेग्युलरिटी आ जाती है, कई बार यूट्रस भी क्लियर नहीं हो पाता, कई पीसेस रह जाते हैं उसमें जो बेबी अबॉर्ट हुआ है। तो आप एक बार अपने चिकित्सक से डिटेल में अपने हार्मोन्स के टेस्ट कराएं, अपने यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराएं, कहीं ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं डिवेलप हुआ उसको चेक कराएं अल्ट्रासाउंड से। ऑल्सो अपने हस्बैंड का टेस्ट भी कराएं। कई बार क्या होता है, जब स्पर्म या शुक्राणु वीक होता है तो प्रेगनेंसी होने में दोबारा प्रॉब्लम आती है। एक बार हो सकता है हो गई हो, बट किसी कारणवश आपकी हार्ट बीट चली गई और क्या पता हस्बैंड के स्पर्म के कारण वो क्वालिटी अच्छी ना हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही हो प्रेगनेंसी अचीव होने में।
1: जी, निधि का ही दूसरा सवाल है, जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग, क्या 50 किलोमीटर तक के एरिया में ट्रैवलिंग करी जा सकती है?
0: देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंडीशंस क्या हैं। ये एक रूल सबके लिए नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज कई बार प्लेसेंटा लो होता है प्रेगनेंसी में, ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है, तो प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, बहुत अबॉर्शंस के बाद हुई होती है, एज ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑल्सो वो जो आपको 50 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं वो रास्ता कैसा है, अगर रास्ता ही बहुत ख़राब है, वेवी है, तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप अवॉइड करिए। बाकी हम एक लाइन सबको बताते हैं कि देखिए लेजर ट्रैवल आप अवॉइड करिए, मतलब आप कहीं फन एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं वो अवॉइड करिए, अगर एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स वे करके करिए। बेशक जरूरी, देखिए हर ट्रैवल से जरूरी नहीं है कि कुछ मिसहैपनिंग हो, बट जब होती है तो आप रेट्रोस्पेक्ट में वापस जाके उसके लिए कुछ कर नहीं सकते।
1: जी, अगला सवाल मैं यहाँ पर लूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप अपने लिसनर से कहना चाहूँगी कि आप जब भी अपना सवाल भेजें तो आप अपना नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि फिर हमें आपका नाम लेने ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, तो अपने सवाल के साथ नाम भी लिखें। फिलहाल आपको बता देते हैं कि आज हम रेनबो हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की। हमारे साथ डॉक्टर तुहिना गोयल हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं ये, और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MD ग्रेजुएट हैं एम्स दिल्ली से, और साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बहुत सारा अनुभव है इन्हें इस फील्ड का। ये हमें बता रही हैं फर्टिलिटी से जुड़ी हुई सारी, ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सवालों के जवाब आपको ये दे रही हैं। तो अगर आपको कोई सवाल करना है तो 9868107070 इज द नंबर। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिस पहला नंबर जो आपको बताया उस पर आपको मैसेज करना है, और कॉल करने के लिए नंबर है 2342108080, दूसरा नंबर है 2342108084। आप हमें कॉल करके और मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिसेस भारती जो हैं, ये रुक्मणी भारती इनका नाम है, ये पूछना चाहती हैं कि IUI हुआ था इनका अभी कुछ दिन पहले, और इनकी ओवरीज के साइड में इनको हल्का सा पेन रहता है, उसका क्या कारण हो सकता है, और गैस्ट्रिक इश्यूज भी हैं इनको। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये IUI क्या होता है, इसके बारे में भी बताएं आप हमें।
0: जी, तो IUI यानी इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि एक लेडी को एग बनने की मेडिसिन देते हैं पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से, उसके एग बनने की पूरी प्रक्रिया को अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक करते हैं, जिसको फॉलिकल मॉनिटरिंग भी बोलते हैं। जब वो एग रेडी हो जाता है, एक पर्टिकुलर साइज का हो जाता है, तो यूजुअली एक रप्चर मतलब अंडा फटने का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 36 आवर्स के बाद इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म को लैब में प्रिपेयर किया जाता है, और मतलब हस्बैंड ही सैंपल देते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल कर इन्फेक्शन फ्री कर उसको लेडी के गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर पुश किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के बाद अगर जैसा इनका कहना है कि इनको ओवरी के साइड में पेन होता है, जरूरी नहीं है देखिए कि ये इस प्रक्रिया से रिलेटेड हो, ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो, आप चेक कराएं कोई सिस्ट तो नहीं डेवलप हो गया है, तो इस वजह से भी पेन हो सकता है। गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोई और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, एसिडिटी हो, स्ट्रेस की वजह से भी प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी हो सकती है
1: जी।
0: तो इसलिए आप एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अपने गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए दिखाएं, बाकी एक अल्ट्रासाउंड में जरूर चेक करें कि कहीं कोई इन्फेक्शन या सिस्ट तो नहीं डेवलप हो रहा है।
1: जी बिल्कुल। तो इसी तरह से और भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास आ भी रहे हैं, और मेरे अपने भी कुछ सवाल हैं जो मैं बहुत क्यूरियोसिटी से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ताकि हमारे लिसनर्स भी उन्हें सुन सकें। फिलहाल मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक बोलते हुए बहुत देर हो चुकी है हमें, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद और फिर आपसे जुड़ेंगे एक बार फिर से। रेनबो हेल्पलाइन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, आपके साथ हूँ मैं शालिनी, और हमारे साथ हैं आज के हमारी मेहमान डॉक्टर तुहिना गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये, MD ग्रेजुएट हैं एम्स नई दिल्ली से, और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। तो इनके अनुभवों से आप क्या सीखना चाहते हैं आप हमें बता दें, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342108080 पर, इसके अलावा 2342108084 पर आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आज फिर लेट हो गए?
3: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट यानी कि प्रजनन क्षमता उपचार को लेकर। और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर तुहिना गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन, ये प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, साथ में स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MD ग्रेजुएट हैं, इन्हें बहुत सारा अनुभव है इस फील्ड का, एम्स से, नई दिल्ली से, और साथ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। तो इन्होंने इतनी सारी जो तैयारी की है, इतनी सारी जो अनुभव लिए हैं, वो आपके साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ, हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर तोहिना, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी तरफ से सवाल लूँ, इससे पहले जो हमारे लिसनर हैं उनका सवाल आया हुआ है कि ये इनफर्टिलिटी में इमोशनल हेल्थ जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है फर्टिलिटी को।
1: देखिए, क्या है कि ये आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा शालिनी। ये पूरा ट्रीटमेंट एंड नॉट जस्ट द ट्रीटमेंट बट द प्रॉब्लम, जो ये समस्या है, ये ज़्यादा निचोड़ती है रादर देन द ट्रीटमेंट। तो क्या होता है, देखिए, हम अपने आप

0: को इतना कमज़ोर और कई बार असहाय महसूस करते हैं कि ट्राई करने के बाद भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, घर वाले क्या सोचेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, इसको लेकर हमारे मेंटल ब्रेकडाउन होने लगता है। फिर उसके बाद हम डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट में भी देखिए हर तरीके, छोटा हो बड़ा हो, खर्चा, आपको आना, रेगुलर फॉलोअप, इस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल सेटबैक होता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि किसी का फर्स्ट ट्रीटमेंट या फर्स्ट मंथ जब वो एक डॉक्टर को अप्रोच करें उसी साइकिल प्रेगनेंसी अचीव हो जाए या उनको सक्सेस प्राप्त हो। तो इसको चलते हुए भी बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, हर कोई उम्मीद करता है कि हम जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो हमारे को जल्द से जल्द प्रेगनेंसी में हेल्प मिले, बट हमेशा देखिए ऐसा होता नहीं, तो ये इमोशनली बहुत टर्मोइल होता है इसमें।
1: जी डॉक्टर तुहिना, माफ़ कीजिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, वो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगली आवाज़ उनकी है तो आप ध्यान से उनका सवाल सुन लीजिए।
2: जी डॉक्टर तुहिना, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं फिर आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी बिल्कुल, मैं शालिनी बोल रही हूँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप अपना सवाल बताइए।
3: नाम ओम कुमार है, यूपी से बात कर रहा हूँ।
2: जी ओम कुमार जी, सवाल बताएं अपना जल्दी से। ओम कुमार जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप फोन के पास रख के बात करें।
3: अब आ रही है मैम?
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। जी मुझे लगता है कि डॉक्टर तक आपका सवाल पहुंच चुका है, आप जवाब का इंतजार करें। जी बिल्कुल, थैंक यू कॉल करने के लिए।
0: जी तो इनका प्रश्न है कि ये अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फीमेल में प्रॉब्लम होती है या दोनों में भी हो सकती है? देखिए ऐसा होता है ओमकार जी कि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, 50% महिला में हो सकती है, 50% चांस है कि मेल में या हस्बैंड में हो सकती है। तो दोनों के टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं कि क्या कारण है, किस में प्रॉब्लम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए हो सकता है कि किसी में भी प्रॉब्लम ना हो, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जिसका कोई निर्धारित कारण नहीं होता बट किसी वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दंपत्ति में, हस्बैंड या वाइफ में से किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो ज़रूरी है कि हो, बिना किसी प्रॉब्लम के भी कई बार नहीं हो पाती। उसके कई कॉजेज होते हैं कि ये मॉनिटर करना कि एग कब रिलीज़ हो रहा है, क्या आप साथ रहते हैं उस टाइम पर जब एग रिलीज़ हो रहा है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। तो आप किसी चिकित्सक को कंसल्ट करिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और दोनों में आपको कंसल्ट करना जरूरी है।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ किसी तरह के बेसिक टेस्ट्स होते होंगे, तो वो क्या है उनके बारे में बताइए।
0: जी देखिए क्या है कि फीमेल से अगर हम स्टार्ट करें तो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो ओवरी, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं हॉर्मोन्स के टेस्ट। तो हमारी फीमेल बॉडी में जो अंडादानी जिसे कहते हैं या अंडाशय, वो कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं जो पीरियड को, जो फर्टिलिटी साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो उनके हॉर्मोन्स के सारे टेस्ट होने चाहिए। फिर नलें होती हैं, नलों का रोल होता है शरीर में कि वो ओवरी से एग उठाती हैं और स्पर्म जब उनमें आता है इंटरकोर्स के बाद, तो स्पर्म और एग मिलकर दोनों जो बच्चा बनाते हैं वो नलों में बनता है। फिर वो बच्चा नलों से यूट्रस में आता है और यूट्रस में 9 महीने फिर गर्भधारण होता है। तो नलों की जांच और यूट्रस यानी अल्ट्रासाउंड से आप यूट्रस, ओवरी सब देख सकते हैं कि वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हुए फीमेल के बेसिक टेस्ट्स। ऐसे ही मेल्स का स्पर्म एनालिसिस या सीमेन एनालिसिस जिसको बोलते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो स्पर्म्स हैं उनका काउंट या उनकी गिनती कैसी है, उनकी मोटिलिटी या उनके आगे बढ़ने की क्षमता वो कैसी है, और मॉर्फोलॉजी मतलब वो दिखने में नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ये सब चीजें आपको इनिशियल इवेल्युएशन में करानी होती हैं।
2: जी जी आजकल एक बहुत जो एकदम ट्रेंड चल पड़ा है, नया ट्रेंड है, एग फ्रीजिंग का है। तो एग फ्रीजिंग की अगर बात करें तो उसमें क्या लेटर ऑन लाइफ में आगे चल के मेनोपॉज को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है? और न सिर्फ एग फ्रीजिंग की बल्कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग की भी बात होती है।

0: क्या है और किस तरह से ये प्लान कर सकते हैं?
1: जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आज. ये है, देखिए, एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग में क्या फ़र्क है. देखिए, क्या होता है कि जब किसी की शादी नहीं हुई होती या हम लेट मैरिज प्लान कर रहे हैं, जो किसी भी कारणवश हो सकता है, या तो हम पढ़ाई की व्यस्तता है या कोई भी और कारण है, कोई फैमिली प्री ऑक्यूपेशंस हैं या आप अभी जॉब में प्री ऑक्यूपाइड हैं, तो अगर आप अविवाहित हैं, अगर कोई लेडी अविवाहित है, तो वो अपने एग्स को फ्रीज करा सकती है. और जब वो मैरिज में हो या एक स्टेबल पार्टनर के साथ हो, तब उनके स्पर्म से लेकर बेबी बना सकते हैं. तो बेसिकली एग, देखिए, सिर्फ लेडी का होता है. एम्ब्रियो यानी बेबी, एम्ब्रियो एग और स्पर्म को मिलाकर बनता है. तो ये तो हुई शादी से पहले की बात, अगर आपकी व्यस्तता है और आप शादी अभी नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज. सेकेंड, एम्ब्रियो फ्रीजिंग तब होता है, सपोज आपने मैरिज कर ली और यू आर इन अ स्टेबल रिलेशनशिप, आपका स्टेबल पार्टनर है, तो आप एम्ब्रियो यानी बेबी बनाकर फ्रीज करा सकते हैं. तो बेबी जब फ्रीज होता है, तो मे बी आपको शादी के तुरंत बाद प्रेगनेंसी नहीं अचीव करनी, बट जब भी आपको करनी है, से 2 साल 3 साल बाद, तब आपके बेबीज रेडीमेड लैब में स्टोर्ड हैं और वो आप तब ट्रांसफर करा सकते हैं.
0: जी बिल्कुल. अगला कॉल हमारे पास आ चुका है, हमारे साथ कॉलर लाइन पे जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं. हेलो.
2: हेलो.
0: हेलो जी, फोन को थोड़ा सा पास रखें और रेडियो को बंद करके रखें या उसका वॉल्यूम लो कर दें. हेलो. हेलो जी, अपना नाम बताइए. हेलो. हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है कनेक्शन इनसे नहीं हो पा रहा है. चलिए फिर से अगर ये कॉल करते हैं तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. फिलहाल अपने लिसनर्स को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेनबो हेल्पलाइन में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को लेकर. आपके साथ हूँ मैं शालिनी और हमारे साथ आज विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर तुहिना गोयल, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, साथ में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि प्रजनन क्षमता उपचार के विशेषज्ञ हैं ये, और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं. MD ग्रेजुएट हैं एम्स नई दिल्ली से और साथ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं. तो इनसे आप अगर सवाल करना चाहते हैं कोई भी फर्टिलिटी को लेकर तो कर सकते हैं. 9868107070 इज द नंबर जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा 2342108 पर कॉल कर सकते हैं. दूसरा नंबर है 2342108. इन दोनों ही नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं. जी, तो अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मॉडर्न क्लिनिक्स हैं आजकल, वो मल्टीपल बर्थ जो होते हैं उनकी उस रिस्क को कैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि आफ्टर अ लॉन्ग गैप जब इस तरह के ट्रीटमेंट लिए जाते हैं तो या तो ट्विन्स होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है?
1: देखिए, क्या है कि ट्रीटमेंट में, बिल्कुल आपने सही बोला, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के चांस रहते हैं, जो कि नेचुरल कंसेप्शन से ज़्यादा होते हैं. तो अगर कोई IVF के थ्रू करा रहे हैं तो वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या SET जिसको कहते हैं, वो करा सकते हैं. उसमें जब एक ही बेबी इम्प्लांट होता है तो एक ही फर्दर डिवेलप होता है. तो इस तरह से इसको अवॉइड किया जा सकता है. मोनो ओव्यूलर साइकिल बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, मतलब आप अपने एग की मॉनिटरिंग जब करा रहे हैं तो ये कि एक ही एग आपका बने, उस साइकिल में आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट या IUI या नेचुरल ट्राइंग प्लान कर सकते हैं. तो इससे आपके मल्टीपल बर्थ्स अवॉइड हो सकते हैं या मिनिमाइज हो सकते हैं, आई वुड से.
0: ठीक है. और सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है अभी तक आपके इतने जितने आपने अनुभव लिए हैं इस चीज़ के, उसमें एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या रहा है लोगों का?
1: देखिए, मिसकंसेप्शन आई वुड से कि दो सबसे बड़े सामने आते हैं. एक तो जैसा आपने पूछा भी कि क्या मुझे मीनोपॉज हो जाएगा अर्ली अगर मैं IVF ट्रीटमेंट कराती हूँ. देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मीनोपॉज बिल्कुल नहीं होता. IVF ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साइकिल में जितने भी एग्स रिक्रूट हुए हैं, वो सारे प्रयास रहता है कि सब ग्रो कर जाएं और सब हम शरीर से बाहर रिट्रीव कर सकें. तो नेचुरली अगर एक ही एग बनता, वो सारे फॉलिकल्स वैसे भी एट्रिटिक या वेस्ट हो जाते, उनका कोई वैसे काम नहीं होता. तो इट डजंट अचीव अर्ली मीनोपॉज, मतलब कि वो अर्ली मीनोपॉज नहीं करता है. दूसरा जो संशय सबके मन में रहता है कि क्या IVF में बच्चा बदल जाता है या चेंज हो जाता है, या हमें हमारा बच्चा मिलता है या नहीं मिलता. देखिए क्या होता है कि ये सब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप हर तरीके से RI टेस्टिंग है, RI विटनेस है, AI आ गया है, उसके चलते ये गलती होना कि मिक्सिंग हो जाए, तो बिना बताए पेरेंट्स को ये गलती होने का रिस्क बहुत कम रहता है.
0: जी.
1: अगर आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना आपको कोई ये नहीं करेंगे कि चेंज करते हैं आपके गैमेट्स.
0: ठीक है, ठीक है. तो जो मॉडर्न प्रोसीजर्स होते हैं, इनोवेशंस हैं, या लैब प्रोसीजर्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि रिसेंटली आए हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो या लोग जिनके बारे में ना जानते हो, जो आप हमें बताना चाहें, क्या कुछ ऐसे हैं?
1: जी देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स में आजकल PGT का चलन है. PGT बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो. ये IVF की ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसको उसमें से एक हिस्सा टुकड़ा लेकर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है. तो ये जेनेटिक टेस्टिंग क्या बताता है कि बच्चे में कोई एन्यूप्लॉयडी या कोई बनावटी जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है. इसको जानने से हमारा फायदा क्या होगा? देखिए कोई लेडी है अगर जिसके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में कई बार हिस्ट्री है कि डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स या कोई और भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में चलती आ रही हैं, या किसी एक को भी हैं, तो आप PGT से ये जान सकते हैं बच्चा डलवाने से पहले ही कि जो एम्ब्रियो आप अपने अंदर डलवाने जा रहे हैं क्या वो उस प्रॉब्लम से इफेक्टेड तो नहीं है. ऑल्सो जो बार बार लोगों के जैसे फेलियर्स होते हैं, IVF फेलियर्स, उसमें भी आप ये चूज कर सकते हैं.
0: जी, अगला सवाल ले लेते हैं हम. आगे के सवाल करने से पहले हमारे एक लिसनर जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं. जी बोलिए. हेलो,
2: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं.
2: जी मैं कुणाल बात कर रहा हूँ.
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं
2: आप?
0: लखनऊ से.
2: जी
0: बहुत ही क्लियर शब्दों में आप बताएं कि क्या सवाल है आपका, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में. जल्दी से आप अपना सवाल दोहराएं.
2: मैं कह रहा हूँ कि यौन संबंध के दौरान HIV क्यों हो जाता है मैम, HIV एड्स बीमारी.
0: हालांकि हम इस मुद्दे पर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, क्या हम जवाब दे सकते हैं?
1: जी
0: बताएं.
1: देखिए क्या होता है कि जो HIV की प्रॉब्लम होती है, तो जो उसका वायरस होता है, HIV एड्स का वायरस, वो सिक्रीशंस में पाया जाता है, जैसे ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, या सीमेन हो गया. तो जब यौन संबंध बनाते हैं तो सिक्रीशंस बढ़ते हैं, वजाइनल सिक्रीशंस बढ़े, जो प्री कम होता है, जैसे जो स्पर्म से पहले आने वाला लिक्विड होता है, तो इसके आपस में जब मिलाप होता है या आप यौन संबंध बनाते हैं, तो कई बार माइनर अब्रेशंस किसी की भी स्किन में, वजाइना में हो सकते हैं, स्पर्म में के नियर बाय हो सकते हैं, तो माइनर एब्रेशंस की वजह से वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है. तो ये चांस जो है एक दूसरे से किसी को भी हो सकता है.
0: ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हमने कर लिए और अभी कुछ और भी बहुत सारे सवाल हमारे पास बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा. एक ब्रेक लेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, और उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है शो. मैं हूँ आपके साथ शालिनी, और हमारे साथ गेस्ट हैं आज मौजूद. हमारे साथ हैं डॉक्टर तोहिना गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, और साथ में जो है वो ये MD ग्रेजुएट हैं एम्स नई दिल्ली से, और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं. इनके साथ आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को लेकर, यानी कि प्रजनन क्षमता उपचार को लेकर. तो यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं 9868107070 पर, यानी कि 9868107070 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1080 पर. दूसरा नंबर आप हमारा नोट कीजिए 2342-1084 पर. आप इन दोनों ही नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं. फटाफट से अपने सवाल भेजिए. आपके साथ हम फिर से जुड़ते हैं जल्दी ही.

0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कहना है, छुपाना नहीं है। आपको अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, तो आपको बतानी है, यहाँ पर बात करनी है, क्योंकि विशेषज्ञ जो हमारे साथ हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ शालिनी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 और रेनबो पर चल रहा है शो रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की, यानी कि प्रजनन क्षमता उपचार की। हमारे साथ हैं डॉक्टर तोहिना गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन है, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एमडी ग्रेजुएट एम्स न्यू दिल्ली से और गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। तो अगर आपके जो है वो प्रजनन क्षमता से यानी कि फर्टिलिटी से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है, सवाल है ट्रीटमेंट को लेकर, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 9868107070, जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर है 2342108। इसके अलावा दूसरा नंबर है 2342108। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। डॉक्टर तोहिना, हमने बात करी थी IVF की बात करी, तो ICSI भी एक टर्म आता है, तो ये कैसे डिफरेंट है IVF से और कितना इम्पॉर्टेंट है ये?
1: जी, तो ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी IVF की ही एक प्रक्रिया है, जिसमें डायरेक्टली एक स्पर्म को एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो उसमें बेबी बनने का जो चांस होता है यानी फर्टिलाइजेशन रेट, तो वो बेटर हो जाता है। तो ये IVF की ही एक मॉडर्न प्रक्रिया है।
0: ओके, ठीक है। और इस ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली कई बार नहीं हो पाता है, या काफ़ी लंबा चल जाता है प्रोसीजर, तो उसमें पॉकेट पर असर होता है। तो किस तरह से इस पूरे प्रोसीजर को हम जो है वो अफोर्डेबल बना सकते हैं?
1: जी देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बोला, तो ये कई बार पॉकेट पर बहुत हैवी हो जाता है। तो जब भी आप अपने विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे आप सब इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस की बात करें, जिसके बारे में वो डिटेल में आप समझें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और अपना आप एक एस्टिमेट बना सकें।
0: जी
1: देखिए, मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर नहीं करती हैं, बट अब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आने लगी हैं जो इसको एक कैपिंग अमाउंट तक कवर करने लगी हैं। आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्डली, EMI के ऑप्शंस भी अब अवेलेबल हैं।
0: जी, जल्दी से हमारे एक लिसनर हैं, उनका एक हम सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर मयंक है नोएडा से, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्रूवन हिस्ट्री पहले नहीं है पेरेंट की ASD या ऑटिज्म को लेकर, और अगर पहला बच्चा ASD या ऑटिज्म से प्रभावित है, तो क्या सेकेंड चाइल्ड में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं?
1: जी देखिए, क्या है कि ऑटिज्म एक स्पोरैडिक डिसऑर्डर या एक स्पोरैडिक प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि ये निश्चित तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये अगले बच्चे में आ सकता है या नहीं आ सकता है। मतलब इसके लिए आपको कोई जेनेटिक टेस्टिंग कराने की पर से ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हेरिडिट्री नहीं है।
0: ठीक है, ठीक है। और कई तरह की अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं ना, जैसे ट्रेंड में आती रहती है कि हॉट टब बाथ लेना है, या स्पेसिफिक डाइट लेनी है, या स्ट्रेस लेवल को जो है वो किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं कि वो आपकी फर्टिलिटी रेट को या फर्टिलिटी को प्रभावित ना करे।
1: जी तो देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी आपकी हेल्दी डाइट है, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, प्रोटीन, बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, ये सब इंक्लूड करना, नट्स एंड सीड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल बाहर का खाना लोगों को खाने में बहुत दिलचस्पी होती है, तो वो हम बोलेंगे कि अवॉइड करिए जब आपका एटलीस्ट ये ट्रीटमेंट चल रहा हो। घर में आप बना हुआ प्योर खाना खाएं, ये नट्स एंड सीड्स, वेजिटेबल्स, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें।
0: जी, और मुझे लगता है अगर बाहर भी खाएं तो हेल्दी हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: दैट इज व्हाट।
0: जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है वो कितने लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट जा सकता है, और क्या कितना एडवाइजेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जल्दी से बता दें।
1: तो देखिए, क्या है, इसमें कोई टाइम की कट ऑफ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट मंथ में जब आप ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं, उसी साइकिल में आपको सक्सेस मिल जाता है, आपको रिजल्ट मिल जाता है, और आपको फर्दर ऑन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपने एक चीज ट्राई करी, नॉर्मल ट्राई किया, फिर IUI किया, फिर IVF किया, तो उसमें देखिए साल दो साल उतना लग सकता है। तो आइडियली इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, जब तक आपको रिजल्ट मिले आप इसका प्रयास जरूर कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर तोहिना, बहुत सारे सवाल अभी आ भी रहे और मेरे पास भी यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि समय जो है वो इशारा कर रहा है कि हम यहाँ से अब विदा ले लें, तो मैं आपसे चलते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि कुछ अगर डूज एंड डोंट्स हैं

0: फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को लेकर, तो वो आप हमारे लिसनर्स को बताएं।
1: जी, तो देखिए डूज सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि क्या आप करें, तो उसमें एक अच्छी हेल्दी डाइट, एक लाइफस्टाइल, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम से कम रखें, उसके बाद एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर पर जिसमें आप अपने फैमिली के साथ हों या द पीपल यू इंजॉय विद उनके साथ रहें, और ये स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब चीजें आप अवॉइड करें।
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: चलिए डॉक्टर तोहिना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने दी ही और समय दिया उसके लिए, और बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां लेंगे। और हमारे लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया सवाल अपने भेजने के लिए। आज हम यहाँ पर रेनबो हेल्पलाइन में बात कर रहे थे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की, प्रजनन क्षमता उपचार की। हमारे साथ डॉक्टर तोहिना गोयल जुड़ी रही जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एमडी ग्रेजुएट हैं एम्स नई दिल्ली से, और साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो इन्होंने हमें बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां दी, आपका बहुत शुक्रिया
1: जी। थैंक यू सो मच शालिनी जी।
0: चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, अपने लिसनर से ते हम एक बार फिर से उन्हें भी आप टाटा बाय बाय बोल दें प्लीज
1: जी। सारे लिसनर्स को वंस अगेन कि कभी आप इसमें शर्मिंदगी ना महसूस करें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।
0: थैंक्स, थैंक यू सो मच लिसनर्स। चलते हैं हम, आपसे विदा लेते हैं, ख्याल रखें ते गाना सुनी चाहिए, ठीक है जी।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों सहित 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि की यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। स्वच्छता ही सेवा अभियान देशभर में कल से शुरू होगा। अभियान में स्वच्छता, युवाओं की भागीदारी और वेस्ट टू वेल्थ पहल पर रहेगा जोर। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बिहार दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग की ओर मजबूती बढ़ाना है। भारत ने लाल सागर में स्थिति बिगड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है। वहीं मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं आशियाना हम कदम और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। देखिए, दो बज चुके हैं ऑफ कोर्स और अब 2:30 बजे तक इस आधे घंटे में चलिए थोड़ा सा वक्त को पीछे ले जाते हैं। एक ऐसे दौर में चलते हैं जब शायद एक दूसरे से प्यार जताना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन प्यार रोज निभाया जरूर जाता था। हमारे पेरेंट्स और खासकर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को ही देख लीजिए, है ना, उनके प्यार में एक अलग सी मासूमियत थी। कभी एक दूसरे के लिए चाय बना देना, कहीं जाते हुए बस ये पूछ लेना कि कुछ लाना है क्या, तबीयत खराब हो तो बिना कहे बस ख्याल रखना, और कभी कभी बस चुपचाप पास में बैठ जाना। मोहब्बत का इजहार शायद कम था, लेकिन एहसास बहुत ज्यादा गहरा था। आज हम कदम में बात करेंगे इसी पुराने सीधे साधे और खूबसूरत प्यार की, जहां मोहब्बत के साथ इज्जत भी थी और एक दूसरे का साथ निभाने का इरादा भी। और शुरुआत करते हैं एक बेहद बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ।

अभी ना जाओ छोड़कर, बिल्कुल अभी हम कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर, अभी अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आशियाना हम कदम और मैं हूँ ज्योतिका। कभी अपने मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कभी गौर से देखा? आई एम श्योर आप रोज़ उनसे मिलते होंगे, आपके साथ वो रह रहे होंगे, लेकिन कभी उनको ध्यान से देखा है? हो सकता है वो एक दूसरे को रोमांटिक मैसेजेस ना भेजते हो, एनिवर्सरीज पर लंबे लंबे कैप्शंस नहीं लिखते हो, लेकिन उनके बीच प्यार की अपनी एक बहुत ही प्यारी सी एक लैंग्वेज होती है, सिर्फ अपनी लैंग्वेज होती है वो। दवाई खाइए क्या? चाय ठंडी हो रही है, पी लो ना। बाहर जा रहे हो तो शॉल ले जाना। सुनने में कितनी मामूली सी लाइंस है ना, लेकिन कभी कभी पूरी मोहब्बत इन्हीं छोटे से, छोटी छोटी पलों में, छोटी छोटी खुशियों में होती है। हम अक्सर प्यार को बड़े जेस्चर्स में ढूंढते हैं, लेकिन पुरानी जनरेशन हमें ये सिखाती है कि केयर भी रोमांस है। किसी की आदतों को जान लेना, उसकी ज़रूरतों को बिना कहे समझ लेना, ये भी तो प्यार है। इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

दोस्तों, हम कदम में आज याद कर रहे हैं हम उस मोहब्बत को जिसमें एक बहुत खूबसूरत चीज हुआ करती थी। एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इज्जत की। और शायद हर जनरेशन के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्यार सिर्फ एक दूसरे को पसंद करना नहीं है, प्यार में एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे की जगह की कदर करना और मुश्किल वक्त में डिग्निटी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जिंदगी में भी डिसएग्रीमेंट्स रहे होंगे, नोक झोंक रही होगी। हर रिश्ता परफेक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन बहुत से रिश्तों में एक बात बहुत खूबसूरत होती है, नाराजगी के बाद भी साथ का जो ये एहसास होता है ना, वो बने रहना चाहिए। कभी एक रूठ गया तो दूसरे ने उसके सामने चाय रख दी, कभी बात नहीं हुई लेकिन खाना फिर भी आपसे पूछा गया। शायद इसी को कहते हैं, नाराज तो तुमसे हो सकते हैं जनाब, लेकिन तुम्हारी फिक्र करना कैसे छोड़ दें। आप सुन रहे हैं आशियाना हम कदम, रिश्तों की बात यूं ही चलती रहेगी। तब तक के लिए आपके लिए मोहित चौहान की आवाज़।

सच्ची सच्ची बताइएगा, कितना दफा, कितनी दफा आप अपने दिल की बात सुनते हैं? दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए कभी कभी। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं आशियाना हम कदम। आज जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो प्लान्स बड़े हो गए हैं, हॉलीडेज, डिनर, सेलिब्रेशंस, लेकिन हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी यादें बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ों से जुड़ी रहती हैं। शाम की चाय साथ पीना, छत पर थोड़ी देर यूं ही टहल लेना, रेडियो पर अपना फेवरेट गाना सुनना, बाजार तक साथ चले जाना। कई बार तो उनको ये भी याद रहता है कि हमने शादी के बाद पहली बार सब्जी की शॉपिंग कहाँ से करी थी, कभी आज पूछ के देखना उनसे। या ये भी होता है किसी शादी में वो एक साथ तैयार होकर जाता है ना, तो पहले नोकझोंक हो जाती है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, गाड़ी में भी थोड़ा सा नाराजगी रहती है, लेकिन जैसे ही कदम वेन्यू पर उतरते हैं चेहरों पर स्माइल रहती है। यही तो खूबसूरत रिश्ता रहता है, और शायद इसी खूबसूरती में, जी हाँ, उन्हें हर पल को स्पेशल बनाने की आदत सी हो जाती है। साथ होना ही स्पेशल होता है। सोचिए ना, कितना प्यारी बात नहीं है ये, जब किसी इंसान की कंपनी ही आपके लिए एंटरटेनमेंट भी हो, कंफर्ट भी, और घर जैसा सुकून भी। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई जोड़ी है, उन्हें आज थोड़ा और गौर से देखिएगा, शायद उनकी छोटी छोटी आदतों में आपको एक पूरी लव स्टोरी नजर आ जाए। मैं यही हूं, आपका इंतजार कर रही हूं।

पल पल दिल के पास, आंखें बंद करके कौन आता है आपकी आंखों के सामने, किसका चेहरा आता है, तो समझ जाइए वो इंसान आपके लिए बहुत स्पेशल है। दोस्तों, जिंदगी में प्यार के खूबसूरत पल तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम कदम होने का असली मतलब शायद तब समझ आता है जब वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, जब सेहत पहली जैसी नहीं रही, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जब बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएं, जब चेहरे बदलने लगे, लेकिन सामने वाले के लिए फिक्र हमेशा सेम रहती है। आपने भी कभी किसी एल्डरली कपल को देखा होगा, पार्क अगर जाते हैं तो वहां खासकर कि एक जो कपल है उसमें से एक इंसान धीरे चल रहा होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर लेता है। एक को अगर सुनाई कम देता है तो दूसरा बात को दोबारा कह देता है बिना जताए, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बस यूं ही नेचुरली। ये छोटे मोमेंट्स हमें एक बड़ी बात सिखा जाते हैं कि प्यार सिर्फ साथ चलना नहीं, जरूरत पड़ने पर अपनी रफ्तार धीमी करके किसी के साथ चलना भी है। बहुत ही खूबसूरत से इस थॉट के साथ आपको थोड़ी सी देर के लिए यहां छोड़ती हूं।

और दोस्तों इसी के साथ वक्त आ गया है आज के आशियाना हम कदम से विदा लेने का। आज की बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पहले के रिश्ते परफेक्ट हुआ करते थे और आज के रिश्ते कमजोर हैं, लेकिन ये बात तो जरूर कहनी होगी कि हर जनरेशन प्यार को अपने तरीके से जीता है। लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है ना, वो एक चीज़ ज़रूर वहाँ से हमें सीखी जा सकती है कि कभी कभी मोहब्बत को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक कप चाय, बस इतना कह देना कि अपना ख्याल रखना, एक दूसरे का इंतज़ार करना, थोड़ी सी नोक झोंक और बहुत सारी फिक्र, और वक्त बदलने के बाद भी एक दूसरे का साथ हमेशा थामे रखना, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आज शो सुनते हुए आपको अपने मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी की याद आई हो तो आज उनके पास बैठकर उनकी कहानी ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है उनकी लव स्टोरी में फिल्मी डायलॉग्स कम हो, लेकिन ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत चैप्टर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मैं हूं ज्योतिका, आपसे इजाज़त लेती हूं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और अब वक्त हो चला है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। मैं आपसे फिर मिलूंगी शाम 4 बजे अल्फा जैन में। और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा गीत आपके नाम, उन सब हम कदम के नाम जिन्होंने सालों का सफ़र एक दूसरे के साथ तय किया और हमेशा साथ रहेंगे। इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओ, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास

0: और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओ, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस।
1: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes. Butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden!
1: Wonderful! You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में

0: लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के कॉलेज में प्राध्यापक हो गए।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
0: जी।
1: उस समय मैं बहुत छोटा

0: भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार

0: छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि

0: और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याओं को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर धड़कन जिंदगी से जुड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। आज का दिन खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हार्ट केयर में सही समय पर सही इलाज कितना महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी आखिर क्या है, दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर कब एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, और आज की आधुनिक चिकित्सा में इन प्रक्रियाओं ने हृदय रोगों के इलाज को किस तरह आसान और प्रभावी बनाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड मेदांता हार्ट केयर सेंटर न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू शिल्पा जी।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू शिल्पा जी।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में, जहां हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे। तो डॉक्टर तरुण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी क्यों मनाया जाता है?
2: सबसे पहले, जब कार्डियोलॉजी की स्टार्ट हुआ 1950s में, तो लोग डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफीज या पेरिफेरल एंजियोग्राफीज लोग करते थे, लेकिन 1977 को वो दिन आया जिस दिन एंड्रियास ग्रुन्सग्रीन, जो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में काम करते थे, उन्होंने एक पेशेंट्स में पहली बार बेलून डायलिटेशन किया एक आर्टरी का, जिसको कहा गया है कि दिस इज एंजियोप्लास्टी फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड। तो तब से इसकी शुरुआत हुई, और इसके बाद से इतना ग्रो कर गया कि आज की डेट में कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो भी सिंपल नजर आने लगे हैं।
1: डॉक्टर श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के बाद फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका रहती है?
3: इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बाद फिजियोथेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो मरीज़ को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, ICU में एडमिट रहता है मरीज़, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की भी कई बार संभावना होती है, जिसमें सबसे पहली शिकायत जो होती है वो होता है बलगम का इकट्ठा हो जाना छाती में। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सबसे प्राइम रोल ये होता है कि उनकी चेस्ट में सिक्रीशंस या बलगम है वो ना इकट्ठा हो। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें हम पेशेंट की पोजीशनिंग पे फोकस करते हैं। और हार्ट के प्रोसीजर्स के बाद भी ये होता है कि इंसीजंस हैं तो इंसीजन लाइंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे खांसना है, कैसे गहरी लंबी सांस लेनी है। तो इस तरह के इंटरवेंशंस जो है वो प्रोसीजर्स के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: लगी लगी है दिल की लगी। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने दिल को स्वस्थ रखा जाए। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। डॉक्टर तरुण, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे, तो पिछले 50-60 वर्षों की अगर हम बात करें तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है?
1: जी, जैसे कि 1950s में हम मानते हैं इसकी शुरुआत हुई, तो स्टार्टिंग में ओनली डायग्नोस्टिक्स, स्पेशली पेरिफेरल डायग्नोस्टिक्स होते थे। 1977 में पहली बार एंड्रियास ग्रुनिंग ने ज्यूरिख में एक एंजियोप्लास्टी स्टार्ट की, लेकिन वो सिर्फ बैलून एंजियोप्लास्टी होती थी। तो कुछ सालों तक बैलून एंजियोप्लास्टी चलती रही, लेकिन उसके बाद देखा गया कि जो बैलून के बाद आर्टरी का रिकॉयल होना, क्लोज होना, उसकी काफ़ी टेंडेंसी थी। तो उसके बाद स्टंट्स आने शुरू हुए। तो इनिशियली जो स्टंट्स आए वो बेयर मेटल वाले स्टंट्स होते थे। तो बेयर मेटल स्टंट 10-15 साल के बाद उनमें रीब्लॉकेज आने की शुरुआत हो जाती थी, जिसको कहते थे इंस्टेंट रेस्टेनोसिस। और इसको रोकने के लिए फिर आए ड्रग वाले स्टंट्स, इसको कहते हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टंट्स। तो उससे रिस्टेनोसिस कम हुआ, स्टंट थ्रोम्बोसिस भी थोड़ा कम हुआ। तो इसके बाद ये देखा गया कि भाई अगर स्टंट की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर बायोवेस्कुलर रिजर्वेबल स्कैफोल्ड्स आए और ड्रग इल्यूटिंग बैलून्स आए। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट रहा। और इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए, ताकि जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या सक्सेस रेट है बढ़ जाए, तो इमेज गाइडेड PCIs आए, जिसमें आप इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से आप अंदर देखकर वेसल की साइजिंग, डायमीटर, लेंथ, उसको असेस करके एक रीडिफाइंड प्रॉपर आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। फिर इशू आया जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज का, जैसे कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा है या लेफ्ट मेन डिजीज़ है, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन है, तो उसके लिए फिर कैल्शियम मॉडिफिकेशन डिवाइसेज आए मार्केट में, इसको रोटेशनल

0: लिथोट्रेक्टमी बोलते हैं और इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो इससे आप जो कैल्शियम वाली एंजियोप्लास्टीज होती थी या वेसल्स होती थी जिनको आप पहले सर्जरी के लिए भेजते थे, अब वो भी सक्सेसफुली आप अल्ट्रासाउंड से देखकर कैल्शियम कट करके उसमें भी प्रॉपरली आप स्टेंट लगा सकते हैं। तो ये तो हुई एंजियोप्लास्टी। साथ साथ इंटरवेंशन वाली फील्ड जहाँ पहले सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी, स्पेशली ऐसे केसेस में जो बहुत एल्डरली हो जाते थे, हाई रिस्क हो जाते थे, सर्जन उनको हाथ नहीं लगाते थे क्योंकि टिपल पे डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो अब आया कि जो वेल्व्स हैं हार्ट के वो भी हम स्टेंट की तरह चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टैवर टैवर। आप जो ऑर्टिक वेल्व वो भी चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद आया माइट्रा क्लिप, जो माइट्रल वेल्व है उसकी भी हम रिपेयर कर सकते हैं ट्रांसक्यूटेनियसली, यानी कि उसको कुछ बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ ऑपरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्टंट की तरह हम प्रोसीजर होता है उसमें आप वेल्व को भी ठीक कर सकते हैं, वेल्व चेंज भी कर सकते हैं, वेल्व का रिपेयर भी कर सकते हैं। जो हार्ट में होल्स होते हैं स्पेशली डिवाइसेस लाइक एट्रल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDAs, वेस्कुलर क्लोजर, हर चीज़ आप आजकल इंटरवेंशन से कर सकते हैं। और ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। कुछ प्रोसीजर में तो हम मॉर्निंग में करके 2 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का स्टे रखते हैं।
1: डॉक्टर श्वेता, कि जैसे कि अगर किसी की ट्रीटमेंट हुई है तो उसके बाद एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए?
2: हाँ, जैसे कि अभी सर ने बताया कि कुछ पेशेंट्स तो बहुत ही अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमल स्टे होता है उनका, और जिनका लॉन्ग स्टे होता है उनके ऊपर बेसिकली हम एक्सरसाइज को फोकस करते हैं क्योंकि हमने प्रोसीजर्स एक किया है ना, सो फॉर द हेल्दी हार्ट एंड पंपिंग सर्कुलेशंस बेटर इंप्रूवमेंट के लिए, उनके लिए हम स्पायरोमीट्री है जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम 0 पोस्ट ऑप डे के बाद, मतलब लाइक जो भी प्रोसीजर्स हुआ है उसका फर्स्ट डे से ही हम उनका स्टार्ट करा सकते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत परेशानी ना डेवलप हो।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: अच्छा, सबसे पहले मैडम ऐसा है, एक कार्यक्रम चलते रहना चाहिए हर दिन
1: जी,
3: और कभी आंख के बारे में, कभी कान के, नाक के बारे में बताने का कष्ट करें।
1: जी जरूर। अब ये बताइए कि आज जैसे कि हमारा चल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपका कोई प्रश्न है तो।
3: जैसे मतलब हार्ट का संबंध बताते हैं कि बीपी से होता है, जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है या कम होता है, तो उसके लिए हम कौन सी जांच करें, कि जैसे ECG है, कुछ और जांच है, तो थोड़ा सा इस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे ना। तो डॉक्टर साहब बताने का कष्ट करें
0: जी। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हार्ट डिजीज है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत कॉमन है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, व्यायाम ना करना, स्ट्रेस और फैमिली हिस्ट्री स्पेशली, एंड स्मोकिंग काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर किसी का बीपी, जैसे आपने ब्लड प्रेशर की बात की, अगर वो अपना बीपी कंट्रोल में नहीं रखते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो हार्ट अटैक को भी प्रेसिपिटेट करता है, हार्ट फेलियर को भी प्रेसिपिटेट करता है, इवन उससे स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकती है, आईज भी डैमेज हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर एक वो रीज़न है जिससे आपके मल्टीपल सिस्टम डैमेज हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और जो उसके आसपास हो तो उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड क्या दें?
0: जी, अगर किसी को अगर हार्ट, यूजली पेन होता है, अगर पेन कहाँ हो सकता है, आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट में हो सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में हो सकता है, एपिगेस्टियम लाइक कि जो पेट वाली जगह वहाँ भी हो सकता है, ये पेन आपका लेफ्ट अपर लिम में जा सकता है, लो जॉ तक जा सकता है, साथ में चोकिंग फीलिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, पर्सपिरेशन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, और कुछ कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं। अगर ऐसा अगर आसपास देखते हैं किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है और ये पेन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कोशिश करें अगर आपके घर में डिस्प्रिन की टैबलेट है वो उसको एक दे दीजिए, अगर आपके घर में स्टैटिन है जो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाली टैबलेट है वो दे सकते हैं, और एक सॉर्बिटेट की टैबलेट आती है जिसको जीभ के रखने के लिए नीचे हम बोलते हैं, वो टैबलेट जीभ के नीचे रखें, लेकिन घर में वेट ना करें, तुरंत जाके नियरेस्ट सेंटर में जाके ECG जरूर करवाएं, क्योंकि ECG ही है जो डिफाइन करेगा कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए।
1: डॉक्टर श्वेता, अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या वो एक्सरसाइजेस कर सकता है प्रिकॉशन के तौर पे अपने आप को फिट रखने के लिए?
2: देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ वार्निंग साइंस हैं, अगर इस तरह का चेस्ट पेन या इस तरह की परेशानियां लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने आप से कोई भी एक्सरसाइज ना करें, सलाहकार की मदद से अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, आपने कार्डियोलॉजिस्ट को पहले दिखा लिया है, अगर वो एडवाइजेबल है कि आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो उसके बाद हम एक प्रॉपर रिजीम

0: का तैयार करते हैं, प्रोटोकॉल होता है जिसके अंतर्गत हमें उनका जो एचआर मैक्स है वो मेजर करते हैं, हम उनके सैचुरेशंस भी चेक करते हैं, बीपी जो बेसिक मॉनिटरिंग है पैरामीटर्स की वो मॉनिटर करके एक हम 6 मिनट वॉक टेस्ट भी उनका करते हैं। जब हमें लगता है कि पैरामीटर्स में उनको डिज़निया, सांस लेने में दिक्कत या पैल्पिटेशन की शिकायत अगर हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका एक कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बनाया जाता है 6 से 8 हफ्तों का। तो वो उनको फिर हम उस तरह के एक्सरसाइजेस अपनी गाइडलाइंस में सिखाते हैं, और जब हमें लगता है कि मरीज़ अच्छे से बहुत ही विदाउट एनी सिम्टम्स, कोई उनको नहीं आ रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, वो कर पा रहे हैं, तो फिर हम उनको होम बेस्ड एक्सरसाइजेस के सलाह देते हैं।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
2: हेलो।
1: हेलो,
2: हाँ नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका
2: मेरा
1: नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: नाम सर राजिंदर है, मेरी एज 75 है। तो
1: जी
2: मेरा स्टंट डला था 2011 में, लेकिन मेरा हार्ट फंक्शन 30 पे है और ये जो है बलगम भी बहुत बनता है। तो ये हार्ट फंक्शन कह रहे हैं कि बढ़ नहीं पाएगा, और कभी कहते हैं आईसीडी इम्प्लांट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या है आईसीडी इम्प्लांट।
3: राजेंद्र जी, ऐसा कहा जाता है कि टाइम मसल है। कहने का मतलब है, अगर हार्ट अटैक आने के बाद आप जितना डिले करते हैं उतना हार्ट में डैमेज आना शुरू हो जाता है। अगर आप 12 घंटे के बाद जाते हैं तो उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। गोल्डन आर हमेशा ही, चाहे वो ब्रेन का हो या ट्रॉमा हो या हार्ट हो, उसको 1 आर ही बोला जाता है ऐसे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आजकल हमारे पास काफ़ी मेडिकेशंस आ गई हैं जिसको हम दे सकते हैं, और ट्रायल के तौर पर कि उसमें देख सकते हैं कि आपका हार्ट की पंपिंग कितनी इम्प्रूव हुई है। इसको हम पिलर्स ऑफ हार्ट फेलियर बोलते हैं, और काफ़ी इसमें हमारे पास न्यू मेडिकेशंस हैं। तो आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली आई तो अपने नियरेस्ट जाके किसी कार्डियो स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट किया जाए और आपकी हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव किया जाए।
1: डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड एक प्रश्न, एक मैसेज भी आया हमारे पास। ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। डज द सीपीआर वर्क्स एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन गेट्स हार्ट अटैक? व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक टू गिव इट?
3: सी, देर आर टू थिंग्स, वन इज हार्ट अटैक एंड वन इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या आता है कि जो इससे बेसिकली वेस्कुलर फिनोमिना, इसमें आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आने से वो उसमें ब्लड का जो प्रभाव है वो रुक जाता है, उसमें पेन होगा आपको, स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी। तो और जो कार्डियक अरेस्ट है ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसमें क्या है कि आपका जो हार्ट है वो तुरंत काम करना बंद कर देता है, तो इसमें पेशेंट इमिडिएटली कोलैप्स कर जाता है। तो जो पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं उसमें सीपीआर की ज़रूरत आती है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास आपने देखा कोई जिम में कोलैप्स कर गया, कोई स्टेज पे कोलैप्स कर गया, तो आपको जो भी कोई कोलैप्स करता है तो मेक श्योर करना है कि आप उसको एक फ्लैट सरफेस पे पहले लेटाएं, मेक श्योर करें कि उसकी जो हार्ट है या पल्स है वो नहीं आ रही है इमीडिएटली। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन फ्यू सेकेंड्स आपको एसेस करना है, फ्लैट सर्फेस पर लेटाना है और उसको सीपीआर देना है। सीपीआर देने के लिए आप उसका जो लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट है उसमें अपनी हथेली रखेंगे दोनों इंटरलॉक करके, और आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको रैपिडली प्रेस करें, एटलीस्ट जो जो डेप्थ ऑफ आपका प्रेशर होना चाहिए 3 to 5 सेंटीमीटर के आसपास उसमें कंप्रेशन आना चाहिए, और 1 मिनट में कम से कम 100 बार आपको करना है। तो इसकी साइकिल्स एटलीस्ट आपको 30 to 60 सेकेंड्स के लिए देनी है, फिर रिस्पांस चेक करना है कि भाई उस कि पेशेंट कॉन्शियस हुआ नहीं हुआ, उसने कुछ रिस्पांस दिया है ना। और करने से पहले भी आपको मेक श्योर करना है कि उसकी चेस्ट मूव कर रही है नहीं कर रही है, या नॉस्ट्रल फ्लेयर कर रही है नहीं कर रही, या उसमें कोई कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, सीपीआर तुरंत स्टार्ट करना है, और इस सीपीआर को करते हुए आपको इमिडिएटली हेल्प के लिए बोलना है ताकि इमिडिएटली एम्बुलेंस आ पाए, और आपको तब तक सीपीआर करते रहना है या तो कोई आपकी हेल्प ना आ जाए या पेशेंट का रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो सीपीआर हमेशा ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन सीपीआर देने से जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, अगर आप सीपीआर देते हैं तो उसे सर्वाइवल एटलीस्ट 50 to 60% बढ़ जाता है। सर्वाइवल नहीं, सीपीआर नहीं देने से सर्वाइवल नियरली जीरो रहता है, और उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, सीपीआर से क्या होता है कि वाइटल ऑर्गन में आपका जो ब्लड है वो जाता है स्पेशली ब्रेन में, तो जो हाइपोक्सिक डैमेज है वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं और सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पे, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण और डॉक्टर श्वेता। एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, माई सेल्फ इज सौरभ सिंह चौहान फ्रॉम लखनऊ। माई क्वेश्चन इज, मेरे फादर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था दिसंबर 2024 में, दो स्टंट पड़े हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई, और क्या मेडिसिन लाइफ टाइम चलती रहेगी हार्ट की?
2: जी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो मेडिकेशंस आपके डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं उनको रेगुलरली लेना है आपको। कुछ मेडिकेशन 6 to 12 months के बाद हम कम करना शुरू करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है और पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं। अगर आपकी हार्ट की पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल है तो आप ग्रेजुअली अपनी रूटीन एक्टिविटी में जा सकते हैं, और अपना लाइफस्टाइल का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफस्टाइल को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपको जो चांसेस है रीब्लॉकेज का वो नहीं आएगा। उसमें क्या कर सकते हैं, अपना वेट कंट्रोल करके रखें, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके रखें, अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखें, रेगुलर अपने आप को आप वॉक वगैरह करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इनरोल करें। रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग से भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप 30 to 40 minutes डेली ब्रिस्क वॉक करते हैं 5 days in a week, वो भी sufficient रहता है। और medicines लेना और जो ये risk factors उनको control करके रखेंगे तो आपको re-blockage या re-intervention की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर 3 to 6 months में जाके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि अगर कुछ medications alter करनी है, change करनी है, वो कर सके।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर्स को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही निवेदन कर रहा हूँ। मेरा एक मिथ है, तीन सवाल है। तो पहला मिथ जो है वो ये है कि यदि आपको हार्ट में ब्लॉकेज है और आप रनिंग करते हैं स्पीड से, तो मैंने सुना है कि आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज है वो जो है खुल जाते हैं, तो ये दूर करें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि किसी इंसान को थायराइड है या टॉन्सिल है, तो क्या इसका कोई रिलेशन है हार्ट से? तीसरा सवाल मेरा ये है, 3 दिनों लिवर में मेरे जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे और जो है गैस ही बनती है, तो क्या इसका भी कोई थायराइड से उस हार्ट से कोई फ्यूचर में मतलब कोई नुकसान होने की संभावना है? और चौथा सवाल मेरा ये है कि जब भी कभी अचानक आपके सामने या तो लॉयन या स्नैक्स आ जाए तो अपने आप हाथ पैर जो है उससे पसीना आने शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो क्या इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी
2: जी। अगर आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होना शुरू होती हैं, है ना, तो उससे कॉरोनरी फ्लो भी बढ़ता है। अगर कुछ क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो जो नेचुरल बाईपास वाले चैनल्स हैं वो भी ओपन होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ओवर एग्जर्ट करते हैं तो उसमें डैमेज आने के चांसेस भी आते हैं। थायराइड प्रॉब्लम और हार्ट का पुराना रिलेशन है। थायराइड प्रॉब्लम से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो सकता है, आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, है ना, तो इनको अगर थायराइड को कंट्रोल करके रखना जरूरी है, ताकि जो हार्ट की गति है और ब्लड प्रेशर वो भी आपका कंट्रोल रह सके। थायराइड प्रॉब्लम्स आपका डिसलिपिडीमिया, लिपिड एबनॉर्मलिटी को भी बढ़ाती है, तो जब भी थायराइड प्रॉब्लम्स हो तो इन चीज़ों को चेक करना, स्पेशली आपकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल। लीवर प्रॉब्लम्स, आजकल कहा जाता है कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटिक लीवर डिजीज, MASLD, तो लीवर में क्या होता है कि फैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जो MASLD होती है इसका हार्ट से भी रिलेशन है, क्योंकि जो फैट डिपॉजिट आपका लीवर में है वो फैट डिपॉजिट आपकी जगह जगह जाकर हो सकता है, स्पेशली ब्लड वेसल्स में, जो हार्ट की वेसल्स भी हो सकती हैं, ब्रेन की भी हो सकती है, किडनीज की भी हो सकती हैं, और जो आपके पास काफ़ी बार गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं वो मिमिक करते हैं आपको हार्ट अटैक के, तो जो भी पेन होता है उसको ये सोच के, क्योंकि काफ़ी बार पेन जो होता है हार्ट का पेन ये हमेशा आपको सीवियर पेन नहीं होगा, काफ़ी बार ये सिर्फ हैवीनेस होगी या प्रेशर जैसा फील होगा या आपको बर्निंग फील होगी, तो जो प्रिकिंग वाले पेन होते हैं जिसको आप फिंगर से लोकलाइज कर सकते हैं यूजली, वो हार्ट के पेन नहीं होते हैं, लेकिन अगर बर्निंग पेन भी अगर आपको हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक नहीं मानना है, जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना, ताकि आपका प्रॉपर ECG हो सके, आपका प्रॉपर चेकअप हो सके। जो 90% लोग इग्नोर करते हैं वो अपने हार्ट अटैक के पेन को गैस्ट्रिक पेन समझते हैं और घर में रहते हैं, और जब वो लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका होता है और डैमेज हो चुका होता है, तो इसलिए नेगलेक्ट नहीं करने अपने सिम्टम्स।
1: डॉक्टर श्वेता, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं?
0: जी, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ऑलरेडी मतलब हो चुकी है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल मॉडिफिकेशन में चली जानी चाहिए। जैसे कि एडवाइजेबल होता है कि जो कारण है, हमने अभी बात करी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं हार्ट अटैक आने के लिए, ओबेसिटी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स उनके हैं रहे हैं तो आपको प्रिवेंटिव तौर पर मतलब आगे उसके प्रिवेंशन करने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, मोबाइल रहे, तो एक सेट रिजीम हमें एक्सरसाइज का जो है वो बताना पड़ता है। वो कार्डिक रिहैबिलिटेशन में बेसिकली उसी पे फोकस किया जाता है, जैसे कि रिकमेंडेड है WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज हमारा पर वीक, जैसे अगर हम इसको टुकड़ों में बांटें तो 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार हफ्ते में करें, बहुत ज़रूरी है ये करना। इसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल भी बना देते हैं जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिसमें बॉडी का थोड़ा लचीलापन वाली जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी मांसपेशियाँ तनाव में हैं, टाइट हैं, उनकी स्ट्रेचिंग, देन फिर हम स्ट्रेंथनिंग पे आते हैं जिसमें काफ मसल्स जो कि हमारा सेकेंडरी हार्ट है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की हम बात करते हैं, वो सिखाई जाती है मरीज को। और एरोबिक एक्सरसाइजेज में जो कि सबसे बेस्ट है, एक सिंपलर एक्सरसाइजेज है जैसे वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, इसके अलावा आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक और 10 मिनट की साइकिलिंग का प्रोटोकॉल भी हम मरीज़ को बता सकते हैं अगर जो इससे अफेक्टेड है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अगेन हम फिर बात करते हैं खान पान के ऊपर आएंगे कि खान पान की हैबिट्स उनकी अच्छी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो चाहिए, आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कस्टमाइज्ड स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बनाता है, तो कार्डिक रिहैबिलिटेशन बेसिकली इसी पे फोकस रहता है हमारा।
1: डॉक्टर तरुण, जैसे कि हम हार्ट की बात करें तो क्या आजकल बिना ओपन हार्ट सर्जरी के लिए इलाज भी संभव है?
2: बिल्कुल, आज की डेट में जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी रिक्वायरमेंट तो लेस देन 5% रह गई है किसी भी उस कंडीशन में। तो जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज है, हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइसेज आ गए हैं जो केसेस पहले बाईपास के लिए जाते थे, उसकी सिंपल वे में एंजियोप्लास्टी और अच्छे रिजल्ट के साथ पॉसिबल हैं। जो पहले ओपन जो होल्स होते थे बच्चों में, उसमें से भी ज़्यादातर आजकल डिवाइस क्लोजर से हो जाते हैं, और जो वेल्व चेंज होते थे, वेल्व्स की प्रॉब्लम आती थी, तो वो भी आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं उसके जरिए हम वेल्व्स को भी चेंज कर देते हैं और रिपेयर कर देते हैं। तो जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की फील्ड है वो इतना डेवलप कर गई है कि जो बाईपास की रिक्वायरमेंट है वो बहुत रेयर केसेस में, कम से कम केसेस में रह गई है, जिसमें एंजियोप्लास्टी फिजिबल नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है आज की डेट में।
1: तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में?
2: जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है वो हम जो वेसल्स होती है उसके जरिए, तार के जरिए और कैथेटर के जरिए जाके हार्ट में जाकर उसको हुक कर कर उसको हम प्रोसीजर में एंजियोग्राफी, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसको एंजियोग्राफी बोली जाती है, और जिसमें हम इंटरवेंशन करते हैं या बलून डायलिटेशन करते हैं, स्टेंट लगाते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी बोली जाती है। तो यूजुअली या तो हम हार्ट की जो रेडियल आर्टरी होती है उसके जरिए जाके कर सकते हैं, जो फेमोरल आर्टरी उसके जरिए जाके कर सकते हैं। जो बाईपास सर्जरीज होती है उसमें पूरा काटा जाता है आपकी चेस्ट को, उसमें इंसीजन आता है, उसमें रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और उसमें रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस है कि जो एंजियोग्राफी या इंटरवेंशन वाली चीज़ें हैं उसमें पेशेंट का कंफर्ट ज़्यादा होता है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है और बिना पेन के हो जाती है, मिनिमल पेन के साथ। जो बाईपास सर्जरी उसमें रिकवरी टाइम भी ज़्यादा है, इंसीजन भी बड़ा है और उसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है और वो थोड़ी मुश्किल होती है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
4: मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सुजाता से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
4: मैम, मेरे को प्रॉब्लम होता है जैसे मैं रास्ते चलती हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मुझे सांस फूलती है ज्यादा और थकान ज्यादा हो जाता है।
2: जी, आपकी उम्र कितनी है?
4: 54-55 के लगभग है सर।
2: जी देखिए, जो सांस फूलना ना, इसको भी हम एक कार्डिक सिम्टम्स ही मानते हैं, क्योंकि काफी लोगों में वो पेन नहीं होता है, वो सांस फूलना होता है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में, डायबिटिक्स में, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, इनको पेन नहीं होगा, इनको सिर्फ सांस फूलना जैसा फील होगा। लेकिन सांस फूलना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके और भी कॉजेज होते हैं। जैसे फीमेल्स में बहुत कॉमन कॉज है कि ब्लड का कम होना है, हीमोग्लोबिन का कम होना। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उससे भी आपको सांस फूल सकता है। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपका सांस फूल सकता है। अगर आपने अपना वेट ज़्यादा बढ़ा रखा है तो उससे भी आपको सांस फूलना हो सकता है। और अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर फिर आप सडनली वॉक करना शुरू करते हैं स्टे, तो उसमें भी सांस फूलना हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं हैं और आपका छोटी मोटी एक्टिविटी में सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था, तुरंत जाके चेकअप करवाएं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ECG को, और एक एक्सरे भी करवा सकते हैं ताकि पता लगे कि जो ये सांस फूल रहा है उसकी वजह क्या है।
1: डॉक्टर श्वेता, अगर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो उन्हें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए?
0: अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अगर उसको

0: जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर उसको रेस्टिंग डिस्निया भी है, अगर बैठे बैठे भी सांस फूलने की शिकायत आ रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर इस तरह का है, या बहुत ही एक्सट्रीमली फटीग फील करते हैं वो, उनको लगता है कि हम हर वक्त थकान या थका थका महसूस करते हैं, और तीसरा मेजर सिम्टम अगर वो कहेंगे कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादातर सूजन बनी रहती है टखने के आसपास या पैर की पंडलियों के आसपास, तो ऐसे अगर साइंस अगर आ रहे हैं तो उनको हम अवॉइड करते हैं, मना करते हैं कि आप इस अभी एक्सरसाइजेस करने की सिचुएशन में नहीं हैं। और बहुत ही जेंटल वॉक हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप सिंपल वे में घर में, जैसे घर में ही टहलें या थोड़ा बहुत आसपास अगर टहल सकते हैं तो उतना
1: और
0: टहलने की
1: ब्रिस्क वॉक
0: एक्सरसाइज
1: ना
0: करें।
1: करें।
0: ब्रिस्क वॉक ना करें क्योंकि अभी ये थोड़े से अलार्मिंग साइंस है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है, इस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप एक बेसिक रूटीन की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। आप जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हो, सारे जोड़ों की एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना, एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे हमने अभी पहले बात करी थी, तो एरोबिक एक्सरसाइजेस को भी आप अच्छे से, जैसे ब्रिस्क वॉक है, आप सैर करें, सुबह शाम की सैर करें, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं कि थोड़ा सा हम स्टेयर्स भी पेशेंट्स को चलने के लिए एडवाइस करते हैं कि जैसे 10 से 5 फ्लाइट्स आपने ऊपर लिया, नीचे उतरे, है ना, ताकि फिर हम उसका रिकॉर्ड करेंगे कि इनको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही, इनका हार्ट रेट मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, इनके ब्लड प्रेशर में कितना वेरिएशन आता है या सैचुरेशन इनकी कितनी डिस्टर्ब होती हैं, तो पूरा एक एनालिसिस करके, पेशेंट की पूरी जांच करके ही हम उनको बताते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेस आपको करनी है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: जी जी नमस्ते मैम। मैं
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गाजियाबाद से मैम, मेरा नाम कमलेश चौधरी है। जी
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मैम, जैसा अभी डायबिटीज वालों को ज्यादा रहता है रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक होने का, तो क्या क्या प्रिकॉशन रखें, क्या मतलब नॉर्मल जो चेकअप भी बीच में कराते रहें ताकि कुछ रिस्क फैक्टर कम किया जा सके जैसे डायबिटीज के लिए, जैसे एज के हिसाब से क्या अलग अलग फैक्टर है रिस्क फैक्टर, जैसे 30 से 40 या 40 से 50, 50 से 60 है किसी को
0: जी
2: डायबिटीज,
0: जी
2: तो वही जानना चाह रहे हैं। जी सर, तो मतलब क्या क्या जांच वगैरह कराते रहें सर, कि
0: बिल्कुल
2: मतलब कि हाँ थोड़ा सा अवेयर रहे, कहने का मतलब।
0: जी, जो डायबिटीज़ है वो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है हार्ट प्रॉब्लम का। डायबिटीज़ को हम एक CAD रिस्क इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इसको डायबिटीज़ है मान के चलते हैं कि इसको हार्ट प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी है या इक्विवेलेंट है। तो इसमें ज़रूरी है कि तो शुगर को आप प्रॉपर कंट्रोल करके रखें, और जो इसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करके रखना है। तो शुगर की दवाइयाँ तो आपने लेनी है कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट भी इसमें देनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो इसका ध्यान रखना है। डायबिटीज़ पेशेंट में चांसेस होते हैं वेट गेन के, तो आप कोशिश करें कि वेट गेन ना हो। थर्ड चीज़, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, तो हाइपरटेंशन अगर है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल रखें। तो क्या क्या आपको चीज़ें को ध्यान रखना है, एक तो स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में, जो आपने बात की कम एज में स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो यंग एज में हार्ट अटैक आते हैं स्पेशली हम बात करें 20 से 30 साल के बीच में, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो उनमें जेनेटिक टेंडेंसीज हैं, उसको देखने के लिए आप लिपिड करवा सकते हैं, जैसे आप 18 ईयर्स के होते हैं कि लिपिड आपका ठीक है या नहीं है, अपना BP चेक करवा सकते हैं, और अगर आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है तो और इन्वेजिव टेस्ट के लिए जा सकते हैं, जैसे कि ECG, ECO, TMT। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो आप कोशिश करें कि इसका हर 3 to 6 मंथ्स में आप चेकअप करवाएं, ताकि इसका जो लेवल्स है आप उसको कंट्रोल करके रख सकें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ना शुरू होती है तो हार्ट के इंसिडेंस भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो 50% हार्ट के पेशेंट्स हैं उनकी एज 50 ईयर से कम होती है, और नियरली 30 to 40% की एज 40 ईयर से कम होती है। तो आपको ये वेट नहीं करना है कि मुझे यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, तो जो आपको कंट्रोल करना है या जो आपको लाइफ स्टाइल करना है वो आपको अर्ली एज में करना पड़ेगा, ताकि जो मिडल एज है उसमें आपको हार्ट डिजीज डेवलप भी ना हो।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और दोनों डॉक्टर को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, ये लिखते हैं आज के युवा में हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो पहले बुजुर्गों में होती थी, तो आज के युवाओं को खान पान, 24 घंटों की टाइम मैनेजमेंट के बारे में कैसा रखना चाहिए, क्या सलाह देंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: जी, ऐसा है कि जैसे कि जो हमारी पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, ये हम बोले एशियन पॉपुलेशन, ये पहले से ही हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज है। हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एटलीस्ट 1 to 2 decades हार्ट प्रॉब्लम पहले ही जल्दी आ जाती है। अगर वहाँ 60 to 70 ईयर्स की एज में आती है, तो यहाँ 40 to 50 ईयर्स की एज में आ जाती है। और इसमें प्रमुख कारण ये है कि एक तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं एज ए कंट्री, दूसरा जो हमारा खान पान है वो भी कहीं ना कहीं, हमारी डाइट ऐसी है कि जो एथ्रोजेनिक है, या हम बोलें कि वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और

0: वेट गेन को बढ़ाती है। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करके रख सकते हैं विद और विदाउट मेडिकेशन, वो बहुत ज़रूरी है। वेट वेट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ओबेसिटी, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का फैक्टर है ये काफ़ी लोग नहीं करते, लेकिन स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे कि हार्ट अटैक आ सकते हैं। क्योंकि जो प्लाक्स हैं, कि जैसे मैंने बताया कि जो इंडियंस की डाइट है, जो जेनेटिक टेंडेंसी है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को हम प्लाक्स बोलते हैं, जो आर्टरी में डिपॉजिट्स होते हैं, अगर ये रप्चर कर जाते हैं तो उसको हार्ट अटैक आता है। ये प्लाक हो सकता है 2% हो, 4% हो, 5% हो, 20% हो। अब पोस्ट कोविड एरा में ये देखने को मिला है कि जो ये प्लाक रप्चर करने की टेंडेंसी है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है। तो या तो हो सकता है कि उसकी इन्फ्लामेशन बॉडी में परसिस्ट कर रही हो, या हमारा लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हो गया पोस्ट कोविड एरा में। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें, क्योंकि कोविड को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना रिस्क प्रोफाइल कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये 9 रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो एक स्टडी थी इंटर हार्ट स्टडी, जो मोर देन 45 कंट्रीज़ में हुई थी, इसमें सब लीनियज के लोग थे। इसमें देखा गया कि अगर आपने 9 फैक्टर्स कंट्रोल कर लिए, स्पेशली आपकी बॉडी वेट, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल्स, अगर ये आपने फैक्टर स्ट्रेस, ये अपने साइकोसोशल फैक्टर्स, ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो अपना हार्ट डिजीज का इंसिडेंस 90% तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी कि जो जेनेटिक टेंडेंसीज है हार्ट अटैक आने की, वो सिर्फ लेस देन 5% है, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो वो लेस देन 5% है ओल्ड एल्डरली एज। तो कुछ फैक्टर्स जैसे मैंने कहा कि आप चेंज नहीं कर सकते, एक तो हो गया एल्डरली, जिसकी एज बढ़ती जा रही है उसमें टेंडेंसी आएगी, मेल सेक्स में हार्ट प्रॉब्लम्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे के सारे जो 9 फैक्टर्स हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना रिस्क लेस देन 5% में ला सकते हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास ये है फ्रॉम समर्थ फ्रॉम बेंगलुरु, ये लिखते हैं, इट इज़ सीन दैट मैनी पीपल आर गेटिंग कार्डियक अरेस्ट इन जिम, सो हाउ मच सेफ इट इज़ टू डू वर्कआउट इन जिम, विच वर्कआउट रिजाइम वी शुड फॉलो?
0: जी, देर आर फ्यू थिंग्स। जिम में कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट है, मैंने क्या कहा है कि उसकी दो वजह होती हैं, एक तो आपकी हार्ट अटैक हो सकता है, एक मिडल एज लेट एज में जो कार्डियक अरेस्ट आने का प्रमुख कारण होता है वो हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन अगर वो बच्चों में आ रहा है तो उसमें और भी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अर्दमियाज हो सकते हैं या कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं। जो कार्डियोमायोपैथीज होती है, स्पेशली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये धीरे धीरे आना, ऐसा नहीं होता है बचपन में ही आ जाती है, जो हार्ट की मसल की थिकनिंग है ये ग्रेजुअली आती है, किसी भी टाइम आ सकती है, आफ्टर 18 ईयर्स, हो सकता है 25 ईयर्स की एज में आए, 30 ईयर्स की एज में आए। तो जिनको अंडरलाइन कार्डियोमायोपैथी है जो अनडिटेक्टेड है, अगर ऐसे लोग सडन जिम करना शुरू करते हैं तो इनको हार्ट प्रॉब्लम्स आने के या कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं, या जिनको जेनेटिक टेंडेंसीज है हार्ट अटैक आने की, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, वो सडन सीवियर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, या जो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इससे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब भी आप कोशिश करें कि आप जिम ज्वाइन करते हैं और आप सोचते हैं कि आप हैवी एक्सरसाइजेज या उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले अपना कार्डियक चेकअप जरूर करवाएं, जिसमें एक ECG, इको और एक TMT और कुछ नेसेसरी ब्लड टेस्ट जैसे कि लिपिड शुगर के टेस्ट होना जरूरी है।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर। एक मैसेज हमारे पास ये है, लिखती हैं, यह है सरस्वती, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, रांची से। ये लिखती हैं, आई एम डायबिटिक टेकिंग मेडिसिन, नॉट डॉक्टर आर सेइंग यू हैव डेवलप्ड आर्टेरियल फिब्रिलेशन, व्हाट शुड आई डू?
1: जी, एट्रियल फिब्रिलेशन वो बीमारी होती है जिसमें आपकी हृदय गति या आपकी पल्स इरेगुलर हो जाती है। इसमें सबसे जो दिक्कत करता है, एक तो ये आपका, अगर ये रेट को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट फेल कर सकता है और स्ट्रोक आने के चांसेस बनाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो इसके चांसेस, इंसिडेंस एट्रियल फिब्रिलेशन के बढ़ते जाते हैं। तो अगर ये काफ़ी टाइम से आपको, अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो कोशिश करें इसका रेट कंट्रोल रखें और कुछ ब्लड थिनर्स लेनी पड़ेंगे आपको, ताकि आपको स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाएँ। अगर आपको ये अक्यूटली डेवलप हुआ है तो कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करने की, जिसके लिए हम मेडिकेशंस भी दे सकते हैं और भी हमारे पास मेथड्स हैं। और अगर आप से छुटकारा पाना चाहते हैं परमानेंटली, तो EPS RFA प्रोसीजर होता है, इसको करके हम इसको परमानेंटली क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है, आपके चैम्बर्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें मेडिसिन से कंट्रोल करें

0: स्मोक करते हैं, या जिन्होंने अपना वेट काफ़ी बढ़ा रखा है, या कुछ वो हार्मोनल्स प्रिपरेशंस ले रही हैं बच्चा होने के लिए या कुछ और वजह से, या जिनकी पहले हिस्टरेक्टमी हो चुकी है, जो उनका यूट्रस है वो निकाला जा चुका है, तो वो काफ़ी बार सप्लीमेंट लेना शुरू करती हैं। और काफ़ी बार प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया को भी आज की डेट में हम रिस्क एनहेंसर मानते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो फीमेल्स को ध्यान रखना है कि अपना वेट गेन ना होने दें, अगर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके रखें, अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसीज़ हैं हार्ट अटैक आने की आपकी फैमिली में, तो उसके लिए अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं। और अगर कुछ भी ऐसा निकलता है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो कोशिश करें कि उसको आप कंट्रोल करके रखें। और स्मोकिंग, एक जो देखा जा रहा है कि आजकल फीमेल्स में स्मोकिंग का ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली उनको लगता है कि सिगरेट ना पी के हुक्का स्मोकिंग भी कर सकती हैं, ई सिगरेट पी सकती हैं, ये इक्वली डेंजरस है, कोशिश करें इसको अवॉइड करें।
1: जैसे कि हार्ट ट्रीटमेंट के बाद अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, सारे प्रोसीजर सेफ हैं आज की डेट में, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर अपनी मेडिकेशंस लेनी है। अगर आप मेडिकेशन मिस करते हैं, तो अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस के या उसमें क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल शुगर कंट्रोल नहीं रखा तो लॉन्ग टर्म में इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिस्टेनोसिस, तो स्टेंट में री ब्लॉकेज हो सकती है या बाकी नई जगह ब्लॉकेज आ सकती है। और अगर जो बाकी फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, आपकी मोटापा और स्ट्रेस, और अगर आपने अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ली है, तो सारे के सारे फैक्टर्स अगर अनकंट्रोल्ड रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से हार्ट अटैक आने का, री ब्लॉकेज होने का या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करें कि मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल्स, अगर ये दो चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली हैं, तो री प्रोसीजर री इंटरवेंशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
1: डॉक्टर श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिजियोथेरेपी केवल बीमारी या प्रोसीजर के बाद ज़रूरी है या प्रिवेंशन में भी इसकी भूमिका है?
2: देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम हमेशा ये बोलते हैं, तो प्रिवेंटिव तो हमेशा बेटर रहता है और बेस्ट ही रहता है। थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, इस बार हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो 8th of September को मनाया गया था, उसमें हमारा इस ईयर का जो थीम था वो यही था कि प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। सो बेसिकली हमने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंप्स और स्पेशल ओपीडीज लगाई थी, जहाँ पे हमने पेशेंट एजुकेशन किया, हमने स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट्स लेवल पे एजुकेशन दिया, टीचर्स लेवल पे एजुकेशन दिया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जाके वहाँ के स्टूडेंट्स को भी एजुकेट किया कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीजेस को मतलब जो जिनकी वजह से हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। तो बेसिक हमारा फोकस इन्हीं पे था कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल जो है, अगर हम उनको उसमें बदलाव लाते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट और एक्सरसाइजेस के थ्रू होती है। लेकिन सेकेंड थिंग, हमारा डाइट कैसा है, हम खान पान में किन चीज़ों का परहेज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे खाने में जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जंक फूड है, एक्सेस फैट है, तो वो हमारी हार्ट की कंडीशंस को ना बढ़ावा दें, है ना। इसके अलावा हमारा जो नॉर्मल रूटीन में हम बात करते हैं कि हमारा मोटापा, जो ओबेसिटी है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए हम किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इन सब चीज़ों की हम एजुकेशन देते हैं। और प्रिवेंटिव लेवल, जैसे कि हम बात करें कि स्ट्रेस भी एक कारण है, रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे रूटीन को बहुत ही कामली करें, और एक्सरसाइजेज में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, सांस लेने का तरीका, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जिससे हम स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। और एक बहुत इग्नोरेंट फैक्टर है, शायद लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, या उनका एक रूटीन ही बन चुका है, देरी से सोना या स्लीप डिस्टर्बेंसेज आना, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपके हार्मोन लेवल पे वर्क करता है, जब हार्मोनल इफेक्शंस होते हैं, जैसे भी हम सब बात ही करने लगातार इस प्रोग्राम में, तो कहीं ना कहीं वो हार्ट के ऊपर आपका प्रेशर देता है, अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। तो अगर हार्ट की कंडीशंस को हम पहले ही लेवल पे, मतलब प्रिवेंटिव लेवल पे, अगर हम इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, तो हम काफ़ी हद तक दिल के ऊपर आने वाले जोर या परेशानियाँ हैं उनको रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर तरुण, हेल्दी हार्ट की लिए हमें ऐसा क्या लाइफस्टाइल है जो अपनाना चाहिए, क्या खाएं, क्या ना खाएं और क्या अवॉइड करें?
0: जी, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए 24/7 काम करता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका स्पेशल ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं उसका ध्यान रखें, जो आप प्लेट में क्या ले रहे हैं, स्पेशली अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो आपको आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको प्रॉपरली कार्ब्स कम लेने हैं, फैट्स कम लेने हैं, प्रोटीन इंटेक थोड़ा बेटर लेना है आपको। कोशिश करें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं या तली हुई चीज़ें हैं वो ना खाएं आप। कोशिश करें वेजिटेबल्स लें आप, रेड मीट का सेवन कम करें, आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक पोर्शन साइज मैटर करता है। तो जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, सबसे जरूरी है बैलेंस डाइट होना। तो उस बैलेंस डाइट में आपका शुगर कम होना चाहिए, कार्ब्स

0: कम होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए। जो आप जंक फूड खाते हैं कोशिश करें वो ना खाएं, क्योंकि जैसे चिप्स हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, या तली हुई चीज़ें हो गई, समोसा, जलेबी, कचौरी, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि ट्रांस फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही आपकी बॉडी में जाके करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट्स बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपने कैलोरी इंटेक कम कर लिया, कोलेस्ट्रॉल इंटेक कम कर लिया, तो आपका वेट भी ठीक रहेगा। तो आपको वेट अपना कंट्रोल करके रखना है, चाहे वो डाइट से करें या एक्सरसाइज से करें। अगर वेट कंट्रोल कर लिया तो एक सेकेंड रिस्क फैक्टर आपका कम हो गया। डाइट और एक्सरसाइज आपने शुरू कर दी तो जो आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं, और उसके लिए आप एक्टिव रह सकते हैं। जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको आपको छोड़ना है, तो आपको एक्टिव रहना है। जैसे कि आपको 30 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग डेली करते हैं, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक, तो वो भी सफिशियंट रहती है आपके लिए। फोर्थ की, जो अगर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से, उसको आप कंट्रोल करके रखें। स्ट्रेस स्ट्रेस ना करें, या उसके वे आउट ढूंढें, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, और कोशिश करें कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आपकी प्लाक रप्चर को या और मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एनहेंस करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको कंट्रोल करने हैं, और कोशिश करें कि अगर कहीं ना कहीं आप ऐसी सिटी में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो आप उसका पार्टनर बने, प्लांटेशंस करें, और कोशिश करें कि व्हीकल को डिकंजेस्ट करें या और मेजर्स करें कि जिससे सिटी थोड़ी सेफ हो सके।
1: डॉक्टर श्वेता, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: मैसेज यही है कि हेल्दी हार्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, मोबाइल रहें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जितना हो सकते हैं एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जो भी आपका मन करता है, मतलब मैं तो ये एडवाइस देती हूँ बींग अ फिजियोथेरेपिस्ट कि एक जगह पे ज़्यादा देर ना बैठे, मूवमेंट करें, वॉक करें। जितना आप हेल्दी रह सकते हैं खुश रहेंगे, बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, बहुत सारे फैक्टर्स, गुड हार्मोन्स जनरेट होंगे, तो आपका हार्ट और जो आपकी बॉडी है वो हमेशा अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर तरुण, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जी, एक हार्ट मैंने जैसे कहा है कि ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए दिन रात काम करता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटा करना है। तो हार्ट क्या बोलता है आपको कि मैं आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए 1 घंटा निकालें जिसमें आप प्रॉपरली एक्टिविटी करें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, और अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। अगर आप फिट रहेंगे तभी आपका हार्ट भी फिट रहेगा।
1: श्रोताओं, आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, दिल की बीमारी में समय बहुत कीमती है। सही समय पर पहचान, सही जांच और सही इलाज कई बार जिंदगी बचा सकता है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एंड हेड मेदांता हार्ट सेंटर न्यू दिल्ली, और डॉक्टर श्वेता शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू।
1: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल ID है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में एक नए स्वास्थ्य विषय और नई जानकारी के साथ। जाते जाते बस इतना कहूँगी, दिल का ख्याल सिर्फ बीमारी के बाद नहीं, बीमारी से पहले भी रखना ज़रूरी है। स्वस्थ दिल, खुशहाल जिंदगी। अपना और अपनों के दिलों का ख्याल रखिए और अपनी सेहत को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभ आरंभ करेंगे। सम्मेलन में 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न के सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका और वक्त हो गया है आपके अपने शो अल्फा जन का। और आज का अल्फा जन होने वाला है थोड़ा और खास, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टूडियो में बैठकर कॉलेज लाइफ की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपको लेकर चलेंगे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी। कॉलेज के कॉरिडोर्स, कैंपस की एनर्जी, स्टूडेंट्स के सपने, उनके करियर प्लान्स, उनकी चॉइसेस और वो सवाल जो आज की यंग जनरेशन के माइंड में कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है, आज सुनेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स की जुबानी। तो अगले कुछ वक्त में हम करेंगे एक छोटा सा डीयू कैंपस का टूर थ्रू आकाशवाणी एफएम रेनबो, आवाजों के जरिए, कॉन्वर्सेशंस के जरिए और ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रेट म्यूजिक के साथ। लेकिन उस सफर की शुरुआत से पहले वक्त हो गया है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं ज्योतिका मिलूंगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद चलेंगे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिलहाल सुनिए हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। आई विल बी राइट बैक।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।

0: जी हाँ, आज के हालात में हर इंसान दो चेहरे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और इसी वजह से किसी पर भी विश्वास करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। और दोस्तों, इस दोहरे चरित्र के कारण सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो है महिलाएं। क्योंकि महिलाएं कभी रिश्ते की खातिर तो कभी परिवार के लिए अपनी आंखों को बंद करके भरोसा करने के लिए हो जाती हैं मजबूर। दोस्तों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कौन है इसका जिम्मेदार, आइए सुनते हैं कुछ लिसनर्स से।
1: मेरा नाम बबीता राव है, मैं गुसाईगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मानना है कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भी सभी लोग जिम्मेदार हैं। जिनको लगता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती हैं, और जिनको वो प्रताड़ित करते हैं किसी न किसी रूप में, लाइक मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते रहते हैं, तो मैं इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकती हूँ कि वो टॉर्चर करते हैं। इसके लिए तो पूरा समाज ही रहता है। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी महिलाओं के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति। अगर कुछ समाज में बदलाव लाना है तो इसके लिए हमें अपनी सोच पहले बदलनी होगी। और इसके लिए मैं बस कुछ दो ही तीन शब्द कहना चाहूंगी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंड। बंधे रहें संस्कारों से, आजाद रहें विचारों से।
2: मेरा नाम है रोशनी रावत और मैं उन्नाव से हूँ। औरतों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारी सड़ी गली सोच और ढीला सिस्टम और समाज का गलत रवैया जिम्मेदार है। सबसे बड़ा सामाजिक चुप्पी जो है कि घरेलू हिंसा हो या उत्पीड़न जैसी घटनाओं को एक पारिवारिक मामला मानकर दबा देना और पीड़ितों का समर्थन ना करना, समाज में पुरुषों को श्रेष्ठता और महिलाओं को कम आंकने की पुरानी सोच हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देती है। बस यही कारण है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं।
3: मैं रीवा यादव, भोली रोड नियर सैरपुर चौराहा से। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सबसे पहले अत्याचार करने वाला जिम्मेदार है, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि वह समाज भी जिम्मेदार है जो अन्याय को देखकर चुप रहता है। आज भी कई जगह महिलाओं को भेदभाव, हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण गलत सोच, अशिक्षा और महिलाओं को कमजोर समझना है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा देनी होगी। परिवार और विद्यालयों को बच्चों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। यदि हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज बनाया जा सकता है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, महिलाओं का सम्मान समाज का सम्मान है।
0: जी हाँ, जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है उस परिवार की महिलाएं उस परिवार को खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ आज के विषय पर क्या विचार रखती हैं, जानेंगे इस गीत के बाद। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

ये जो गीत है, अगर बेवफा तुझको पहचान लेते तो खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। एक और गीत है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जैसे कि आपने इन दो गीतों के बोल सुने, इस तरह की कहानियां बहुत सारी हमारी लड़कियां और महिलाएं जो हमारी श्रोता हैं, बहुत वर्षों से वो हमें अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें बताती हैं जिस पर ये दोनों गीत बिल्कुल फिट बैठते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको धोखे होते हैं, वो विश्वास जल्दी कर लेती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके घर का वातावरण उनका दम घोटता है, तो जो भी बाहर का मनुष्य एक बार उनसे प्यार से बात कर लेता है वो बिल्कुल उस पर भरोसा कर लेती हैं। जी हाँ, और फिर कहते हैं ना, बाद में पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या फायदा। हमारी बहुत सारी स्कूल गर्ल्स हैं और वो हमें बताती हैं फोन करके हमारे काउंसलर को कि हम जो भी कुछ शिक्षा इस रेडियो कार्यक्रम के द्वारा देते हैं वो उन सब बातों को अपनी कॉपी में लिखती हैं, जैसे कि मानो वो एक क्लास अटेंड कर रही हैं। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं वो इसलिए कर रही हैं ताकि वो उसको बार बार पढ़ें और स्वयं को याद कराएं, ताकि वो अलर्ट रहें, सतर्क रहें और इस तरह के धोखे में वो ना आएं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा, घरेलू हिंसा की जाती है, जिसके कारण वो मौके ढूंढती हैं घर से भाग जाने के। बहुत ज़रूरी है कि उनके घर में एक ऐसा सकारात्मक एनवायरनमेंट हो, ऐसे घर की परिस्थिति हो कि चाहे वो माता पिता हों, चाहे पति और सास ससुर हों, वो माहौल इतना सकारात्मक हो कि लड़की घर से भागने की ना सोचे। क्योंकि जब लड़की घर से भागने की सोचती है तभी वो बाहर वाले लोगों के शिकार में आसानी से फंस जाती है। तो प्रिय श्रोता, इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको यही बताना चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं आपके घर की रौनक हैं, जो पत्नियां हैं उनको आपके बहुत सपोर्ट की, सहानुभूति की, प्रेम की आवश्यकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारा देश विकसित होता है और जैसे दिशा फाउंडेशन 16 साल से यही शिक्षा दे रहा है, यही प्रोत्साहित कर रहा है परिवारों को, लड़कियों को, महिलाओं को, कि हम सबके साथ अच्छी तरीके से पेश आएं, ताकि हम सबको प्रोत्साहित करें, सशक्त करें और एक सुनहरे समाज की सृष्टि

तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन लोगों को भी सतर्क करना चाहते हैं जो भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको धोखा देते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जिनको धोखा होता है।

0: क्योंकि उनको पता नहीं होता गर्भपात के विषय में। बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो गर्भपात की गोली खाती हैं और गोली खाने के पश्चात उनके जो परिणाम होते हैं शारीरिक मानसिक, वो बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं और पूरे जीवन भर वो पीड़ा की शिकार रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो आसानी से धोखे में आ जाती हैं, किसी की बातों पे विश्वास कर लेती हैं, तो वो स्वयं अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलाती। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने श्रोताओं को यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको राय लेनी है, अगर आपको किसी बात का शक हो रहा है, तो आप बेझिझक हमारे काउंसलर से फोन पर बात कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपके साथ हैं। हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है आपको सही दिशा दिखाना, ताकि आप सुखी और संपन्न जीवन जी सकें।
1: जी हाँ, इस जीवन को अगर खुशियों भरा बनाना है और ईश्वर की आशीषों से उसे महकाना है, तो परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना नारी की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, नारी की इज्जत और उनके अधिकारों का सम्मान करने वाले पुरुषों के कदमों को कामयाबी क्यों चूमती है, जानने के लिए आप हमें 7678438471 पर फोन या मैसेज जरूर करें। और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं, तो आप 7678438471 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
4: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगी। मैं हूं ज्योतिका और अब वक्त है अल्फा जेन का, क्योंकि अब वक्त है स्टूडियो से निकलकर सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने का। और वहां से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं मेरी फेलो कलीग आरजे माला नेगी, जो इस वक्त मौजूद हैं दौलत राम कॉलेज में। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा माला के पास और उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त वो कॉलेज में कहाँ हैं और कैसा माहौल है वहाँ। माला, ओवर टू यू, बताइए।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ दौलत राम कॉलेज के फ्रंट लॉन में और मेरे साथ है कुछ हाईली क्रिएटिव गर्ल्स। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कॉन्वर्सेशन में। आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कहते हैं आजकल की लड़कियों के बारे में, जब उनको कहा जाता है कि चाहे कितना ही पढ़ लिख लो, घर संभालना जरूर आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, ये सोच प्रैक्टिकल है या ये सोच पुरानी है?
2: मेरा नाम मिहिका है और मैं साइकोलॉजी ऑनर्स की एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि घर संभालना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, और ये सर्वाइवल स्किल है, खाना बनाना, और हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल है और मुझे लगता है कि सिर्फ औरतों को नहीं, सबको, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर संभालना, तो उन सबका काम होना चाहिए।
3: तो मेरा नाम अदीबा सत्या है, मैं लाइफ साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर। एंड आई फील लाइक वट एवर मीका सेड इज़ वेरी ट्रू, कि ये जो है ये बहुत लॉजिकल थिंकिंग है और ये बहुत बेसिक चीज़ है, और आई थिंक इसको जेंडर के हिसाब से डिवाइड नहीं करना चाहिए कि सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट एवरी वन शुड नो अबाउट एंड सबको ये चीज़ आनी चाहिए।
4: ओके, मेरा नाम भव्या है और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की छात्रा हूँ, थर्ड ईयर। मेरे टीममेट्स ने सही कहा है, जब हम इस चीज़ को एक जेंडर से कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ी पेट्रियार्कल थिंकिंग ले आते हैं, थोड़ी पिछली सोच, और हम 21st सेंचुरी के हैं तो हमारे यहाँ पे ये सब सोच अब रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अगर कोई लड़की हमें दिखे एंड बहुत अच्छा खाना बनाती है तो हम उसको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी माँ बनेंगी, लेकिन अगर कोई लड़का अच्छा खाना बनाता है तो हम उसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे शेफ बनेंगे। तो हम उसको हमेशा एक इस वे में डालते हैं कि औरतें एक अच्छी केयरर है, अच्छी नर्चर है, तो वो चीज़ हम थोड़ा उसको पेट्रियार्कल बना देते हैं ऑब्वियसली।
5: मेरा नाम गरेशी कश्यप है और मैं सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट हूँ। आई अग्री विद व्हाट भव्या सेड एंड आई वुड ऑल्सो से कि जब हम ये ज़रूर वर्ड ऐड करते हैं तो एक सपोज एक वर्किंग वुमन, शी वर्क्स एंड देन व्हेन दिस जरूर वर्ड इज एडेड, तो उनपे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है दैट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग फॉर द फैमिली, वो शी ऑल्सो हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। तो उन पर डबल बर्डन आ जाती है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, एंड इसके वजह से कभी कभी उनके ड्रीम्स एंड प्रोफेशनल करियर में भी हिंड्रेंस आ जाती है। एंड इसी जरूर वर्ड के लिए बहुत औरतों को अपने करियर को छोड़ना पड़ता है। तो दिस जरूर वर्ड इज वेरी इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर बोथ जेंडर्स बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ मेन एंड इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द ड्रीम्स ऑफ वुमेन।
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन, बहुत ही दिल से निकली हुई बातें आज आपने शेयर की और ये जानने में मदद की कि आज की महिलाएं आज की सिचुएशन पर अपने क्या विचार रखती हैं। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू।
0: सही बात, आज की महिला, आज की जो इस पीढ़ी की सोच है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। दोस्तों, अल्फा जेन में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आ रही ये कॉन्वर्सेशंस सुनते हुए एक बात तो अच्छे से क्लियर है, कॉलेज लाइफ सिर्फ क्लासरूम्स, लेक्चर्स और असाइनमेंट्स तक लिमिटेड नहीं होती। यहीं पर स्टूडेंट्स अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, नए इंटरेस्ट डिस्कवर करते हैं और कई बार वही इंटरेस्ट आगे चलकर उनकी पहचान बन सकता है। और कॉलेज की बात हो, म्यूजिक का जिक्र ना हो, FM रेनबो पर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए।

0: एक बार फिर से सीधा चलते हैं माला के पास। माला, दौलतराम कॉलेज में म्यूजिक को लेकर स्टूडेंट्स का कैसा जोश है, आप ही बताइए।
1: अभी मैं हूँ दौलतराम कॉलेज के एम्फी थिएटर में और मेरे साथ है यहाँ की इंडियन म्यूजिक सोसाइटी अलहिया की मेंबर्स। अलहिया म्यूजिक सोसाइटी खास तौर पर एफएम रेनबो के लिसनर्स के लिए अपनी तरफ से बेहद खास प्रेजेंटेशन लेकर आई है, तो आइए इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय करते हैं।

0: बहुत ही खूब, ऐसा लगा शायद मैं भी वहीं बैठी हूँ और वहीं पर ये लाइव परफॉर्मेंस देख रही हूँ। फ्रेंड्स, अल्फा जेन के इस कैंपस सफर में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट और हर चॉइस के पीछे एक अलग कहानी होती है, और यंग माइंड्स क्या सोचते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे देखते हैं, ये जानना हमेशा इंटरेस्टिंग तो होता है ना। तो चलिए कैंपस में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माला, सुना है आपके आसपास कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी मिलवा दीजिए। ओवर टू यू।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ दौलत राम कॉलेज में और मेरे साथ है दौलत राम कॉलेज की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स। सवाल आपसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपकी साइकोलॉजी को पढ़ने में मुझे मदद करेगा वो ये है, अगर एक दिन के लिए आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो कॉलेज का कौन सा ऐसा रूल है जो सबसे पहले बदलेंगे आप?
2: हाय, माय नेम इज़ दिव्यांशी और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। सो बेसिकली कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, बट जैसे हमारा कॉलेज जो है वो जैसे अभी रिसेंटली काउंसलर लेकर आया है, तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स और लाने का कोशिश करूंगी।
3: हेलो, मेरा नाम है उर्जिता काद्यान, आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है आई विल ट्राई टू मेक शेड्यूल मोर फ्लेक्सिबल फॉर स्टूडेंट सो दैट दे कैन हैव टाइम फॉर देयर ओन एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन मोर थिंग्स एंड वर्क ऑन देमसेल्फ।
4: हाय, माय नेम इज विनीता एंड आई एम अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट दौलत राम कॉलेज एंड आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो द रूल दैट आई वुड लाइक टू चेंज वुड बी दैट यू नो देयर मस्ट बी अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन teachers and also students. There should be more open communication about policies in the college and the department itself.
5: Hello, my name is Riyanshi. I am from third year psychology department से. So अगर मुझे मौका मिले to be a principal for one day, one rule that I would like to change is basically जो attendance होती है उसके लिए there is a marks का criteria. So that I would like to change because जब भी कॉलेज आते हैं स्टूडेंट्स फिर अगर अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं तो दैट बिकम्स द सोल क्राइटेरिया कि हाँ वो अटेंडेंस के मार्क्स के लिए आता है, एज इफ वो एक बेट दे रहे हो हम स्टूडेंट्स को लाने के लिए रादर देन एक्चुअली कुछ ऐसा इन क्लासेस एंड ऑल दैट स्टूडेंट्स विलिंगली वॉन्ट टू कम बट नॉट फॉर अटेंडेंस वाला चीज। सो दैट इज वन।
1: थैंक यू सो मच।
0: कभी कभी ये छोटे उस्ताद भी कितनी डीप कॉन्वर्सेशंस कर लेते हैं ना हमारे साथ। देखो उन्होंने कितनी अच्छी टिप दी कि अटेंडेंस को बस हाजिरी से मत जोड़ो, मतलब उसको एक क्लिक बेट टाइप ऑफ चीज से ना जोड़िए। फिलहाल आप सुन रहे हैं अल्फा जेन विद मी ज्योतिका और वक्त

हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, क्योंकि म्यूजिक के बिना हमारी जर्नी अधूरी है। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज का सफर अभी यहीं पर जारी रहेगा।

0: दोस्तों, कॉलेज कैंपस की असली एनर्जी तो तब फील होती है जब क्लासरूम से निकलकर हम स्टूडेंट्स के टैलेंट्स और उनकी क्रिएटिविटी से रूबरू होते हैं। और दौलत राम कॉलेज में आज हमें ऐसी ही बहुत सारे यंग टैलेंटेड फेसेस मिल रहे हैं। अब देखते हैं कैंपस में घूमते घूमते माला की मुलाकात किनसे हुई है। माला, ओवर टू यू।
1: तो अभी मैं हूँ दौलत राम कॉलेज की अनहद सोसाइटी की वंडरफुल परफॉर्मर्स के बीच, और ये यहाँ की इंडियन डांस सोसाइटी है। इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन अभी हमारे आज के इस रैपिड फायर राउंड को कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं ये देखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर इनके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यू।
2: हाय, आई एम तान्या सचदेवा।
3: हाय, मैं रितोजा मोइत्रो एंड आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर जूलॉजी डिपार्टमेंट।
4: हाय, आई एम अक्षिता, फर्स्ट ईयर एंड अ प्राउड मेंबर ऑफ अनहद।
5: हाय, आई एम अपूर्वा रॉय, आई एम फ्रॉम द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट।
1: रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, सेटल्ड मैरिज या स्ट्रगलिंग करियर?
5: Struggling career for sure.
4: Oh, same question. Of course, struggling career.
1: Okay. Nobody is interested for marriage. Settled marriage के लिए कोई तैयार नहीं है.
6: Struggling career.
1: Okay.
6: Struggling career.
1: Papa या मम्मी?
6: Papa.
1: Okay.
6: Mamma.
1: Okay.
6: Papa.
1: Okay.
6: Mamma.
1: Okay. Next question. Cinema या social media?
5: Cinema for sure. Social media.
1: Okay.
6: Cinema.
3: Social media.
1: क्यों?
3: क्योंकि सोशल मीडिया में आपको मतलब बहुत एक्सपोजर मिलती है, और आपका आपके अंदर जो टैलेंट है, कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैं बहुत एक छोटी जगह से हूँ, थोड़ा सा एक रूरल साइड से हूँ, सोशल मीडिया हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे अंदर अगर कोई टैलेंट है उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक, डांस, ये सब जो कला है, ये अगर ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे तो इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता। ऑडियंस ही हमारे एक वो मीडियम है जिससे हम हमारे जो टैलेंट है, हम जिसकी साधना कर रहे हैं, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं इतने सालों से, वो ऑडियंस तक पहुंचे, वो लोगों तक पहुंचे, तभी इस कला की जो महत्व है वो और भी बढ़ जाते हैं।
1: साड़ी या जीन्स?
6: साड़ी,
3: डिपेंड्स ऑन द ओकेशन।
1: लेकिन फिर भी जनरली आपको क्या वेयर करना ज़्यादा पसंद है?
6: जीन्स।
1: जीन्स क्यों?
6: इट्स मोर कम्फर्टेबल एंड डेली जो हमें काम वाम करने होते हैं, आई बिलीव मैं नहीं कर पाऊंगी रोज साड़ी में काम इतना जितना मुझे चलना वरना होता है। सो
4: इट्स साड़ी फॉर मी एनी टाइम।
1: क्यों भाई, क्यों तुम नए जमाने की हो? शायद आलिया भट्ट वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे हो?
4: नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट वो एलिगेंट वाइब जो एक साड़ी दे सकती है ना, आई थिंक वो जीन्स नहीं दे पाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट की दिक्कत होती है काम करने में, तो आई फील लाइक कि अगर मैं उस चीज के यूज टू हो जाऊंगी वंस, सो आई विल बी एबल टू मैनेज दैट।
1: क्या बात है, वेरी गुड।
5: जीन्स फॉर मी, बिकॉज मैं साड़ी पहनने के इतने अकस्टम भी नहीं हूँ, तो
1: हाँ इसलिए। अच्छा, कई बार लोग ये भी कहते हैं ना कि मुझ पे साड़ी अच्छी भी नहीं लगेगी।
5: नहीं, वो बात नहीं है, बट क्या होता है ना, आजकल के टाइम में आदत नहीं होती है लोगों को, एंड इट बिकम्स अ कम्फर्ट वैल्यू की मोर अप्रोचेबल चीज जो है। साड़ी में वैसे भी ज्यादा एफर्ट लगता है ऑन एन एवरी डे बेसिस, तो बहुत बार मुश्किल हो जाती है फॉर पीपल टू कैरी आउट वेयरिंग अ साड़ी।
1: ओके, क्रिकेट या खो खो?
5: आई एम नॉट इन टू स्पोर्ट्स इफ दैट इज वैलिड, बट इफ आई वाज टू से देन प्रोबेबली क्रिकेट।
4: I think I agree to her because I'm not a sports person, but if I have to choose then cricket, because it's something I like more than kho kho, I guess.
6: Same, cricket.
1: Okay,
6: cricket.
1: Thank you so much आज के इस रैपिड फायर राउंड का हिस्सा बनने के लिए और अपने दिल की बातें हमारे सामने खुलकर जाहिर करने के लिए। Thank you.
6: Thank you.
0: अल्फा जेन में आज हम कैंपस लाइफ के कई रंग देख रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना कि ये जो गर्ल्स थी दौलतराम कॉलेज की, वो आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। माला, बहुत अच्छा लगा, हमें अपनी चॉइसेस हमें हमारे तक पहुंची हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉलेज का ये जो फेज़ है, वैसे भी बड़ा ही खास होता है ना, मतलब नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ और अपने फ्यूचर को धीरे धीरे शेप करने का वक्त मिलता है। और आज दौलतराम कॉलेज से इसी यंग एनर्जी को हम और करीब से जान रहे हैं। थैंक यू टू यू माला। तो चलिए एक बार फिर रुख करते हैं माला की तरफ और देखते हैं अब वो हमें कैंपस के किस नई कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाती हैं। बताइए जरा।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ दौलतराम कॉलेज में और मेरे साथ है दौलतराम कॉलेज की वेरियस सोसाइटी की बहुत सारी स्टूडेंट्स। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल की लड़कियां सबसे ज्यादा किन बातों को लेकर कंफ्यूज हैं।
2: मेरा नाम ईहा गौतम, आई एम अ थर्ड ईयर फ्रॉम साइकोलॉजी ऑनर्स एंड आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन म्यूजिक सोसाइटी अलैया। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कंफ्यूज जिन चीजों को लेकर रहते हैं गर्ल्स, आई थिंक नाउ इन टुडेज टाइम सबसे पहले तो आवर प्रायोरिटीज आर आवर करियर्स एंड हाउ टू सेटल डाउन इनटू दैट एंड जस्ट ऑल्सो फिगरिंग आउट आवर ओन पर्सनैलिटीज एंड आवर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल ट्रेट्स ऑफ आवरसेल्व्स एज वी बिकम यू नो अडल्ट्स। तो वो अडल्टिंग का पार्ट है। आई थिंक अडल्टिंग इज अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन एंड अ वेरी ह्यूज I would say something that we want to look into. So, बहुत concerned रहता है वो हमारी age की girls का। Yeah, I would say that.
7: Okay. So, hi, I am Divyanshi. I am from second year from economics department, and I am the management head of Spectra, the fine arts society. I feel like career को ही लेके mostly confused हैं कि क्या करना है, and it's just like सब लोग अपना figure out कर रहे हैं कि who they are actually and what they want to become. So it's just like that.
1: Okay.
8: Hello, I'm Ishita and I'm the president of Spectra, the Fine Arts Society, and I'm from psychology third year, and I believe recently career ko leke to hai hi tension, but saath mein safety ko leke bhi thodi tension rehti hai ki kahan pe hum safe reh sakte hain, kahin settle down hona hai hame, kahin naya ghar lena hai, to wo dekhna padta hai ki aapko kahan pe safety mehsoos hogi aur kahan pe aapke facilities bhi bahut near honge.
9: Okay, so hello, I'm Shreya and I'm from political science honors. I'm in third year and I'm the co-president of Spectra, the Fine Arts Society of Dolat Ram College. I guess abhi itna changing world chal

0: रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब। आई एम हैप्पी टू से दैट लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें जो पहले अवेलेबल नहीं थी अब मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लड़कियाँ थी जो पहले जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी। मैं भी एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ एंड आई नो द कंडीशन ऑफ वुमेन देयर। दे आर नॉट अलाउड टू स्टडी फर्दर, दे आर नॉट अलाउड टू परस्यू मास्टर्स, दे आर सेट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 20। सो आई एम फॉर मी कि लड़कियों के लिए बहुत वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर एंड हाउ टू सेटल फॉर समथिंग एंड हाउ टू गेट समथिंग ऑफ देयर वेरी ओन। लड़कियों के लिए बहुत इशू होता है कि क्या मेरा खुद का है। आई फील वो उनकी खुद की बिलोंगिंगनेस किसी चीज़ की होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लड़कियाँ आजकल, मेरे को लगता है, एवरी वन इज़ वेरी डिटरमाइंड टू गेट समथिंग ऑफ देयर वेरी ओन, जिसको वो कह सके कि ये सिर्फ मेरा है, इस पे ना मेरे घर वालों का हक है, ना मेरे, अगर मेरी कल शादी हो जाती है तो मेरे इन लॉज का हक है, मेरे हस्बैंड का हक है, इट इज़ ऑफ मी।
1: आपसे जानना चाहेंगे, जैसे श्रेया ने कहा कि वो बहुत छोटे शहर से हैं, तो इसलिए वहाँ पर इश्यूज वो हैं जो वाकई बड़े हैं। शहर की लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें कहा जाता है, वो तो इस बात पे ही कंफ्यूज हो जाती हैं कि आज पीला पहनूं या नीला पहनूं।
2: आई एम रितु फ्रॉम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड अ मेंबर ऑफ फाइन आर्ट सोसाइटी स्पेक्ट्रा। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मेरे सीनियर्स ने कहा कि एरिया का इशू पड़ता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। बट आई थिंक इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो हैव योर ओन ओपिनियन कि आपको क्या चाहिए या क्या आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज में, ताकि कोई आपकी वॉइस को दबा ना सके। तो आई थिंक इट्स इवन इफ समवन मेक फन ऑफ यू, यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम्हें क्या चाहिए। किसी की बोलने से अपना ओपिनियन मत चेंज करो। आई थिंक दैट्स अ स्टीरियोटाइप कि गर्ल्स को सिर्फ ये डाउट है कि आज पीला पहने या नीला। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। जैसे गर्ल्स को ये भी डाउट है कि आगे करियर में क्या करना है, ये जॉब करनी चाहिए या ये, इस सिटी में जाना चाहिए या, बहुत सारे डाउट्स हैं जो लोगों को शायद स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि गर्ल्स को सिर्फ मेकअप करना है या क्लोथिंग का, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल फीमेल्स भी काफी आगे बढ़ रही है हर चीज में, तो आई थिंक ये एक रॉन्ग स्टीरियोटाइप है।
1: ओके,
3: हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति एंड आई एम करेंटली इन माय थर्ड ईयर परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स हियर एंड आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन म्यूजिक सोसाइटी अलहिया। सो एज यू सेड कि छोटे शहर से आने वाली लड़कियों के पेरेंट्स को भी, उनको भी खुद से वो डाउट होता है कि क्या वो बड़े शहर में जाके टिक सकती हैं, क्या वो कितना डिफिकल्ट होगा, इज इट गोइंग टू बी स्ट्रगलिंग और नॉट। सो कमिंग फ्रॉम, आई कम फ्रॉम अ टीयर टू सिटी, ऑल्दो मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस नहीं की थी, माई पेरेंट्स आर प्रीटी प्रोग्रेसिव, दे अंडरस्टैंड, बट मैंने वो सोसाइटी देखी है समवॉट, जहाँ पे लोग क्वेश्चन अभी भी मेरे पेरेंट्स को कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपने दिल्ली क्यों छोड़ा, मतलब यहाँ पे भी तो कोर्सेस हैं, मतलब दिल्ली ही क्यों। बट स्टेइंग हियर सिंस द लास्ट टू इयर्स, आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज सर्टेनली हेल्प्ड मी डेवलपिंग माई ओन पर्सनैलिटी और बींग इंडिपेंडेंट ऑन माई ओन। लाइक आई हैव द ट्रस्ट कि अभी अगर मुझे कहीं भी छोड़ दिया जाए तो आई वुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन माई ओन।
4: Hi, my name is Pavni Srivastav. I am pursuing BA Honours Economics and I'm in the first year. I'm a member of Spectra, the Fine Arts Society. Personally, मैं मेरी खुद की बात करूँ, which I think would represent a lot of us too. So, एकदम ही secure family environment से एकदम अकेले Delhi में shift होना, figuring out things on your own, जो तुम पहले अपनी family के साथ या किसी adult के साथ करते थे. So that is a very big thing, basically a part of adulting only.
5: Hello, my name is Ritika. I'm from Political Science Department. I'm the modeling head of Debonair, the fastest society of DRC.
4: Yeah, it takes a lot of you, a part of you, to figure out everything on your own suddenly.
6: Hello everyone, I'm Ritika. I'm the PR head of Debonair. I'm from BCom Honours in second year. I think we girls are confused about careers and our life choices. So I think if as a girl, if I am also going out and studying or even doing a job or anything, going out from my parents' house, it already becomes like a responsibility on us to be successful and go back home. Because if we are not successful, a lot of parents say to their girls, their childs, that you have to be successful by this age. If you are not earning, you'll get married. Or you won't clear this exams, you'll get married. So we have that confusion and we also have that pressure. Due to that pressure, we are so confused that which career should we choose and what are we supposed to do so that we excel in it.
1: थैंक यू सो मच इस लवली इंटरेक्शन के लिए, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, थैंक यू।
7: सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें करी हैं, कई बार तो ऐसा भी लगा कि शायद मैं भी इनकी बातों से कुछ सीख लूं। दोस्तों, अल्फा जेन में आज दौलतराम कॉलेज के सफर में हमने कैंपस की एनर्जी को महसूस किया, अलग अलग यंग वॉइसेस से रूबरू हुए और कॉलेज लाइफ के कई रंग हमें यहाँ दिखे। और किसी भी इंस्टीट्यूशन की कहानी उसकी लीडरशिप के नजरिए के बिना तो अधूरी सी लगती है ना। तो चलिए इस कैंपस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से चलते हैं माला के पास। ओवर टू यू।
1: CUET के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी वेलकम कर रही है पूरे भारत के स्टूडेंट्स को।

0: गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करते हुए उन्हें समाज का एक बेहतर हिस्सा बनाने के लिए दौलतराम कॉलेज की स्थापना हुई। और आज अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के दौलतराम कॉलेज में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार। नमस्कार।
0: आपको क्या लगता है आज के समय में लड़कियों को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनलर्न करने की जरूरत है?
1: इट इज ए एरा वेयर देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बट दे नीड टू फिल्टर आउट व्हाट इज द करेक्ट, दैट इज द नॉलेज हैज टू बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल इन द सोशल मीडिया ऑल ओवर, एंड दे नीड टू यू नो डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम, एंड डिसाइड व्हाट दे डू इज दे डिसाइड फॉर themselves. What they need to learn is they have to decide not only for themselves, their own family, for their country, because they are the ones who are going to take it forward.
0: जी,
1: the country.
0: जी. अब हम अगर बात कर रहे हैं, आप दौलतराम कॉलेज को हेड कर रहे हैं, बीइंग मदर आपके लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, और मदर की खासियत भी होती है कि वो अपने हर बच्चे पर इक्वल ध्यान देती हैं, चाहे उनके पास कितना भी समय कम क्यों ना हो। अगर हम बात करें सुविधाओं को लेकर, क्योंकि माँ तो ये चाहती है कि बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाएं, बच्चे बोले ना पहले मिल जाएं, लेकिन लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर आपको किसी अच्छे मोमेंट ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अनलिमिटेड फंड्स आपको अलॉट हो जाएं, तो आप कॉलेज में क्या क्या करवाएंगे?
1: देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा एकेडमिक ब्लॉक बनाया है, कम से कम ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है 10-12 और क्लासरूम्स बन जाए।
0: ओके।
1: मेरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, उसके लिए थोड़ी सी और स्पेस बन जाए।
0: ओके।
1: अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं, बच्चों के लिए एक बड़ा सा अच्छा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए। कॉम्प्लेक्स है मेरे पास लेकिन थोड़ा छोटा है, कंसिडरिंग 5,500 बच्चे हैं, अगर उनको जिम की फैसिलिटी भी चाहिए तो जिम है मेरे पास, लेकिन मैं जिम थोड़ा बढ़ाना चाहूंगी। अभी जिम में मुश्किल से 20-25 बच्चे आ जाते हैं, और हॉस्टल के तो बच्चों को मैं शाम को परमिट करती हूँ, वो भी परमिटेड हैं। अब अभी फैकल्टी की भी डिमांड है कि भाई हमें भी परमिट कीजिए, क्योंकि वो भी पूरे दिन कॉलेज में रहते हैं तो उनके लिए भी चाहिए। तो मैं एक तो अच्छा सा स्पेस बनवाऊंगी जिसमें जिम आ जाए, बैडमिंटन इंडोर हमारी अच्छी प्लेयर्स आए हुए वो कुछ स्टार्ट हो जाए, शूटिंग रेंज बनवाना चाहती हूँ जिसके लिए मेरे पास परमिशन भी है अभी।
0: जी।
1: तो स्पोर्ट्स में बढ़ाऊंगी, बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स का एरिया मेरे को बढ़ाना है, और साथ बढ़ाऊंगी हॉस्टल जिसका प्रोविजनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग मेरे पास 213 का कैपेसिटी है।
0: जी।
1: मेरे पास 50 का ऐड करने का अप्रूवल NDMC से है, जो कि हम वी आर गोइंग अहेड, लेकिन थोड़ा सा ये भी है सोच रही हूँ कि जितनी बच्चियों को रख सके।
0: जी।
1: तो हम 300 सीटर हॉस्टल एक बार और अभी प्लान करें, प्रपोजल बना रहे, वो हम अभी सबमिट भी करेंगे, तो एक हॉस्टल बनाऊंगी। और इन सब चीजों के साथ मैं चाहूंगी कि कैंपस में बच्चों को वॉशरूम के अंदर वो भी थोड़ा अभी प्रोवाइड करती हूँ कि उनके टिश्यू पेपर्स हो, सोप हो, डिस्पेंसर हो, इंसिनरेटर मशीन, वेंडिंग मशीन तो मेरे पास सब कुछ है
0: जी।
1: लेकिन थोड़ी सी बेटर क्वालिटी कर दूं, थोड़े ज्यादा कर दूं।
0: ओके।
1: ताकि मतलब कमी ना हो स्टूडेंट्स को
0: जी।
1: और उसके लिए मैं काफी NGOs को भी लेकर के आ रही हूँ कॉलेज में, करवा रही हूँ
0: जी। मैम हमारे जो बच्चे हैं वो जब उनको कोई परेशानी होती है तो वो माँ बाप के पास ही आते हैं शिकायत लेकर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि दौलतराम कॉलेज के स्टूडेंट्स ने शिकायत की जो कॉलेज को लेकर, कॉलेज प्रशासन को लेकर, वो बिल्कुल सही शिकायतें करी, फेयरली क्रिटिसाइज किया, और जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये तो हम करते हैं, हम तो ऐसा और करते और करेंगे, हमेशा करेंगे।
1: ये दौलतराम कॉलेज कैंपस में है, नॉर्थ कैंपस में, एंड इट इज मोर ऑफ ए मतलब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ तो स्कूल की तरह क्लासेस होती है
0: जी।
1: तो बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम भी चाहिए होती है, स्कूल से कॉलेज में आए हैं तो कॉलेज लाइक फीलिंग होनी चाहिए
0: जी।
1: तो क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है और कोर्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो क्लासेस यहाँ पे मैं भी काफी सिंसियरली राउंड लेती हूँ, और टीचर्स को भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि पूरी सिंसियरली पढ़ाएं। तो टीचर्स भी बच्चों को नहीं छोड़ती हैं, अनलेस वो बच्चे कॉम्पनसेटरी क्लास उनको दे दें, या तो इस तरह से क्लास यहाँ बहुत टाइट रेगुलर होती है, तो इसके लिए वी आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, एंड आई डोंट माइंड बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट, बिकॉज आवर एम इज टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वी गिव देम इनफ फैसिलिटीज फॉर देयर एक्स्ट्रा करिकुलर activities, and we have they have enough opportunity to showcase their talent. बहुत सारे events होते हैं जो कि college में आते हैं मेरे पास proposals, मैं इनको देती भी हूँ participate करने के लिए, and students are participating. बच्चों को national क्या international recognitions भी मिलती हैं, sports में भी है, हमारे पास 3 Arjuna awardees हैं sports के अंदर, और

0: काफी सारे हमारे पास इंटरनेशनल स्टेजेस पे डांस और म्यूजिक परफॉर्मेंस करने वाले भी बच्चियां गई हुई हैं। फिर हमारे पास पेंटिंग के लिए अभी इस बार इशिता तोड़ी जो है हमारे कॉलेज से, शी विल बी रिसीविंग एन अवार्ड इन मॉस्को एंड शी इज गोइंग टू मॉस्को टू रिसीव दैट अवार्ड।
1: वाओ,
0: तो स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड।
2: आप इसी तरह स्टूडेंट्स को एनकरेज करते रहें, स्टूडेंट्स इसी तरह से हर दिन

0: हिस्सा बनने के लिए.
1: थैंक यू सो मच माला. दोस्तों ये थी मेरी फेलो कलीग आरजे माला नेगी, जो आज हमें दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से वहाँ की एनर्जी, यंग वॉइसेस और कॉलेज लाइफ के अलग अलग रंगों से रूबरू करवा रही थी. माला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दौलत राम कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने अल्फा जेन के साथ अपनी बातें शेयर करी. और अब कैंपस की इस वंडरफुल एनर्जी को म्यूजिक के साथ आगे बढ़ाते हैं. सुनिए ये जबरदस्त गाना आकाशवाणी FM रेनबो पर. मैं हूं ज्योतिका.

और दोस्तों इसी के साथ आज के अल्फा जेन का सफर यहीं खत्म होता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से जुड़ी ये कॉन्वर्सेशंस, कैंपस की एनर्जी और यंग वॉइसेस आप तक लेकर आना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि कॉलेज और करियर का ये जो दौर है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन कभी कभी प्रेशर से भरा भी हो सकता है। ऐसे में पेरेंट्स का थोड़ा सा पेशेंस, उनका सपोर्ट और बिना जज किए अपने बच्चों की बात सुनना बहुत मायने रखता है। कभी कभी सोल्यूशन से पहले सिर्फ किसी का सुन लेना ही काफी होता है। इसी खूबसूरत थॉट के साथ मैं हूं ज्योतिका, अब आपसे लेती हूं इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड नमस्कार।

पेशे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक

मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री लियोनापो डीएन दुंगियल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसेना टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। सऊदी अरब ने कहा है उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये तो थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

दिन भर थकान के बाद जब थमती है शहर की रफ्तार, चमकती हुई ये लाइटें करती हैं आपका इस्तकबाल। सुरों के सफर में बहने को हो जाएं अब तैयार, सिटी लाइट्स लेकर आ गया है आपका दोस्त आकाशवाणी एफएम रेनबो पर वीर धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? और उम्मीद करता हूं कि मौज में होंगे, मस्ती में होंगे और हमारे साथ दिल से दिल तक जुड़े होंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। दिल्ली की तमाम जो जानकारियां लेकर आपके साथ मैं रहूंगा और आप ही रहिएगा हमारे साथ दिल से दिल तक।

0: ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
1: इस बुधवार शाम 5:45 से 6 बजे तक और जानिए SOL के कोर्सेज और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन। और मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर 2026 यानी कि कल दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर इवेंट सेमीकॉन इंडिया 2026 शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इस 3 दिवसीय वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कल होने वाले मुख्य इवेंट की जो पूरी जानकारी है वो हम आपको बता दें कि ये 17 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक चलेगा और हॉल नंबर 1 और कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि द्वारका में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसका जो समय है वो है प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक ये शाम के खुले रहेगा। उद्घाटन कल सुबह उद्घाटन सत्र के पास जो है पास होल्डर्स को ये रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मिलेंगे, जिनके पास ये पास होल्डर हैं पास हैं उन्हीं को ये रजिस्ट्रेशन डेस्क पर आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसकी आज की जो इस बारे की जो थीम है वो है सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम। और इवेंट में शामिल होने के लिए सेमीकॉन इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। और कल के इवेंट में क्या खास होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। कल जो है इस इवेंट में इस प्रदर्शनी में 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शनकारी होंगे, मतलब कि इसमें प्रदर्शक होंगे एग्जीबिटर होंगे और 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स पे इस बार ज़्यादा फोकस रहेगा। इस बार का मुख्य फोकस जो है युवाओं और स्टार्टअप्स पर है और कल से यहाँ वर्कफोर्स डेवलपमेंट पेविलियन की शुरुआत होगी जहाँ छात्रों को मेंटरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही कंपनियों द्वारा फंडेड हैकाथॉन भी आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं का जो है नेतृत्व पर विशेष सत्र रहेगा। कल के सत्रों में इंजीनियरिंग द फ्यूचर वुमन शेपिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम नाम से एक विशेष पैनल डिस्कशन भी शामिल है जिसमें टेक इंडस्ट्री की शीर्ष महिलाओं की लीडर्स हिस्सा लेंगी। और आप यहां पर पहुंच कैसे सकते हैं, एयरपोर्ट जो एक्सप्रेस मेट्रो लाइन है वो आप लेकर वहां पहुंच सकते हैं। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन सीधे इस वेन्यू के गेट के साथ जुड़ा हुआ है तो आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को जो है उसको उसमें फॉलो करके और वहां पहुंच सकते हैं। और जो उसका सेक्टर 25 का जो मेट्रो स्टेशन है उसका जो है

जो मेन गेट है वो सीधा वेन्यू के गेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप जाइए और इसको ज़रूर अटेंड कीजिए, यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेंगी और कई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। और फिलहाल आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पे ले चलते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें ट्रैफिक अपडेट्स दे सकते हैं। ट्रैफिक अपडेट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना इतना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ का आप ट्रैफिक अपडेट हम तक पहुँचा सकते हैं, ट्रैफिक स्मूथ है, तो भी आप हमारे साथ वो जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं तो वो भी जानकारी आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर मिंटो ब्रिज के पास ट्रैफिक सिग्नल का एक खंभा गिरने की वजह से वहां पर यातायात प्रभावित हुआ है। और अरुण जेटली स्टेडियम और एम जी रोड के पास आयोजन और प्रदर्शनों के कारण ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। और आपको और तमाम जानकारियां हम देते रहते हैं, और आपको और भी जानकारियां हम देंगे ट्रैफिक अपडेट्स की और वेदर अपडेट्स की। तो सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और आपको बता दें कि दिल्ली में आज कुछ प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्य, सड़क मरम्मत और पुराने रूट बंद होने के कारण यातायात प्रभावित है। और हाल ही में कुछ ब्रिक्स सम्मेलन और क्रिकेट मैचों की पाबंदियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, वहां जो यातायात है वो सामान्य है। और नेशनल हाईवे पर जैतपुर से सराय काले खां आश्रम की ओर जाने वाला जो हिस्सा है वो स्थायी रूप से बंद है। और हाउस खास यू टर्न के पास दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सड़क मरम्मत कार्य के कारण एम्स से आईआईटी की ओर जाने वाली रिजवे पर यातायात बिल्कुल धीमा है। और मुनिरका से आईआईटी की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के खराब होने की वजह से वहाँ पर जाम की समस्या है, तो ट्रैफिक थोड़ा धीमा है और इस वजह से आप उस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ अवॉइड कर चलें। और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और मैं अगली जानकारी आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है मीडिया एक्सपो न्यू दिल्ली। जी हां, 2026 प्रिंटिंग ग्राफिक्स और साइनेज समाधानों पर आधारित यह B2B व्यापार मेला 16 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक हॉल नंबर 4GF और 5GF में आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम में। तो आप जा सकते हैं और इसे अटेंड कर सकते हैं अगर प्रिंटिंग ग्राफिक और साइनेज में आप इंटरेस्ट रखते हैं। और टूल एंड इक्विपमेंट एक्सपो 2026 विभिन्न औद्योगिक उपकरणों टूल्स की प्रदर्शनी 16 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक हॉल नंबर 1GF यानी कि ग्राउंड फ्लोर, सेकंड ग्राउंड फ्लोर और थर्ड ग्राउंड फ्लोर में चल रही है भारत मंडपम में। इसे भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर दिलचस्पी रखते हैं इक्विपमेंट्स में और टूल्स में जो कि उद्योगों में यूज़ किए जाते हैं। और 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 जल संसाधनों प्रबंधन और जलवायु लचीलेपन पर वैश्विक चर्चा के लिए यह गामी बड़ा आयोजन 22 सितंबर से 26 सितंबर तक भारत मंडपम में होगा। तो ये सब तमाम जानकारियां हैं, इवेंट्स हैं जहां आप जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और भी कई जानकारियां हम आपके साथ अभी साझा करेंगे। प्रोग्राम सिटी लाइट्स में जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं हमारे नंबर वही 9868107070 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप तमाम जानकारियां दे सकते हैं कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और अगर आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस से निकले हैं, घर के लिए जा रहे हैं या कहीं और घूमने जा रहे हैं और ट्रैफिक वहां पर बिल्कुल स्मूथ है, तो वो भी आप बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो भी बता सकते हैं, और अगर आप ट्रैफिक में हैं भी तो भाई घबराने की बात नहीं है, हम आपको पूरा एंटरटेन करेंगे। स्मूथली आप चलाइए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि सेफली चलाना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक हमें जानकारी भेजी है राजीव जी ने, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं गुरुग्राम से दिल्ली के लिए। कह रहे हैं MG रोड गुरुग्राम से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, अंधेरिया मोड़ के पास बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। जाम लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और जानकारियाँ आपको देंगे। और साथ ही साथ बढ़िया म्यूज़िक जो सुना रहे हैं, अगला ट्रैक जो लेके आया हूँ वो भी बड़ा कमाल का है, इंजॉय कीजिए हमारे साथ दिल से दिल तक।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों, अगली जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो है एडमिशन से रिलेटेड। जी हाँ, दिल्ली में कॉलेज और एडमिशन से जुड़ी कुछ तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आईपी यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर सीधे दाखिले हो सकते हैं। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में काउंसलिंग के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए दिल्ली सरकार ने अंतरिम नीति लागू कर दी है, जिसके तहत सीईटी और CUET मेरिट के आधार पर कॉलेज सीधे दाखिला दे सकते हैं। इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप पूरी डिटेल्स और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद सीधा PhD। जी हाँ, DU ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन पूरा करने वाले छात्रों को सीधे PhD प्रोग्राम में दाखिला देने का अवसर दिया है। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है और वहाँ पर उसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं वहाँ से। और DU के NC वेब और विभिन्न कॉलेजों में दाखिले के लिए विशेष अभियान, स्पेशल ड्राइव्स और स्पॉट राउंड चलाए गए हैं। कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में अभी भी स्नातक की कुछ सीटें खाली हैं, जिन पर छात्रों को ये मौका मिल रहा है। तो जो भी अभी छात्र हैं जिनके अभी कहीं एडमिशन नहीं हुए हैं या वो सोच रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो NC वेब की जो खाली सीटें हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये मौका आपको मिल रहा है, तो इन मौके को छूकिए मत और बस एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, जहां आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ भेज सकते हैं कि इस वक्त अगर वहां का ट्रैफिक कैसा है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं या फिर ट्रैफिक स्मूथ है, तो तमाम जानकारियां हम शेयर करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर चल रहा है सिटी लाइट्स।

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में हम अब आपको वेदर अपडेट दे सकते हैं। हाँ, वेदर अपडेट, आज का मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत औसम है क्योंकि इस समय हम स्टूडियो में बैठे हैं और स्टूडियो में तो वैसे भी मौसम बहुत बढ़िया होता है ना। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर का जो तापमान है वो कितना है और कैसा है, उसकी मैं आपको तमाम जानकारियाँ अभी इस प्रोग्राम में देने वाला हूँ। और अधिकतम तापमान जो आज है वो 35 डिग्री है और न्यूनतम 25 डिग्री के आसपास है। और वर्तमान स्थिति में धूप और तापमान 34 डिग्री के आसपास महसूस होने वाला तापमान है और ह्यूमिडिटी तकरीबन 55 जो है परसेंटेज है और 61 है। और जो रात का अनुमान है कि कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और ट्रैफिक अपडेट अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक अपडेट इस वक्त जो है, ट्रैफिक जो है कई जगह पे ट्रैफिक जाम है और कई जगह बिल्कुल ट्रैफिक स्मूथ है। तो अगर आप पटेल नगर से शंकर रोड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक स्लो है, और अगर आप न्यू रोहतक रोड है लिबर्टी सिनेमा के पास तो वहाँ पर

ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। और अगर आप न्यू रोहतक रोड से पहाड़गंज की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है फैज़ रोड के आसपास। और अगर आप जा रहे हैं मंदिर मार्ग से कनॉट प्लेस की तरफ तो वहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। और यही अगर आप नारायणा की तरफ जा रहे हैं, नारायणा से रमेश नगर की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ मिलेगा आपको। कीर्ति नगर के पास थोड़ा हल्का ट्रैफिक आपको देखने को मिल सकता है रमेश नगर से कीर्ति नगर, वहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ है। और मायापुरी की तरफ ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है अगर आप मायापुरी की तरफ जा रहे हैं नारायणा से, और या फिर राजौरी गार्डन से, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है। और अगर आप यहीं आ जाते हैं चाणक्यपुरी के पास, तो चाणक्यपुरी में आपको ट्रैफिक स्लो देखने को मिलेगा। चाणक्यपुरी से अगर आप इंडिया गेट की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर हल्का जाम मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक चाणक्यपुरी के पास थोड़ा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल सकता है। और नेशनल रेल म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो नेशनल रेल म्यूज़ियम के पास आपको ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। इंडिया गेट के आसपास भी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन तिलक मार्ग के पास आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स।

दोस्तों, अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जी हाँ, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। और अब वीर दमन को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। बाय।

0: नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र।
1: और मैं हूं विद्या।
0: और हम स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के आज के इस कार्यक्रम में,
1: जिसमें होगी युवाओं की एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा।
0: आज का युवा अपनी एजुकेशन को लेकर बेहद सजग है, और ऐसे में जब उसकी स्कूल एजुकेशन पूरी होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आती है, तो उस एक

0: डिसीजन पर किसी भी युवा का पूरा भविष्य निर्भर करता है।
1: एजुकेशन से जुड़े इस चुनाव में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अहम भूमिका है।
0: तो विद्या, हमें बताइए ना, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम अपने उन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या खास लेकर के आए हैं जो नौकरी कर रहे हैं और रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते। पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन रेगुलर कॉलेज जाकर के जब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में वो किस चीज का चुनाव कर सकते हैं, वो अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या इस विषय में आज आप कोई जानकारी देने वाली हैं?
1: जी हाँ कुशाग्र, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा ये कार्यक्रम उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो नौकरी या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी फॉर्मल एजुकेशन को अपडेट करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन नौकरी या बिजनेस के साथ वो रेगुलर कॉलेज के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं।
0: इसलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग और डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो मैम का।
1: मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
0: पायल मैम, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग किस प्रकार आज एजुकेशन सिस्टम और युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने में योगदान दे रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
2: जो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसको अब हम CDOE बोल रहे हैं, इसमें करीब 19 प्रोग्राम्स हैं और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग शुरू हुआ 1962 में, हम मोर देन 63 ईयर्स पूरे कर चुके हैं। पहला है ऐसा इंस्टीट्यूट जो कॉरेस्पॉन्डेंस से या डिस्टेंस से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अहम पार्ट है कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स को किसी भी रीजन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर में पढ़ने का मौका नहीं मिला या वो अपना कुछ और करना चाहते हैं, वो रेगुलर पूरा जाकर प्रोग्राम अपना डिग्री नहीं करना चाहते, उनके लिए कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलने वाले ही प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को कुछ अपना और काम करना है, कुछ और तैयारी करनी है, कोई साथ साथ बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग एक इसलिए अच्छा ऑप्शन है कि एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा करिकुलम पढ़ने को, एग्जामिनेशन और डिग्री पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलेगा, इसके साथ साथ ही उनको अपना कुछ करने के लिए कोई और स्किल अर्न करनी है, कोई स्किल सीखनी है या कोई बिजनेस सेटअप करना है या CA करना है, CS करना है, वो उसके लिए उनको काफी टाइम मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको वीक में एक या दो दिन आकर पढ़ाई करनी होती है और उसके बाद एग्जाम्स देने होते हैं।
0: अच्छा मैम, क्या SOL के कोर्सेज बाकी रेगुलर कोर्सेज जैसे ही हैं या उससे कुछ अलग है?
2: नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कॉलेज के कोर्सेज हैं उनका करिकुलम और SOL के जितने भी कोर्सेज हैं उनका करिकुलम बिल्कुल सेम है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बीकॉम का, बीकॉम ऑनर्स का, BA प्रोग्राम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, MBA का, लाइब्रेरी साइंस का, MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट का, कंप्यूटर साइंस का, ये जितने भी सारे कोर्सेज हैं इनका सेम करिकुलम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एग्जामिनेशन सेम डेज पे होता है, सेम एग्जाम होता है, डिग्री इनकी सेम है, डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है और जो मेरिट बनती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरिट बनती है वो भी रेगुलर की और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बिल्कुल सेम मेरिट होती है और इस मेरिट के आधार पर पिछले साल जो हमारा रिजल्ट आया उसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 6 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के टॉपर्स बने।
0: मैम बहुत सारी उपयोगी जानकारी दे दी है आपने, तो मैम एक थोड़ी सी जानकारी मुझे और भी दे दीजिए कि क्या PG कोर्सेज में भी कुछ ऑप्शंस और हैं और वैसे क्या क्या ऑप्शंस हैं, जरा इस पर थोड़ा खुल के बताइए हमें।
2: PG कोर्सेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास रेगुलर PG कोर्सेज जो हैं वो MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत के अलावा MBA, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये सारे कोर्सेज हैं और MBA के 2 कोर्सेज इस बार हमारे पास हैं। MBA जो FMS का कोर्स है उसका पूरा करिकुलम हम यहाँ पर पढ़ाते हैं और इसके अलावा MBA हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला जो कोर्स है हेल्थ केयर मैनेजमेंट का, वो कोर्स भी इस साल से शुरू हुआ है।
0: वाओ, MBA के ये कोर्सेज तो बहुत ही उपयोगी हैं, न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में बल्कि हेल्थ केयर की दुनिया में भी, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, हर जगह हेल्थ केयर में MBA किए हुए लोगों की डिमांड अच्छी खासी है, तो मेरे ख्याल से तो ये कोर्सेज बच्चों को बहुत ही काम आएंगे करेंगे और उनको एक बहुत ही सुनहरा भविष्य देंगे।
2: अभी जो एक नया कोर्स आया है हमारे पास MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट जो 50% है जिसके मार्क्स, वो MBA हेल्थ केयर में कर सकता है और हॉस्पिटल के फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। इसके साथ में हमने

चीज़ें और भी की है कि मेडिकल टूरिज्म की फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप साथ साथ एक अरेबियन का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, एक पर्शियन का कर सकते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से हमारे पास बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म में पेशेंट्स आते हैं, उनको लैंग्वेज इश्यूज होते हैं। आपने एक तरफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स कर लिया और दूसरी तरफ आपकी वो लैंग्वेजेस हैं जिससे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो

0: प्रिस्क्रिप्शन का कोर्स उसके लिए रखा है, जिसमें जितने मेडिकल टर्म्स हैं वो उसको समझ में आ जाते हैं, और वो समझ में आके उसको किस डॉक्टर की ज़रूरत है, कहाँ पर उसको जाना है, कौन से विंग में जाना है, किस तरह के टेस्ट कराने हैं, उन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो उस रिपोर्ट को भी इंटरप्रेट कर सकता है, और उसका पूरा एक हाथ बन सकता है उस पेशेंट का, जिसको ना लैंग्वेज आती है ना उसको मेडिकल फील्ड की नॉलेज है, लेकिन वो यहाँ इलाज कराने के लिए आया है, तो उसके लिए पूरा उसका सहयोगी बन सकता है और उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इस तरह के कोर्सेज भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में है।
1: पाल मैम, आपने वाकई बहुत सारी जानकारी दे दी है, और अक्सर मुझसे लोग इस विषय में पूछा भी करते थे, तो आज मेरे पास सारे सवालों के जवाब है।
0: थैंक यू।
2: क्या हुआ मोहित, बहुत परेशान लग रहे हो?
3: पापा चाहते हैं कि मैं सीए बनूं और मम्मी चाहती है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूं। इतना टाइम कहाँ है?
2: दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन कर लो और सीए की कोचिंग ले लो।
4: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
5: वेलकम बैक टू द शो। और आज हमारे साथ कुशाग जानना चाहोगे और कौन है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से?
1: बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा और ढेर सारी जानकारी भी लेना चाहूंगा।
5: और अब हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि SOL के कोर्सेज में स्टूडेंट्स एडमिशन कैसे ले सकते हैं?
6: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है, और इसमें बच्चों को SOL की वेबसाइट पे जाना है, और अगर वो UG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो UG एडमिशन पे क्लिक करें, अगर PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो PG एडमिशन पोर्टल पे जाएं और अपने निर्धारित फॉर्म्स जो हैं जो वहाँ पर हैं वो भरें, और उससे जो है हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। यूजी में हमारा जो एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन है, बच्चे अपना फॉर्म भरें, अपने एकेडमिक और पर्सनल डिटेल्स भरें और अपनी फीस भरें, और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स का एक बार वेरिफिकेशन होता है, अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है उस कोर्स में। लेकिन PG के कोर्सेज में क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड है तो उसमें फर्स्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होता है, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन उनकी मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद जो है उनका एडमिशन कंफर्म होता है। और PG में भी हम अब इस बार जो है हमारे पास 2-year PG प्रोग्राम है, और जिन बच्चों ने 4-year UG डिग्री कंप्लीट करी है उनके लिए 1-year PG प्रोग्राम भी है। 1-year PG प्रोग्राम में एडमिशन मेरिट से है, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, बट 2-year PG प्रोग्राम्स में बच्चों को रजिस्टर करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है, और उसमें हमारे पास दो कैटेगरी हैं एडमिशन के लिए। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने CUET में अपीयर हुए हैं, और वो बच्चे जो CUET में अपीयर नहीं हुए हैं। तो जो CUET में अपीयर हुए हैं उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद जो सीटें खाली बच जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, वो सीटें मेरिट बेसिस पे भरी जाती हैं। ये एक बहुत साधारण सा हमारा एडमिशन प्रोसेस है और पूरा ऑनलाइन।
5: अजय सर, न्यू स्टूडेंट्स जो SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
6: नहीं, स्टूडेंट्स जो हमारे में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक तो सबसे अच्छा इसका SOL का फायदा है जो DU में पढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उन्हें साथ साथ कुछ करना है, या कभी ये भी हो सकता है कि रेगुलर कॉलेज में जो कोर्स चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो उनके लिए एक SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो बच्चे हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो SOL से अब फैमिलियर हैं और उन्हें पता है कि यहाँ पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे साथ साथ जो उन्हें और कुछ करने का मौका मिलता है वो शायद रेगुलर कॉलेज में नहीं मिल पाता क्योंकि अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है और अन्य चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे साथ साथ अपना कैरियर प्रोग्रेशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो बच्चे CA कर रहे होते हैं वो हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है।
5: अजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी को हम सभी से साझा करने के लिए और अपना कीमती समय हम सभी को देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अब स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे SOL में एडमिशन को लेकर।
6: थैंक यू।
1: तो पायल मैम और अजय सर दोनों ने ही बेहद ही उम्दा जानकारी दी है हमें SOL में एडमिशन लेने के लिए, और इसके अलावा जो जानकारी है, जो बहुत अहम जानकारी है, वो ये है कि अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर तक अपने पेपर्स पोर्टल पर जरूर जमा करा दीजिए, क्योंकि आखिरी तिथि तो 13 अक्टूबर है, लेकिन 5 अक्टूबर को जब आप अपने पेपर्स जमा कराएंगे तो उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद ही आपका एडमिशन क्लियर हो पाएगा। तो याद रखिए, अपने

0: पर 5 अक्टूबर तक आप जरूर जमा करा दें ताकि आपको एडमिशन मिल सके। अगर आपने वक्त पर पेपर जमा न कराए तो हो सकता है आपको एडमिशन मिल ही ना पाए, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। और अगर आपने ही टाइम नहीं दिया और आखिरी डेट का इंतजार किया तो आपको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 5 अक्टूबर की डेट याद रखिए। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? 13 अक्टूबर। लेकिन पेपर कब तक जमा कराने हैं? 5 अक्टूबर तक। बाकी जो जानकारी आपको चाहिए थी वो तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में मिली गई होगी। क्यों, क्या कहते हैं आप विद्या?
1: बिल्कुल कुशाग्र, मुझे नहीं लगता कि अब स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रह गया होगा। इतना अच्छा अजय सर और पायल मागू मैम ने हम सबको समझा दिया है।
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उस जानकारी को रिपीट कर देना चाहूंगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। SOL में अंडर ग्रेजुएट सेशन 2026-27 के लिए आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस के विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जिसमें बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीए प्रोग्राम, बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बीएमएस, बीएससी ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, एमबीए, बीलिब और एमलिब भी शामिल हैं। तो उम्मीद है आपको आपकी पसंद का कोर्स जरूर इसमें सुनाई दे गया होगा। इसके अलावा अगर आपने स्नातक की डिग्री ले ली है और आप अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्नातकोत्तर कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। एमए में हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, एमकॉम, एमबीए, एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमलिब और एमए संस्कृत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। पीजी कार्यक्रमों की अध्ययन अवधि न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम 4 वर्ष, जो कि सर आपको बता चुके हैं। तो ये तो थे वो कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इन कोर्सेज से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारा अगला कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। और हाँ, जो जानकारी हमने आपको इस एपिसोड में दी उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या संदेह आपके मन में है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: podcast.query@sol.oldcdu.ac.in।
1: हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि हमारी ईमेल आईडी है podcast.query@sol.oldcdu.ac.in।
0: तो हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्न अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करें।
1: और हमें आपके सवालों का जवाब देने में बेहद खुशी होगी। अपने अगले एपिसोड में हम आपको विस्तार से SOL के UG और PG प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो डीएन धुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत

और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के पदक का अनावरण किया। और मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं बताइए। कहते हैं वैसे तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। कोई कह दे वाह आज तो आप कमाल लग रहे हैं, तो दिल अंदर से कहता है ना और बोलो, थोड़ा और बोलो, मतलब फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। लेकिन फिर दिमाग जो है ना वो धीरे से पूछता है, एक मिनट, इतनी तारीफ क्यों हो रही है, कोई काम तो नहीं है कहीं। क्योंकि कुछ तारीफें ना सीधे दिल से निकलती हैं और कुछ तारीफों के पीछे छुपा होता है। वैसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तो आज मैसेज मसाला मिक्स में हमारा सवाल है आपसे कि आप कैसे पहचानते हैं कि सामने वाला दिल से तारीफ कर रहा है या मक्खन लगाकर अपना काम निकलवाने की तैयारी में है। और हाँ, अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने पहले आपकी तारीफों के पुल बांधे और फिर असली मुद्दे पर आया, तो वो किस्सा भी हमें ज़रूर बताइएगा। और ज़रूर बताइएगा कब किसी ने आपकी जो है सच में दिल से तारीफ की और वो तारीफ आपके दिल को छू गई। 9868107070 है नंबर, 9868107070 है नंबर मैसेज मसाला मिक्स में मैसेज करने के लिए। और भगवती है आपके साथ यहाँ पर जो इंतज़ार कर रही है आपके मैसेजेस का। तो फिर 9868107070 है नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए। मैसेज करते समय जो है अपना नाम और जहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं ना, जिस जगह से, उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा।

सौरभ अनुजा गाजियाबाद से कहते हैं वेलकम दोस्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और ये हैं हितेंद्र दास असम से कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू टू। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है, किन का है? अच्छा, एक तो ये मैसेज है, ये कह रहे हैं कि कौन है, इन्होंने जगह का नाम लिखा है क्या? पढ़ती हूँ मैसेज, देखते हैं अगर बीच में कहीं मिलता है। या सोनू बिजनौर से हैं, कह रहे हैं कि आपसे काफ़ी दिनों से नाराज़ हूँ, आज का सवाल जो आपने पूछा है। पहले तो ये बताइए कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, किस लिए हैं जी? कहते हैं कि मेरा यही मानना है कि झूठी तारीफ में थोड़ी तेज़ आवाज़ होती है, और दिल से तारीफ की हुई बातों में जो है वहाँ थोड़ा धैर्य और इमोशनल सी होती हैं वो बातें कहना चाह रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है, कई लोग बहुत मीठी आवाज़ में, बहुत प्यार से और बहुत धैर्य के साथ भी जो है तारीफ़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो है वो तारीफ़ सच्ची हो। सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू। और साथ में जो मैंने पूछा है उसका जवाब भी भेजिए हमें जल्दी से, कि आप कैसे पता लगाते हैं कि तारीफ़ जो है सच्ची है या झूठी है। और अगर जो है कोई आपकी तारीफ़ करता है तो या कभी कोई ऐसा कुछ हुआ हो, किसी ने आपकी तारीफ़ की हो और फिर बाद में जो है वो सिर्फ एक मतलब मक्खन लगाने का ज़रिया हो वो तारीफ़, तो उस तरह का जो किस्सा है कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो बताइए। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाज़ार अररिया बिहार से कहते हैं, जी हाँ, मैंने कई लोगों की तारीफ़ की है, सच्ची की थी कि झूठी की थी? कहते हैं मेरे लिए तारीफ़ तभी मायने रखती है जब वो दिल से हो और किसी की अच्छी बात मेहनत या हुनर को देखकर की जाए। बिल्कुल, जहाँ तक सामने वाले की तारीफ़ का सवाल है तो वक्त के साथ समझ आ जाता है कि तारीफ़ सच्ची है या सिर्फ अपना काम निकालने के लिए की जा रही है। सच्ची तारीफ़ में अपनापन और ईमानदारी होती है, जबकि मतलब की तारीफ़ में अक्सर कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है, जाहिर सी बात है ना। और हाँ, कभी कभी मीठी मीठी बातों के पीछे मक्खन भी होता है, लेकिन हर तारीफ़ को मक्खन समझ लेना भी जो है वो ठीक नहीं है, कह रहे हैं।

आंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से कह रही हैं कि आज के टॉपिक पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर देखा जाए तो झूठी तारीफ का भी हमें जो है अच्छा एहसास हो ही जाता है। कुछ लोग हेल्प लेने की वजह से भी करते हैं, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें ना कीजिए, मुद्दे की बात बताओ। एंड जो दिल से निकली तारीफ होती है ना, उनका भी बहुत अच्छे से एहसास हो जाता है। कोई होता है ना जो हमेशा तारीफ करते हैं, इसलिए पता लग ही जाता है। ओके जी, और कई बार क्या होता है ना कि कई बार कुछ लोग जो हैं वो कभी कभी तारीफ़ करते हैं और सच्ची तारीफ़ होती है कि मतलब उनकी आदत नहीं होती, उनकी जो तारीफ़ें होती हैं ना वो लिमिटेड एडिशन सा होती हैं कि जब उनको सच में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना तब उनके मुंह से जो है तारीफ़ के दो शब्द निकलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है हर बात पर तारीफ़ करना, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब वो तारीफ़ कर रहे हो ना तो उनका कोई स्वाद छुपा हो उसमें, वो कुछ आपसे जो है कुछ फ़ायदा निकलवाना चाहते हों, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये एक अलग तरह के लोग हैं, और कुछ जो अलग तरह के लोग होते हैं वो होते हैं तारीफ़ आपकी करते हैं और उसके बाद जो है अपना जो है असली जो मकसद है वो जाहिर करते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा आपके पास है ना तो वो शेयर कीजिए हमारे साथ। 9868107070 है नंबर, 9868107070 है व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए नंबर। और यहाँ इंतज़ार हो रहा है मैसेज मसाला मिक्स में आपके और भी बहुत सारे मैसेजेस का भी। वैसे बहुत से मैसेजेस ऑलरेडी लाइन अप है, जल्दी से पढ़ लेते हैं उनको। ये है हीरामणि वर्मा दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, कहते हैं कि वास्तविक ईमानदारी वो मेहनत का की जो है दिल से तारीफ़ होनी ही चाहिए। झूठी तारीफ़ वो झूठी तारीफ़ करने वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मक्खन लगाने वाले व्यक्ति अपने चेहरे के हाव भाव से जो है इस बात को जाहिर

कर ही देते हैं। और ये हैं देहरादून से आलोक पवार और मिनी, कहते हैं कि जिसने कभी तारीफ नहीं की और अचानक तारीफ कर दे तो पता चल जाता है कि मक्खन पॉलिश है। आजकल स्वाद बहुत बढ़ गया है, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बिल्कुल, आप भी जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए और एफएम रेनबो जो है सुनते रहिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कहते हैं श्री गणेश उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। कहते हैं हमेशा झूठी तारीफ करने वाले इंसान को मैं पहचान लेता हूं, क्योंकि बिना वजह तारीफ करना वो शुरू कर देता है और अपना काम के मतलब के लिए तारीफ के पुल बांधने लगता है। ओके जी, और ये मैसेज किनका है और कहाँ से है?

किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से शुभकामनाएं दे रहे हैं गणेश उत्सव की जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए, लग गई जी आपकी अटेंडेंस, लेकिन असली अटेंडेंस तब लगेगी जब आप टॉपिक पर मैसेज करेंगे।

और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब तक मैं आपका मैसेज पढ़ नहीं लेती हूँ ना, प्लीज दूसरा मैसेज मत टाइप करिए, क्योंकि ऐसा करने से, जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बताते रही हूँ कि वो मैसेज आपका ऊपर चला जाता है जो उसकी टाइमलाइन में जो है, और उसका नंबर फिर बाद में आता है पढ़ने का, या फिर कई बार प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है शो का और उसका नंबर ही नहीं आ पाता है। तो एक बार अगर आप एक मैसेज टाइप कर देते हैं, भेज देते हैं, थोड़ा सा सब्र करिए, इंतज़ार करिए कि भगवती पढ़ ले आपका मैसेज, पढ़ लेगी ना।

रंजीत मस्ताना रायबरेली से कहते हैं कि कोई आपकी ज्यादा तारीफ करने लगे तो समझ लेना कि वो किसी काम के लिए ही मक्खन लगा रहा है। दीपा बिजनौर से कहती हैं कि झूठ पकड़ने का एक छोटा सा अंतर है कि आंखों से और होठों की और जुबान की रफ्तार से पता लगता है। अच्छा जी। विजेंद्र घटोल अकोला महाराष्ट्र से कहते हैं कि एक बार मेरे भाई ने मेरी तारीफ की थी, कभी कभी मक्खन भी लगाता है मेरा भाई। अनिल शर्मा सरिता विहार से कह रहे हैं, यहाँ मतलब के लिए ने दिल से सच्ची तारीफ की है, चाहे तो संदेश शामिल करो या नहीं, बाकी ईमेल पढ़कर जज तुम करो। पर ऐसा है ना, ईमेल का जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें फॉन्ट इतना, मतलब उसमें तो छोटा छोटा लिखा हुआ आ रहा है कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मैंने उसे कोशिश किया की पढ़ने की, क्योंकि आपने कहा था ना कि पढ़ के देखें। अमित श्रीवास्तव मोहाली से कहते हैं, सामने वाला अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो खुद समझना चाहिए कि वो जो आपके बारे में अच्छी बात बोल रहा है, आप उसके काबिल हो या ऐसे ही तारीफ कर रहा है। और ये हैं मेहराम पूर्णिया बिहार से कहते हैं, वैसे आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बोलने का लहजा भी बहुत सुंदर है। अच्छा जी, तो आप बताइए ये तारीफ कैसी की जा रही है। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से कहते हैं कि कोई व्यक्ति वाकई ध्यानपूर्वक तारीफ कर रहा है तो समझिए कि वो सच्ची तारीफ है, लेकिन अगर वो हंसते हुए तारीफ कर रहा है तो समझिए कि वो अपना काम निकालने के लिए ही प्रशंसा कर रहा है। वैसे एक बात बताइए, जब कोई अचानक आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे तो आप खुश होते हैं या अंदर का सीआईडी ऑफिसर जाग जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। कविता नोएडा से कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब बिना किसी वजह के बोलें कि आज खाना बहुत अच्छा बना है तो मैं तुरंत पूछती हूँ, बताओ वीकेंड पर दोस्तों के साथ कहाँ जाना है।

0: ऐसे तारीफ सुनकर जो है खुश जरूर होइए, पर उसके बाद आने वाले वैसे पर नजर रखिए। सच्ची तारीफ दिल छूती है, झूठी तारीफ के बाद अक्सर वॉलेट छूने की नौबत आती है। और कुछ लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि सामने वाला बोले आप बहुत अच्छे हैं तो तुरंत पूछते हैं कि क्या काम है। तारीफ और मक्खनबाजी में शायद इतना ही फर्क है कि तारीफ सुनकर अच्छा लगता है और मक्खनबाजी सुनकर लगता है जैसे अब कुछ होने वाला है। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, आपके साथ हूं मैं भगवती।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
7: मैम मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
8: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
9: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
10: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
11: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
6: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
12: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
13: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कहते हैं कि नंबर एक, एक उधार लेने वाला जब आपसे उधार मांगने आएगा तो उसकी ज़ुबान शहद से ज़्यादा मीठी होगी। नंबर दो, आप जब दुकान या ड्यूटी करके जो है रात को घर आते हो तभी बीवी अधिक प्यार करती है तो समझ जाना चाहिए कोई ख़ास मतलब है। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं लगता है। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से कहते हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है, जो कि तारीफ सुनना हर किसी को पसंद आता है, कोई बड़ा चढ़ाकर बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि झूठी तारीफ है, पर आप कार्य अपने ऐसे कीजिए ताकि आप तारीफ के लायक हों।

आपकी वाहवाही होती रहे। ये हैं बबलू कश्यप मंगोलपुरी दिल्ली से, कहते हैं मेरे एक दोस्त ने एक दिन मेरी कई बार झूठी तारीफ की, शाम को बोला भाई 5,000 उधार दे दो कल दे दूंगा, यानी मतलब से बात कर रहा था, वो बिल्कुल ही मतलब से बात कर रहा था। नेहा गाज़ियाबाद से कहती है मेरे बॉस ने मेरी मैटर्निटी लीव के पहले मेरी तारीफ़ करते हुए सपोर्ट का वादा किया था, मगर जब सपोर्ट की सच में ज़रूरत पड़ी तो पॉलिसी का बहाना करके मुकर गया। दैट इज़ सो बैड। रोहित गाज़ियाबाद से कहते हैं मेरे ऑफिस में एक कलीग ने मुझे, सर आप ही सबसे समझदार हो, वो जो है तभी बोलता है ऐसा जब उसे अपनी शिफ्ट चेंज करवानी होती है। तो अगली बार जब जैसे ही वो कहें आपको जो है कि आप सबसे समझदार हैं, जैसे ही आप ये वो सुने ना शब्द समझदार, तो तुरंत बोलिए लेकिन शिफ्ट नहीं बदलेगी। प्रीति दिल्ली से कहती है मेरी बेटी जब कहती है मम्मा यू आर द बेस्ट मम्मा इन द वर्ल्ड, तो मुझे पता होता है कि अब कहीं से कुछ खाने की चीज़ ऑर्डर होने वाली है, किसी का नंबर लगने वाला है।

संजय फरीदाबाद से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी अगर अचानक कह दे कि ये शर्ट या ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मुझे शक हो जाता है, क्योंकि अगला सेंटेंस अक्सर होता है चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं। नेहा गुरुग्राम से कहती हैं मेरी एक दोस्त है जो तारीफ बहुत कम करती है, इसलिए जब वो कहती है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो तो मुझे पता है कि मैं सच में लग रही हूँ। बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों की तारीफ का महत्व तो इसलिए ज़्यादा होता है ना क्योंकि उनकी तारीफ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक लिमिटेड एडिशन सी होती है, रोज़ रोज़ जो है आपको अवेलेबल नहीं होती है। अमित मेरठ से कहते हैं मेरे बॉस जब कहते हैं कि अमित मुझे पता है कि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो तो मुझे समझ आ जाता है कि आज घर लेट पहुँचना है। अमित जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे तारीफ नहीं कहते, इसे कहते हैं ओवर टाइम का इन्विटेशन कार्ड।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, ये हैं उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले से। कहते हैं कि अगर वो हमारी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो उसमें हम उसके शब्द पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये फेंक रहा है या असलियत में तारीफ़ कर रहा है, बस वहीं से पहचानेंगे। ओके, अनिल शर्मा जी ने जो है जो मेल भेजी थी उसका थोड़ा सा और बेटर जो है स्क्रीनशॉट भेजा है, थैंक यू सो मच। अब मैं पढ़ भी पा रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ, अच्छा लग रहा है पढ़कर। मतलब वही वाली बात है, कहते रहिए फिर से कहिए, अच्छा लगता है। और ये जो इन्होंने मैसेज भेजा है ना, ये है संजय मालाकार, केवल पार्क आदर्श नगर से। और ये मैसेज जो है वह एक बार करिए ना मैसेज, मतलब इट्स 45 टाइम्स से या कुछ ऐसे ही किया है उन्होंने, 45 बार से भी ज़्यादा बार ये मैसेज किया और सेम ही मैसेज को रिपीट उसमें डाल दिया है। कहते हैं कि मैं झूठी तारीफ़ करने वालों को अच्छे से पहचान लेता हूँ और उनकी बातों के झांसे में आने वाला नहीं हूँ। बहुत बढ़िया है जी। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा ही हंस के आपकी तारीफ़ करे तो समझो कि झूठी तारीफ़ कर रहा है। ये टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से हैं नाना डोंगर दीवे, राहुल डोंगर दीवे। और ये दूसरी बार हमारे पास इस तरह की बात आई है कि अगर कोई ज़्यादा हंस हंस के तारीफ़ करे तो ये मान लेना चाहिए कि तारीफ़ जो है वो सच मुच की नहीं है, झूठी तारीफ़ है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी तारीफ़ आपके लिए बहुत मायने रखती है? जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस, बॉस, टीचर, या वो इंसान जो वैसे आपकी तारीफ़ करता ही नहीं, तो कोई ऐसा किस्सा भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और वैसे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल भी है मेरे पास, आपके हिसाब से सच्ची तारीफ़ की पहचान क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी पूछा है ये क्वेश्चन, लेकिन मतलब आप ये बताइए कि क्या वो स्पेसिफिक होती है, जैसे आप अच्छे हैं की जगह आज आपने जिस तरह उस सिचुएशन को हैंडल किया वो बहुत अच्छा लगा, या मतलब आपने जिस जो ये कलर आज पहना है इस कलर में ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब कि ये आप पर बहुत अच्छे से फपता है, अच्छा लगता है, इस तरह की कोई बात हो तो क्या हम मान सकते हैं कि वो जो है तारीफ सच्ची हो सकती है? और अपने आप से खुद की तारीफ की जाए तो यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल।

राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ केरा मेरठ से कहते हैं कि तारीफ जो है जो लिखना चाह रहे हैं, शायद कहना चाह रहे हैं कि जी से जो है मुश्किल से ही करते हैं, उन जो करते हैं उसमें 50% ही सही होती है। हमारे कोर्ट परिसर में फैमिली कोर्ट के पास एक व्यक्ति झालमुड़ी नमकीन बेचता है, मैंने तारीफ कर दी बस अब देर नहीं करता है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी इन्हें सर्व करता है। अरुण कुमार भटिंडा से कह रहे हैं कि गणपति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी। और भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से कह रहे हैं कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ जहाँ कि मुझे लगा हो कि किसी ने मेरी झूठी तारीफ़ की है या किसी तरह की हेल्प के लिए जो है मेरी प्रशंसा की जा रही है। और जब भी मेरी प्रशंसा की गई है तो मैंने उसे स्वीकार किया है पूरे दिल से, और मुझे लगता है कि जो भी मेरी तारीफ़ करता है दिल से करता है, दैट्स सो पॉजिटिव, अच्छी बात है ये भी बहुत। गुड्डू धाकर उज्जैन ज़िले के बेड़ावन गांव से कहते हैं, तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, तारीफ़ सच्ची हो या झूठी हमें तो अच्छी लगती है।

आजकल तारीफ है ही मतलब ऐसी चीज़ ना जो अच्छी लगती है. ये हैं जोगिंदर सिंह रामबन से कह रहे हैं कि लोग मतलब की तारीफ करते हैं. और ये हैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाज़ियाबाद से, कहते हैं मैं अक्सर अपने आसपास वालों को दोस्तों को कभी गोलगप्पे कभी समोसे कभी चाय पिलाता रहता हूँ और वो मेरी तारीफ करते हैं. कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो मेरी सच्ची या झूठी तारीफ़ करते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है. तारीफ़ वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है. किसी का मूड ख़राब हो कोई तनाव में है तो आप उसकी तारीफ़ कर दीजिए, उसे ज़रूर खुशी मिलेगी. बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बात की आपने. मजाक जो है अपनी जगह है लेकिन कभी कभी जो है हम सच्ची तारीफ़ करने में भी बहुत कंजूसी कर जाते हैं. किसी ने अच्छा काम किया अच्छा लग रहा है, किसी की कोई बात आपको पसंद आई तो कह दीजिए ना, हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ एक सेंटेंस हो लेकिन सामने वाले के लिए वही सेंटेंस किसी मुश्किल दिन में कॉन्फिडेंस की छोटी सी डोज बन जाए. और हाँ, तारीफ सच्ची होनी चाहिए क्योंकि दिल से निकली तारीफ को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो दिल तक ज़रूर पहुँचती है.

कैलाश शर्मा गुरुग्राम से कहते हैं, तारीफ तो तारीफ होती है, हमेशा अच्छी लगती है, चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो। सच्ची तारीफ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन तारीफ जब भी कोई करता है ना, तो मन में एक पॉजिटिव वाइब उत्पन्न होती है और वो हमें आनंद प्रदान करती है। तो हमें भी सदा दूसरों की प्रशंसा करते रहना चाहिए। बिल्कुल जी। सनी बिमला पोहाल सीनियर अम्बाला कैंट से कहते हैं, मेरे मन में सेवा भाव है, ये बात सभी अच्छे से जानते हैं, तो वो मुझे प्यार से बोलते हैं, मुझे पता होता है कोई मतलब होगा और मैं उनकी बात आराम से मान जाता हूँ। उन्हें लगता है कि हमारा फ़ायदा हो गया, पर मैं तो खुद ही सेवा करना चाहता हूँ, काम वही होता है जो मैं चाह रहा था। लेकिन कहते हैं कि इसी बात के चलते एक दोस्त को 10 लाख रुपये से ऊपर भी दिए, जैसा अक्सर होता है, 3 साल होने वाले हैं, उसने 1 रुपया भी वापस नहीं किया। उसने मेरी भलाई करने की आदत मुझसे छीन ली। पैसे की मदद मैं अब किसी की नहीं करता। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब नेकी से भलाई से जो है भरोसा जिनकी वजह से उठने लगता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप पैसे की मदद नहीं करते हैं, पर बाकी तरह से तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अनिल शर्मा सरिता विहार से कहते हैं, कल ही बैंकर को न्यू लुक में देखा तो तारीफ उसकी कर दी, जिससे उसका चेहरा खिल गया। इस तारीफ में मतलब नहीं, सिर्फ उसकी हंसी देखना था। दैट इज सो स्वीट। कहते हैं, मैं जेंट्स कपड़े सिलने का काम करता हूँ, मेरी पर्सनल शॉप भी है, और मुझे कस्टमर द्वारा की गई तारीफ बिल्कुल भी हजम नहीं होती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी मुझे और अच्छा करना चाहिए। ये है ब्यावरा ज़िला राजगढ़ MP से मनीष। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि देखिए, तारीफ जो है हजम नहीं होना भी कोई बहुत बढ़िया बात तो नहीं है। मतलब कि आपको तारीफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर यह चीज़ ज़रूर दिन में रखनी चाहिए कि मुझे और अच्छा काम करना है और इससे भी बेहतर करके दिखाना है, ताकि इससे ज़्यादा तारीफ मिले।

बहुत कम समय रह गया है तो गाने के बीच में मैसेजेस लूंगी। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से कहते हैं, सच्ची तारीफ और झूठी तारीफ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा असली नकली चेहरा।

सुनीता शर्मा शालीमार बाग से कहती है, मुझे घर वालों से तारीफ के दो बोल मिल जाएं, मुझे उसमें ही खुशी मिल जाएगी, बाहर वालों से कोई उम्मीद नहीं रखती।

संजीव शर्मा, अमन कुमार जो है जिला करनाल हरियाणा से कहते हैं, तारीफ जरूर करनी चाहिए यदि दूसरे का व्यवहार हमारे लिए अच्छा है तो।

तारीफ कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए, और जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे एंजॉय भी कीजिए। हर बार जो है जासूस बनने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तारीफ के तुरंत बाद आवाज़ आए, वैसे एक छोटा सा काम था आपसे, समझ लीजिए जो ये आज के मैसेज मसाला मिक्स वाला रडार था ना, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इसी के साथ आपके दोस्त भगवती आपसे लेती है अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मैसेजेस और नई चटपटी बातों के साथ। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।

0: All right, you could imagine that. It's raining. Well, it's not raining in Delhi right now. That's okay. Nevertheless, we were still talking about, of course, this 8 cities. Yeah, 8 states. Right. So, moving ahead to the next one, and this one is Nagaland. Well, now you could actually turn up the volume because since we are entering Nagaland, we're talking about Kohima, Dimapur, Pokokchung, Zuko Valley, and a state famous for its sheer diversity of its Naga communities. One important thing that you need to understand about Nagaland, it's not a culture, just what it hasn't one single uniform culture. Different Naga communities have their own languages, tradition, dress, food and festival. And then comes the festival that most travelers know. A hornbill festival. Yep. Every year from December 1 to 10, the festival brings together performances, crafts, food, and culture showcase at Kisama Heritage Village. And if you're into music, hey, this is going to be a serious stop, my dear friend. Because alongside traditional culture performances, Nagaland has a vibrant contemporary music scene too. Well, now, what about the Naga food? Smoked pork, bamboo shoot, fermented flavors, chilies, fresh herbs, and one word, heat. Proceed with respect. Especially if your idea of spicy food is ketchup with extra chili flakes. You're still not ready yet, my dear friend. If nature is your thing, Zuko Valley and one of the northeast iconic trekking destination, green rolling landscapes, seasonal flowers, clouds moving across the valley, and that's a wonderful feeling of being very, very far away from everything. Yeah, sounds good, right? So what I want to do is, I want to take a short and sweet break right now since we are in the second half of the show. So do not, and I repeat that, do not touch the dial. I'll be right back after these messages. And after that, we go to the next state as well. But break time.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है. मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
7: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
9: कोयल सी तेरी बोली,
10: आय हाय,
9: तेरी तेरी छी नजर में है जादू.
10: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
9: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
10: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
11: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.
12: दोस्तों की मस्ती हो या चाय

0: से चूज की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास 1 सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रांग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं।

0: हैं वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी अहलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि दो बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
1: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंघाल का बात करें तो वो 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पूनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
0: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2-3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापनीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
0: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपेरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्रीस्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजेंड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजेंड प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
0: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफ़ी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है, तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा। और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें, तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश बानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
2: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल, तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते

0: कि बटोरे थे, 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक, जैसी आपने बात की, भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
1: चुनौती तो है, क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज़्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज़्यादा मेडल लाए, ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ हैं, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
0: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
1: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है। पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एले क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
0: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
1: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आर्चरी के, क्योंकि दो तीन है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे

0: लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं बच्चों को, जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अब पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 केजी में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल जीता, और जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में, पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पर भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी। और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलवन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पर काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कॉम्पिटिशन काफी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूंगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊं, गौरव बढ़ाऊं और वहां से मेडल लेकर आऊं।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग कर

0: जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत करती है भगवती आपका म्यूजिक मस्ती में।

रेडी फिल्म का ये ट्रैक आपने सुना नीरज श्रीधर और अमृता काक की आवाज में, म्यूजिक बाय प्रीतम चक्रवर्ती एंड लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य। म्यूजिक बस्ती ओनली ऑन रेनबो इंडिया।

0: ओरिजिनली ये ट्रैक था 2007 में आई फिल्म वेलकम का। इसे एक पेपी डांस ट्रैक के फॉर्म में रिक्रिएट किया गया फिल्म वेलकम टू द जंगल के लिए। आवाजें आनंद राजानंद, रुबई मेघा बाली और विक्रम मोंट्रोस की, एंड म्यूजिक कंपोज बाय विक्रम मोंट्रोस एंड आनंद राजानंद, लिरिक्स बाय मेघा बाली एंड समीर के। ओरिजिनल लिरिक्स और ये फ्रेश लिरिक्स है, दे आर बाय मेघा बाली, मेघा विद डबल जी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
6: म्यूजिक मस्ती।
11: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: तो फिर कहीं मत जाइए, सुनते रहिए हमें। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती और मैं हूं भगवती। गुड इवनिंग है जी।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

1990 में आई थी फिल्म दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्टारर, और उसमें जो है लिरिक्स दिए थे इस गाने के लिए समीर ने, और उसके बाद जो है इसे भी रिक्रिएट किया गया, लिरिक्स सेम ही ऑलमोस्ट, बस म्यूज़िक थोड़ा सा चेंज्ड है, पति पत्नी और वो दो फिल्म के लिए इसे रिक्रिएट किया गया, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह थे।

प्ले किया है आपके लिए क्रिश फिल्म का ये ट्रैक, सिंगर कुणाल गांजावाला, म्यूजिक बाय राजेश रोशन एंड लिरिक्स बाय विजय अकेला।

तो बताइए ना क्या किए, सोचिए आप। और समय है आपकी दोस्त भगवती ले आपसे अनुमति, तो फिर चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्कार, गुड नाइट, शबा खैर।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज सम्मेलन में अग्रणी वैश्विक सीईओ ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमन्ना और आवास तथा शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष पर। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआई अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। भारत सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। और मौसम विभाग ने कल बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

समय हुआ है 9:07। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। आइए आप और मैं घूमते हैं मेलोडियस गानों की गलियों में, साथ साथ में गुनगुनाते हैं, आप वहां मैं यहां, क्योंकि जनाब रुथी है गुनगुनाने और मुस्कुराने वाली।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
4: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

देखिए काफिराना सा तो है शो भी, थोड़े से हम भी, थोड़े से आप भी। एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। मैं आपके साथ प्रज्ञा।

और ये गाना तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली की तरफ से आकाश को और उन सब की तरफ से उन सबको जो किसी न किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, प्रोग्राम आपकी याद आती रहे।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरे प्रोग्राम आपकी याद आती रहे का वक्त खत्म हो रहा है और एंट्री ले रहा है अगला प्रोग्राम जो है वेस्टर्न म्यूजिक का, और जिसे होस्ट करेंगे सुशांत। तो मुझे फिलहाल एक घंटे के लिए दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम रंगे महफिल में।

0: minutes. Stay with you here, ladies and gentlemen, boys and girls. Led Zeppelin. You just heard that. Okay, so that was 1971. Well, we are done with one half of the show, 30 minutes, but we've just reached 1971. Moving to the 1972, but not before a short and teeny mini break. I'm going to take this break and don't you go anywhere. I'll be right back after these messages. Break time.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य दायरे में शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की गई है। पीएम यशस्वी योजना में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, ओबीसी छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण और विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय शिक्षा पहल शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल से 1 महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

आ गई हूँ मैं, क्योंकि समय हो गया है हमारे प्रोग्राम गज़लों की दुनिया रंगे महफिल का। रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी के एफएम रेनबो और स्टूडियो में मैं प्रज्ञा तिवारी। आइए गज़लों को सुनते हैं, समझते हैं, गुनते हैं। आप लोगों के लिए पंकज उदास साहब।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

कहते हैं गज़लें सिर्फ अल्फाजों का हुनर नहीं होती, ये वो खामोश जज्बात हैं जो दिल से निकल के कलम से होते हुए आपकी हमारी रूह को छू जाते हैं। ऐसे ही ये गज़ल अभी आपने सुनी, ऐसे ही ये गज़ल आपके पेश नज़र, आवाज़ हरिहरन की।

और वो समय जब घड़ी हमें कह रही है कि हम आपसे ले इजाज़त, पर आपको रेनबो से जाने की इजाज़त नहीं है। खूबसूरत म्यूज़िक का दौर यहाँ भी जारी रहेगा, तो आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम पर। मुझसे आपकी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी 30 तारीख को रात 9 बजे बाद। तब तक आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की यूजुअली।

वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य दायरे में शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमा करने को मंजूरी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में गैर लाभकारी और शैक्षणिक संगठन द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। तमिलनाडु में AIADM के विधायकों मरगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला T20 रैंकिंग जारी कर दी है। श्री चंडी T20 रैंकिंग में 800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये थी अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 12:03 और 33 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शोज। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ये साहब ने मुझे रिहर्सल के लिए बोला, मैं आता हूँ। जब उन्होंने गाने की रिहर्सल दी तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला, बाप रे ये कैसे होगा अब मुझसे, क्योंकि उस चीज़ की आदत ही नहीं थी हमको। उन्होंने कहा, रिहर्सल की जगह नहीं होता तो बदल देता हूँ। उन्होंने कहा बदल देता हूँ, और मेरे एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बदल देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई कहे कि आप गाइए और हम गा नहीं सकते हैं तो हम प्लेबैक सिंगर काहे के। मैंने कहा नहीं, मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं 15 दिन रिहर्सल करूंगी। और मैं वो गाना गाने के लिए गई, और वाकई उस गाने के बाद मुझे 100 का नोट हाथ पे रख के RD बर्मन साहब ने कहा कि वाह क्या गाया आपने।

एक बजा है, समय है एफएम रेनबो मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। सेमी कंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस दिन

तीन दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खादन नीलामी का 16वां दौर आयोजित करेगा। 16वें दौर में पूरी तरह और आंशिक रूप से खोजे गए कोयला खंड शामिल होंगे। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित CBFC में 18 सदस्य शामिल हैं। असम में नागांव संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 7:00 PM शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। एक बजकर 3 मिनट और 7 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: कुछ मैं छोड़ रहा।

इसीलिए तो कहता हूं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
1: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर खर्चा, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
2: ठीक है?
1: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर खर्चा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: गुले गुलजार, रुक जा। ओ हरे दुपट्टे वाले।

अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में

हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। सेमी कंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत ने यथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। केंद्र सरकार आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना मुक्ति दिवस का आयोजन करेगी। यह दिवस हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय होने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति पर मनाया जाता है। असम में नागांव संसदीय क्षेत्र

उपचुनाव के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। रात्रि के 2:03 और 6 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा।

0: गारे गारे
1: जरा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: ओ गारे गारे
1: ये हमको बटला
0: गारे गारे, गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्न आया है दो
2: ये यक चतुर नार अमच

0: घोड़ा चतुर एक पेरा ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर ना।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आधी रात के 3 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड के हिट गाने। तो शुरू करते हैं गानों की इस लड़ी के साथ और ऐसे ही गानों का नॉनस्टॉप मजा लेते रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका ने 2 दशक से अधिक समय बाद पहली बार वेनेजुएला को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में विफल देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में इसकी घोषणा की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

सारे गामा शो में, जिसमें आप सॉफ्टली गानों का मजा लेंगे और कुछ थोड़े से पैपी टाइप के गाने होंगे, तो इन दोनों टाइप के मिक्स गानों का मजा लीजिए नॉनस्टॉप एक के बाद एक। तो अभी शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान जुबिन नौटियाल की आवाज में इस गाने के साथ। तो इस गाने के साथ ही गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 5 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका ने 2 दशक से अधिक समय बाद पहली बार वेनेजुएला को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में विफल देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में इसकी घोषणा की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 5:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप भजन कार्यक्रम आराधना में। तो शुरुआत करते हैं श्री गणेश वंदना से राजू राव की आवाज में।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।